शुभ सवेरा, नमस्कार। ...90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की इस प्रसारण सभा में आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का, सुबह सवेरे जाग कर हमारे साथ चलने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

श्रोताओं, आज रविवार है। विक्रम संवत 2083 के अधिमास ज्येष्ठ शुक्ल की 15वीं तिथि और शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय 7:04:35 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज के दिन की आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, कल्याणकारक हो और आपकी मनचाही राहों पर चलने वाला हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, तपती झुलसती गर्मियों के ये दिन हैं, सुबह ही लगता है कि लू चल रही है, लेकिन आज की सुबह कुछ खास है। जी हाँ, भोपाल में हमारे आसपास बारिश की रिमझिम फुहारें सुबह सवेरे धरती का आंगन धो गई हैं। हर दिल को एक सुकून मिला है इन रिमझिम फुहारों से, ठंडी हवाओं से। मौसम की इस करवट ने यह भी बता दिया है कि जीवन भी मौसम की तरह है, बदलता रहता है, कभी सुख के रंग कभी दुख के रंग। पूरे धीरज के साथ जब हम अपने जीवन में दुखों को सह लेते हैं तो फिर खुशियों के दिन आते ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज की सुबह बारिश आई है खुशियां बनकर। तो इसी नए दृष्टिकोण से इस नए दिन को देखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम आज की इस सभा में आपके लिए उपस्थित हैं। आप जानते ही हैं कि हर महीने की आखिरी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से मुखातिब होते हैं, तो आज भी सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग, ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे द्वारका प्रसाद मिश्र की। बाल सभा कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे आज बच्चे जानेंगे हार के महत्व के बारे में। श्रोताओं, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो तंबाकू से होने वाली जो हानियां हैं उन पर विशेष चर्चा आप सुन सकते हैं डॉक्टर मुकेश साहू से। प्रसारण का समय सुबह 9 बजे। 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, इसमें बातचीत होगी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की। इस चर्चा का 5वां भाग आज प्रसारित होगा। सुबह 10 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी डीआरडीओ की, हिंदुस्तान हमारा। इस कार्यक्रम में 10:30 बजे हम बात करेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर की और 11:30 बजे सुनिएगा काव्य गुंजन। इसमें आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं रश्मि रथी का भाग एक। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। खूबसूरत सा मौसम है, मौसम ने करवट ली है, तो अपनी जिंदगी को भी कुछ नए रंगों से भरने का संकल्प लीजिए आज रविवार के दिन। इस सुंदर दिन को अपने संकल्पों से, अपने प्रयासों से एक खूबसूरत रंग दीजिए। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आज की पहली प्रस्तुति आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक सिंह राज्य करता था। उसका नाम था केसरी। केसरी की प्रजा उसे बहुत चाहती थी, क्योंकि केसरी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, उसके दुख दर्द में साथ देता, सभी की सहायता करता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था और ना ही किसी को कोई अभाव था। पर केसरी में एक बहुत बड़ा दोष था। वो बड़ा स्वार्थी था। यदि कोई वस्तु उसे पसंद आती तो वो उसे दूसरों को बिल्कुल नहीं देता। उसकी ये बात सभी अच्छी तरह से जानते थे और कोई पसंद नहीं करता, पर कहता कोई प्राणी कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बड़ा था, राजा था, उससे सभी डरते थे। एक दिन की बात है, केसरी घूमने निकला। उसके साथ उसका मंत्री भालू भी था। उसका नाम भास्कर था। भास्कर और केसरी घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां भास्कर ने नाव में बैठाकर महाराज केसरी को सैर करवाई। अचानक केसरी का ध्यान गया कि गंगा का पानी बहकर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। केसरी के राज्य की सीमा तो वहां समाप्त हो जाती थी, पर उसने देखा कि पानी बहकर उसके राज्य से बाहर जा रहा है। उसने अपने मंत्री भालू से पूछा, भास्कर, यहां से ये पानी किधर जाता है? दूसरे जंगल की ओर महाराज, पतवार से नाव आगे बढ़ाते हुए भालू ने उत्तर दिया। नदी के पास के जंगल में भी एक शेर रहता था। केसरी उससे बड़ा चिढ़ता था। केसरी को बहुत बुरा लगा कि उसके राज्य से पानी जाए और वहां का राजा उस पानी को अपने काम में लाए। केसरी ने बिना सोचे समझे भालू को आज्ञा दी, भास्कर, इस पानी को दूसरे राज्य वाले जंगल में जाने से रोक दो। कल सुबह तक यहाँ बांध बन जाना चाहिए। मंत्री था बड़ा बुद्धिमान। ये सुनते ही उसका माथा ठनका। वो जानता था कि नदी में पानी बहुत है, यदि बांध बनवाया जाएगा तो उनके जंगल में बाढ़ आ जाएगी। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक सिंह से कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो वो बांध बनाने से हमें ही नुकसान हो। शेर नथुने फुलाता हुआ बोला, तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। भालू करता भी क्या, चुपचाप बैठा रहा। नदी से वापस आकर भालू ने तुरंत सेनापति वानरदेव को बुलाया, उसे राजा का आदेश पूरा करने को कहा। वानर ने तुरंत सेना के कुशल इंजीनियरों को बुलाया, उन्हें शाम तक बांध बनाने की आज्ञा दी। इंजीनियरों ने जल्दी से पत्थर, ईंट, सीमेंट जुटाए, फिर बांध बनाना शुरू कर दिया। शाम तक मजबूत और सुंदर बांध तैयार हो गया। दूसरे दिन जैसे ही उसकी आँख खुली वो भौंचक्का रह गया। ये क्या, उसकी सारी गुफा में घुटने तक पानी भरा था। बड़ी मुश्किल से पार करके केसरी गुफा के बाहर आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पानी कहां से आ गया। उसने देखा दूर से भालू बड़ी तेजी से नाव खेते हुए वहां आ रहा है। नाव को पास लाते हुए भालू बोला, जल्दी कीजिए महाराज, जल्दी से नाव में बैठिए, पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शेर उछल कर तुरंत नाव में जा बैठा। तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर भालू से पूछा, इतना पानी कहाँ से आया, कैसे आया? महाराज, बांध बनने से सारे जंगल में बाढ़ आ रही है, सभी जानवरों के घरों में पानी भर गया है। ये सुनकर केसरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि पहले ही मंत्री की बात मान लेता तो ऐसी परेशानी ना आती। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया और बांध तोड़ने की आज्ञा दी। सैकड़ों जानवर काम में जुट गए। कुछ ही समय में बांध टूट कर गिर पड़ा। जंगल में आई बाढ़ दूर हो गई। तब केसरी ने सोचा, भगवान ने ही सब चीजें दी हैं, सभी को मिलजुल कर उनका प्रयोग करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जो किसी चीज पर अपना अधिकार जमाता है वो जरूर दुख पाता है।
1: जीवन सौरभ।
3: न जी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और इंदु, छंद है अत्यष्टि, अति शक्वरी और अष्टि।
2: यम त्वम रथमिंद्र मेधसातये पाका संत मिशिर प्रणयसि प्राणवद्य नयसि सद्यश्चित मभिष्टये करो विशश्च वाजिनम सास्माक मनवद्य तूतु जान वेधसामिमां वाचम न वेधसाम। हे पाप रहित प्रेरक इंद्रदेव, आप यज्ञ कर्म के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और अपरिपक्वों को भी शीघ्रता से अभीष्ट प्राप्ति के लिए उपयोगी बना देते हैं। अन्न के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले पाप मुक्त हे इंद्रदेव, वेदज्ञों की इस स्तुति रूपी वाणी के समान ही इस हवि को भी आप स्वीकार करें। सश्रुधि यह स्मा प्रतनासु कासु चिदक्ष्याय इंद्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः यः शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्त वाजिनं प्रथमन्त्यं न वाजिनं। हे इंद्रदेव, आप संग्रामों में वीर पुरुषों के साथ शत्रु को नष्ट करने में कुशल हैं। भरण पोषण के क्रम में जो स्वयं प्राप्त करने वाले तथा अन्नादि का वितरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें आप शक्ति सामर्थ्य देते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुने। जिस प्रकार बलशाली लोग अश्व का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार समर्थ लोग तेजस्वी इंद्रदेव का आश्रय लेते हैं। दस्मो हिष्मा वृषणम पिन्वसि त्वचम कम चिद्या वीररुम शूरमर्त्यम परिवृणक्षि मर्त्यम इंद्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रुदाय स्वयशसे मित्राय वोचम वरुणाय सप्रथः समृडीकाय सप्रथः। हे बलशाली इंद्रदेव, आप मनोहारी रूप में मेघों के आवरण को जल से पूर्ण करते हैं। आप कष्टप्रद असुरों को दूर करते तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। ये इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के निमित्त कारण रुद्र के समान भयंकर, मित्र के समान हितैषी, श्रेष्ठ सुखप्रद तथा सबके द्वारा वरणीय हैं। अस्माकं व इंद्र मुष मसीष्टये सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम् अस्माकं ब्रह्मोतये वा पृत्सुषु कासुचित् नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्तृणोषि यम विश्वम् शत्रुम् स्तृणोषि यम्। हे मनुष्यो, समस्त जनों के मित्र के समान हितैषी इंद्रदेव की आयुष्य वृद्धि और शत्रुओं के विध्वंस के लिए हम यज्ञ संपादनार्थ प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, आप जिस शत्रु समूह का विध्वंस करते हैं, वे संगठित होकर भी आपकी सामर्थ्य के आगे नगण्य हैं। ऐसे आप सभी संग्रामों में हमारी ज्ञान सामर्थ्य को संरक्षित करें। नीशु नमाति मतिम कयस्य चित्ते ज्येष्ठाभिररणि भिर्नोति भिरुग्राभिरुग्रोदिपिहि नेशिनो यथा पुराणेना शूरमन्यसे विश्वानि पुरोरप परशि वहनिरासा वहनिर्नो अच्छ। हे पराक्रमी इंद्रदेव, आप अपनी शक्तिशाली सामर्थ्य व संरक्षण साधनों की तेजस्विता से शत्रुओं के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दें तथा विदीर्ण कर डालें। हे बलशाली इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक होने पर भी पाप मुक्त हैं। पूर्ववत हमें आगे करके स्वयं अग्रगामी होकर सभी मनुष्यों के कषाय कलमशों का निवारण करें। आप सदैव हमारे सम्मुख रहें। प्रतद्वोचेयम् भव्यायेन्दवे हव्यो न य इशवान् मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति स्वयं सो अस्मदा निदो वधै रजेत दुर्मतिम् अव स्रवेद घसम सो वतरमव क्षुद्रमिव स्रवेत। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रगतिशील हैं, वे इंद्रदेव के समान प्रशंसनीय और प्रार्थना योग्य हैं, तथा जो दुष्टों के नाशक हैं, वे भी स्तुत्य हैं। श्रेष्ठ सोम के लिए हम स्तोत्र का उच्चारण करें। वे निंदकों को अपनी सामर्थ्य से हमसे दूर करें। घातक अस्त्रों से दुर्बुद्धिग्रस्तों तथा कटु वाणी का प्रयोग करने वालों का क्षय करें। थोड़े से जल के समान ही शत्रुओं का समूल नाश करें। वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रईम रईवह सुवीर्यम रणवम संतम सुवीर्यम दुर्मन्मानम सुमन्तु भिरेमिषा प्रचीमहि आसत्याभिरिन्द्रम द्युम्न हुतिभिर यजत्रम हुम्न हुतिभिः। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, हम यजनीय वाणी से आपकी स्तुति करें तथा सुंदर शक्ति संपन्न संपदा का लाभ प्राप्त करें। श्रेष्ठ मननशील सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से अलभ्य इंद्रदेव को प्राप्त करें। यजन करने योग्य इंद्रदेव को यशस्विता युक्त सत्य स्वरूप का वर्णन करने वाली प्रार्थनाओं से प्रशंसित करें। प्रप्रावो अस्मे स्वयशो भिरूति परिवर्ग इंद्रो दुर्मतीनाम दरी मंदुर मतीनाम स्वयं सा ऋषयध्यै या न उपेशे अत्रैहि हते मसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्निर्न वक्षति। इंद्रदेव अपनी यशस्वी संरक्षण सामर्थ्य द्वारा दुष्टों और दुर्बुद्धिग्रस्तों से हम सभी का संरक्षण करें। हमारे विनाश हेतु अति समीपवर्ती भक्षक राक्षसों द्वारा जो तीव्र गतिशील सेना भेजी गई है, वे आपसी कलह का शिकार होकर नष्ट हो जाए, हमारे समीप तक उसकी पहुंच न हो।

0: दूरस्थ अथवा निकटस्थ दोनों जगह हैं। आप दूर या निकट जहां भी हों, हमें संरक्षित करें। उपयोगी वस्तुओं के दान द्वारा हमारी हर प्रकार से सहायता करें। त्वम न इंद्र राया तरुषा सोग्रम चित्वा महिमा सक्ष दवसे महे मित्रम नावसे ओजिष्ठ त्रात रविता रथम कम चिदमर्त्य अन्यमस्मद्री ऋषे कम चिदद्रिवो रिरिक्षन्तम चिद्रिवः। हे ओजस्वी पालनकर्ता संरक्षक तथा अमर इंद्रदेव, आप सुख स्वरूप धन से हमें दुख क्लेशों से मुक्त करें। अपने यशस्वी जीवन की रक्षा हेतु हम सूर्य के समान तेजस्वी आपके ही सानिध्य में रहें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप अपने विशेष रथ से यहां आएं। आप हम भक्तों के अतिरिक्त अन्यों पर क्रोध करें तथा हिंसक राक्षसों के प्रति क्रोधित हों। पाहि न इंद्र सुष्टुत श्रिधो वयाता सदमिदुर मतीनाम देवः संदुर मतीनाम हंता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावतः अधाहित्वा जनिता जीजनद्वसो रक्षोहणम् त्वा जीजनद्वसो। हे श्रेष्ठ स्तुति योग्य इंद्रदेव, आप देव रूप में पाप कर्मों से सदा हमारा संरक्षण करें। आप सदैव दुर्बुद्धि ग्रस्तों और उनकी दुष्ट अभिलाषाओं के नाशक हों। आप विध्वंसक पाप कर्मों में लिप्त राक्षसों के हंता और विद्वान पुरुषों के संरक्षक हों। हे आश्रयदाता, इसी हेतु आपका प्रादुर्भाव हुआ है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ ले आता है सूखे पत्तों में आंधियां बांधकर, तो कभी दे जाता है भटकते बादलों से रिसती हुई बारिशें। जीवन एक सरफिरा मौसम है जो कभी अपने साथ बांध लाता है चांदनी से निखरी शरद की शीतलता, तो कभी डाल डाल हर पात से झरता मधुमेह वसंत। जीवन एक सरफिरा मौसम है जिसमें कोई एक रंग ठहरता ही नहीं, चाहा अनचाहा हर रंग हमें डुबोता रहता है पल पल, और जीवन के इस चाहे अनचाहे हर रंग को समभाव से देखने का हमें सामर्थ्य देती है हमारी आध्यात्मिक गहराई, हमारी आस्था। और अपनी उसी गहराई, उसी आस्था को विस्तार देने का अभ्यास है वंदना। आइए हरि सुमिरन करें, वंदना करें।

ये एक पल, एक क्षण की बात है कि जब हमारे भीतर प्रेम घटित होता है, परमात्मा अनुभूत होता है। सच तो ये है कि वो उपस्थित है सदा सर्वदा से, किंतु उसकी अनुभूति एक अलग ही सौंदर्य है। इस अनुभूति की महिमा अलग है और इसी को प्रसाद कहा गया है। जीवन एक पात्र है, प्यास है, एक गहन प्यास। ये प्यास जितनी गहन होती है, अनुभूति उतनी ही सघन। परमात्मा की अनुभूति के लिए चेतना की जागृति आवश्यक है और जागृति का यही प्रयास है नाम स्मरण।

श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम स्वयं को भगवान के लिए अर्पित कर दें। वही हमारे लिए सबसे उत्तम सहारा है। जो मनुष्य भगवान के सहारे को जानता है और समझता है, वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। उसका जीवन आनंद हो जाता है।

प्रभु चरणों की प्रीति मनुष्य के मन में प्रकाश भर देती है। अखिल विश्व में उसे परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। उसको पाप के प्रहार का फिर कोई भय नहीं रहता और न ही उसे मृत्यु डराती है। वो तो मग्न रहता है अपने आराध्य के प्रेम में।

श्रोताओं, जीवन की सम विषम परिस्थितियों को, जीवन के सुख दुख को, आंसू और मुस्कान को हम समभाव से देख सकें, यही कामना उस परमेश्वर से हमारी। इसके साथ ही संपन्न होता है भक्ति संगीत का आज का ये कार्यक्रम। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

कोई भी जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, जीवन वर्षों में किए गए सार्थक कार्यों से बड़ा बनता है। एक जीवन जिसकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर रही, शिखरों की ओर रही, तारों की ओर रही, एक जीवन जिसकी दृष्टि सदा विशालता की ओर रही, सामाजिक समृद्धि की सतत आकांक्षा, राष्ट्र सेवा और देश के लिए आत्मदान जैसे मूल्यों से अलंकृत ये जीवन था द्वारका प्रसाद मिश्र का। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार थे। 1960 के दशक में वो दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देश की आजादी के पहले से ही वो राजनीति में सक्रिय हुए और लगभग 65 वर्षों की उनकी राजनीतिक यात्रा रही। द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म 5 अगस्त सन 1901 को उत्तर प्रदेश के पडरी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर, रायपुर और इलाहाबाद में हुई। उन्होंने बीए, एलएलबी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। शुरू से ही देश की दशा और दिशा से उनका गहरा सरोकार रहा। विद्यार्थी जीवन से ही वो महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की पुकार पर उन्होंने विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन छोड़ा और कहा, मैं इतिहास का निर्माण करने जा रहा हूं। ये कहते हुए वो स्वाधीनता संघर्ष में कूद पड़े। द्वारका प्रसाद मिश्र तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखर प्रतिभा संपन्न थे। विद्यार्थी जीवन में ही सन 1926 में वो तत्कालीन विधानसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु से वो अत्यंत आहत हुए तथा असेंबली में सरकार की निंदा का प्रस्ताव रखा। उनके वक्तव्य की शैली से सभी लोग चकित थे। द्वारका प्रसाद मिश्र श्री शारदा, दैनिक लोकमत तथा सारथी पत्रों से भी जुड़े हुए थे। उनकी लेखनी अत्यंत प्रभावशाली थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इस घटना पर लोकमत में उन्होंने जो संपादकीय लिखी, उसे पढ़कर विद्वत्जनों ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ फौजदारी वकील भी इस विषय पर इससे अच्छा अभियोग पत्र तैयार नहीं कर सकता था। इस तरह अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनकी हुंकार ने उन्हें युवावस्था में ही एक राष्ट्रव्यापी पहचान दिला दी थी।

जब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ तब द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक कानून तोड़कर मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का प्रवर्तन किया। जेल में रहते हुए ही वो जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रिटिश सरकार उनकी तेजस्विता और विद्रोही व्यक्तित्व से अत्यंत भयभीत रहा करती थी। सन 1936 में द्वारका प्रसाद मिश्र स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री नियुक्त हुए थे। उन्होंने स्वायत्त शासन के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के आमूल सुधार को लेकर एक विशद मौलिक योजना बनाई थी, जिसकी चारों ओर बहुत प्रशंसा हुई और इसी के आधार पर उस समय नगर पालिका अधिनियम बना तथा ग्राम पंचायत तथा जनपद संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मिश्र जी सक्रिय थे तथा गिरफ्तार हुए। स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्होंने लगभग 7 वर्ष जेल में बिताए। द्वारका प्रसाद मिश्र स्वाधीनता संग्राम, सरकार और संगठन तीनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सक्रिय थे। मिश्र जी चोटी के वक्ता भी थे। उनके व्याख्यान में अखंड राष्ट्र प्रेम का स्वर समाहित था। वो अपने सिद्धांतों के प्रति सदैव अडिग रहे। मतभेदों के चलते उन्होंने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि संगठन की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया, लेकिन मुखर होकर वो गलत को गलत और सही को सही कहते रहे। उनके लिए संगठन नहीं, राष्ट्र सदैव प्रथम रहा और अपने इसी सिद्धांत पर वो आजीवन चलते रहे। सन 1956 में वो सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुने गए। मध्य प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को उन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसके प्रथम दीक्षांत समारोह में ही द्वारका प्रसाद मिश्र को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। यहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सागर विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। द्वारका प्रसाद मिश्र सन 1954 से 1964 तक सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राध्यापक या विद्यार्थी से अधिक उसके कुलपति अध्ययनरत रहा करते थे। सैद्धांतिक मतभेदों के चलते द्वारका प्रसाद मिश्र को लगभग 12 साल तक राजनीतिक निर्वासन झेलना पड़ा था। इस दौरान वो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से सहमत होते हुए उनके इतने करीब आ गए कि उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी चली थी। द्वारका प्रसाद मिश्र सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रबल पक्षधर थे और यही उनके व्यक्तित्व का सबसे उजला पक्ष था। वो संवेदनाओं से भरे हुए एक ईश्वरवादी व्यक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक, और महाभारत के कृष्ण सदा उनके आदर्श रहे।

द्वारका प्रसाद मिश्र 1960 के दशक में दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका शासनकाल अधिकारियों को आवश्यक स्वतंत्रता तथा समुचित अधिकार देने तथा कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने के लिए जाना जाता है। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित किया। राजनीतिक दांवपेच चलते रहे, लेकिन वो अपने आदर्शों के साथ अडिग खड़े रहे। वो न तो ब्रिटिश राज के बर्बरतापूर्ण अत्याचार के समक्ष कभी झुके और न ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष। राजनीति के साथ ही साहित्य और पत्रकारिता में भी उनका गहरा दखल था। द्वारका प्रसाद मिश्र की एक अंतरंग मित्र मंडली थी, जिसके अधिकांश सदस्य साहित्यकार और पत्रकार थे। साहित्य और इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी। रामायण और महाभारत पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी साहित्य गोष्ठियों में साहित्य और इतिहास चर्चा का बहुत ऊंचा स्तर होता था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा के साहित्य से उनका गहरा लगाव था। सन 1942 में जेल में रहते हुए ही उन्होंने महाकाव्य कृष्णायन की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। इस महाकाव्य ने प्रकाशित होते ही हिंदी साहित्य जगत का ध्यान आकर्षित किया। कृष्णायन एक उच्च कोटि का महाकाव्य है, जो आत्मजिज्ञासा सारे धर्मों के मूल में रही है। उसका दार्शनिक निरूपण इस रचना में मिश्र जी ने किया है। शताब्दियों से ढके पड़े हमारे जीवन के आदर्शों और लोक चेतना के मूलाधारों को उन्होंने सभी के लिए सुलभ बनाया। द्वारका प्रसाद मिश्र ने कई किताबें लिखीं, जिनमें अपने समय की राजनीतिक धाराओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। उन्होंने अपने संस्मरण तीन खंडों में लिखे। पहला, लिविंग एन एरा, इंडियाज मार्च टू फ्रीडम। दूसरा, द नेहरू अप्रोच फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी। और तीसरा, द पोस्ट नेहरू एरा, पॉलिटिकल मेमोयर्स। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी, स्टडीज इन प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपनी किताब सर्च फॉर लंका में उन्होंने रावण की लंका की भौगोलिक स्थिति पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास। इस तरह उन्होंने अनेक ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की पुस्तकें लिखी थीं। वो संस्कृत कवियों और उर्दू शायरों की रचनाओं के हिंदी अनुवाद में भी गहरी रुचि रखते थे। 31 मई सन 1988 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। ऐसे महान राष्ट्र सेवक को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, फूल रंग तितली बादल और मुस्कुराता हुआ सतरंगी इंद्रधनुष, जी हाँ, ये संसार है बच्चों का अलबेला सा संसार। एक ऐसा संसार जहाँ वक्त का कोई हिस्सा कभी मुरझा नहीं सकता है। तो चलिए, बच्चों के इसी अलबेले संसार में आपको लिए चलते हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूं ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे हार के महत्व की।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों, अब आप कहेंगे हार का भी कोई महत्व होता है? हमने जब देखा है, हमने जब सुना है, तो बात जीत की हुई है, सक्सेस की हुई है। फेलियर, असफलता, हार भी कोई बात करने की चीज है। कोई होगा जो कभी हारना चाहे? हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हार का अनुभव जरूर किया है, हार या असफलता का। मैं अपनी बात बताऊं तो कितनी ही बार मैं क्लास में, टेस्ट में, एग्जाम में फेल हुई, वह हार थी। कई कंपटीशन में भाग लिया, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुई, दूसरे साथी जीत गए या सफल हुए, तो भी मैं हार गई। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने हार का सामना नहीं किया हो। हम जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई लेखक हो, तो हमें केवल और केवल उनका सक्सेस या सफलता दिखती है। हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस सफलता के पीछे बहुत छोटी छोटी हार या असफलता छुपी हुई है। जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम लेता है, तो गिरता है। हर कोई हो, आप हो, मैं हूं, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे हार मान लेंगे? तो क्या चलना छोड़ देंगे? कभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने के लिए हार बहुत जरूरी होती है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जब उन्होंने बल्ब बनाया, तो उससे पहले पता नहीं कितनी बार असफल हुए, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने हिम्मत नहीं हारी जब आप असफल हुए? उन्होंने हंसकर कहा, मैंने केवल सक्सेस ही देखा है, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं करती। तो माने तो हार का जीवन में महत्व है। अब दुनिया में हर कोई इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम सब कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, कहीं हार ना जाएं, कहीं असफल ना हो जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ? आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? सारे लोग केवल कछुए के जीतने की बात करते हैं। हर कहानी जो हमने पहले सुनी होगी, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, कि वो कोशिश करती रही और फिर यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे थे। मैं इस कहानी में ये देखती हूँ कि लोमड़ी ने कोशिश तो की, और देखा जाए तो हार जैसी शायद ही कोई चीज दुनिया में होती हो। हार का हम मतलब क्या लेते हैं? हार का मतलब लेते हैं कि हम उस चीज को जो चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम सोचते हैं हमारी हार हो गई। हमें जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में, वो मार्क्स नहीं आए। हम किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए, तो हम समझते हैं हमारी हार हो गई है। लेकिन हार होती नहीं है। जब भी आप कोई काम करते हो, उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और शायद हार से ये सीखते हो कि हमें और क्या करने की जरूरत है। अच्छा, आप एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? ये कहानी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। एक बार क्या हुआ कि एक फादर अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने, उसका नाम केशव था, क्लास में टीचर के पास गए। अब केशव पढ़ने लिखने में शायद उसका ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था, क्लास में मस्ती, इधर उधर घूमना, और हर बार केशव की माँ उसे समझा के कहती, बेटा पढ़ लिया कर, जिंदगी में करेगा क्या आगे, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। वो हंसता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती तो हम में से जैसे कई लोग होते हैं, मन नहीं लगता था, कभी टीवी देखने लगता, कभी कुछ खाने लगता। अब टाइम आ गया था एग्जाम के रिजल्ट का, और जैसा आप सबको पता है कि जब इम्तिहान का रिजल्ट आता है तो माँ बाप को बुलाया जाता है। उस दिन सुबह सुबह पिताजी तैयार हो गए, केशव का हाथ थामे कि चलो रिजल्ट लेके आते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन केशव को कोई टेंशन नहीं था, वो टेंशन लेने वाले लोगों में से था ही नहीं। क्लास में जब पहुंचे तो काफी भीड़ थी, सारे बच्चे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड टीचर से ले रहे थे, सारे पेरेंट्स उनको गले लगा रहे थे, कितना अच्छा किया है, कितने अच्छे नंबर आए हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब जब केशव की बारी आई तो टीचर ने केशव के पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर का ही दिल धड़क रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे उनके पिताजी को दे। नंबर बताऊं, मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, इंग्लिश में 100 में से 24 नंबर, हिंदी में 30 नंबर मिले थे, साइंस में 100 में से 14 नंबर मिले थे, ड्राइंग में ग्रेड अच्छा आया था। उसने धीरे से रिपोर्ट कार्ड केशव के पिता के आगे कर दिया। केशव के पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा, रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा, ये नंबर लेकर वो घर जाएंगे तो केशव की मम्मी का क्या हाल होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की थी केशव को पढ़ाने में। केशव ने पिताजी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि नहीं भाई, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। उसने पिता की आंखों में दुख देखा। जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकले तो एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, केशव भैया, केशव भैया, ये लो अपनी पेंसिल, और उसने पेंसिल केशव के हाथ में रख दी। अंकल, जब मेरे पास पेंसिल नहीं होती है ना, तो केशव भैया अपनी पेंसिल मुझे दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए केशव रोज घर से पेंसिल लेकर जाता है, वो पेंसिल देकर दूसरों की मदद करता है। पिताजी थोड़ा आगे चले, एक आदमी दिखा, अरे केशव बेटा, तुम जो रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हो, देखो कितना बेहतर हो गया ये कुत्ता, पहले कितना दुबला पतला था। केशव के पिता को बात समझ में आई कि इसलिए केशव अपनी माँ से ज्यादा रोटियां बनवा कर ले जाता है, क्योंकि वो रोटियां कुत्ते को खिलाता है। थोड़ा और आगे चले तो एक पड़ोस वाले अंकल जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा तू रोज दवाई लाता है मेरी, और रोज पूरे के पूरे पैसे गिन कर वापस करता है, जीता रह बेटा, जीता रह। पिता को समझ में आया कि इसलिए केशव को स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है। केशव के पिता घर पहुंचे, माँ ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड देखा तो सब्जेक्ट्स में तो नंबर कम थे, पर जिंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, लोगों पे दया, लोगों की सहायता करना और जानवरों की रक्षा करना, उनको खाना देना, उसमें केशव के नंबर बहुत बहुत बहुत ज़्यादा थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप किसी एक चीज़ में हार गए हैं। जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हों, पर आप गाना अच्छा गा लेते हों। हो सकता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम आते हों, पर आप दूसरों की सहायता करते हों। तो जब भी कभी आप हारें, जब भी कभी आपको ये लगे कि जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है और आपको हार महसूस हो रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे कर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप वो क्या कर पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। हार हमेशा अकेली नहीं होती। जब भी कभी आप हारें तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हार कभी फाइनल नहीं होती है। हार केवल सफल मार्ग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता होती है। और कहते भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आप हार ही नहीं सकते। आपने हैरी पॉटर किताब का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत चर्चित किताबों में से एक है। इस हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके राउलिंग, उनको कितनी बार वो अपनी किताब लेके गई लोगों के पास छापने के लिए, और सबने मना कर दिया। तो क्या वो हार मानकर बैठ गई? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वह कोशिश करती रही और फिर एक दिन हैरी पॉटर दुनिया की सबसे चर्चित किताब बन गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अमिताभ बच्चन जी का जीवन अगर आप कभी पढ़ें तो फिल्मी दुनिया में उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उनको पिक्चरें नहीं मिलती थी, लोग कहते थे ये इतने लंबे हैं, उनको कास्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उनकी प्रतिभा देख ली। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी? हार तब होती है कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ दें। वह आपने कविता सुनी या पढ़ी होगी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और फिर चढ़ती है, लेकिन वो दाना ले जाना नहीं छोड़ देती। तो करना क्या है, हमको केवल कोशिश करते रहना है। हर बार देखना है कि पिछली बार हमने क्या ऐसी भूल की थी, कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ की थी कि जो हम सफल नहीं हो पाए, और फिर उस चीज़ पे ध्यान देनी है। मान लीजिए आप कभी स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और जो आप तैयार कर आए थे आप बोलना भूल गए, आप घबरा गए, आप उतर कर आए और आपको लगा कि मैं तो हार गया हूँ, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं असफल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचें तो शायद अगली बार आप वो चीज़ें करके जाएंगे जो आपको बोलने में फ़ायदा दे। तो शायद अगली बार आप वो सब चीज़ें तैयार करके जाएंगे जो आप पहली बार नहीं कर पाए। जैसे छोटी सी चीज़ है कि स्टेज में जाने से पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना जिससे आप नर्वस ना हो, या फिर 2-3 बार जिन जगह आप अटके हों उन चीज़ों को और ध्यान से पढ़ना। कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैथ के एग्ज़ाम में मान लीजिए मैं इसलिए बार बार मैथ कह रही हूँ क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आता है और आपके कई स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मेरी गलती हुई है, दोबारा उसको जा सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका अपना सकते हैं याद करने का, समझने का, तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो कुछ लोग होते हैं जो दुनिया जिनको देखती है कि ये कभी कोई गलती ही नहीं करते, ये तो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको देख के लगता होगा कि शायद इनमें दिमाग ज़्यादा है या इनमें काबिलियत ज़्यादा है। हो सकता है कि उनमें दिमाग ज़्यादा हो सकता है कि उनमें काबिलियत ज़्यादा हो सकता है कि वो चीज़ें दो बार में कर पाएं जो कोई दूसरा चार बार में करे, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप कोशिश करते रहें और कर ना पाए। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, उस लड़की की कहानी जो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी। सारे लोग स्कूल में उसका नाम वृंदा था उस नाम से नहीं जानते थे, वह जानते थे ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती। परफेक्ट काम होता था उसका, सुबह उठती थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी, दोनों मोजे पहनती थी, पानी की बॉटल लेती थी, अपना टिफिन अच्छे से बैग में रखती थी, उसने क्लास में होमवर्क किया होता था, वो क्लास में सब चीज ध्यान लगा के सुनती थी, टीचर को गुड मॉर्निंग करती थी, जब शांत होने को बैठा जाए, बोला जाए, तो शांत होके बैठती थी क्लास में। माने कोई गलती नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट। सारे घर में लोग भी उसे कहते थे, वृंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। वृंदा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी कि सारा काम मुझे ठीक ठाक तरीके से ही करना है। कभी हंसती नहीं थी, उसका सारा दिमाग लगा रहता था कि अब इस काम को परफेक्ट ढंग से, बिल्कुल ठीक से कैसे किया जाए। वहीं पर उसका छोटा भाई बंटू से कोई काम ठीक से नहीं होता था, पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता था, रिमोट बिस्तर के नीचे रह जाता था, जब स्कूल पहुंचता तो देखता मोजे दूसरे अलग अलग पहने हुए हैं, होमवर्क अगर हिंदी का कर लिया तो इंग्लिश का भूल जाता था, क्लास में हंसता ही रहता था। और वृंदा बिल्कुल चुपचाप। एनुअल फंक्शन वाले दिन वृंदा बहुत नर्वस थी, उसको एक सोलो सॉन्ग यानी एकल गीत गाना था। सबको पता था वृंदा ने बहुत मेहनत की होगी, वो गलती तो कर ही नहीं सकती। बंटू उसको पेड़ बनाया गया था क्योंकि लोगों को लगता था पेड़ थोड़ा बहुत हिल भी गया तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे स्कूल के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वृंदा हाथ में माइक लेके स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, कहीं से एक चूहा आके तार के पीछे और भड़ाम, वृंदा स्टेज में गिर गई। वृंदा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काम उससे गलत होगा या कोई काम वो कर नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर तक खड़ी हुई, तभी बंटू जो पेड़ बना हुआ था चलता चलता आया और बोला, वृंदा दीदी उठो, और सारा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज गया। वृंदा भी हंसने लगी, वह पहली बार हंसी थी। अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में किसी भी छोटी चीज को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वह पहली बार हंसी थी और वो भी अपनी हार पर। तो एक चीज बताऊं, जिस दिन आप अपनी हार पर हंसना शुरू कर देंगे, जीवन की परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और एक और तरीका बताऊं आपको, जब भी कभी आप किसी चीज में असफल हों, तो अपने आप से वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड रेस में हार गया, तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश कर लेना। अरे तू दौड़ा तो अच्छा था ना। तो यही चीज आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी। हो सकता है कोई कमी रह गई हो सकता है एक दो बार करने के बाद मुझे ये चीज आ जाए। तो जिंदगी में हार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम हार पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जरा आंखें बंद करिए और उन अनुभवों को याद करिए कि जब आप कभी हारे हो। आंखें बंद करिए, हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हो सकता है स्टेज पे कुछ बोलने में, या कि कभी क्लास में असफल हुए हो, या खाना बनाना सीखा हो, घर में कोई नई डिश बनानी सीखी हो और आप उसमें असफल हो गए हो, या म्यूजिक क्लास में, या किसी कोचिंग में। सारी चीजों को याद करिए। बड़ा खराब लगता है ना जब हारते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सबसे कमतर हैं, हमें कोई चीज आती नहीं है। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। हमको अपनी ये सेल्फ टॉक बदलनी है। जब भी आप कभी हारें तो 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं कर सकता था, या जिस पर मैं ध्यान देता तो शायद बेहतर कर लेता। आगे मुझे ऐसी कौन सी स्किल या खूबियां डेवलप करनी है अपने आप में कि मैं जब वो काम करूं तो उसे अच्छे से कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा। आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मान लीजिए कि आप एक मैच हार गए तो आप की क्या क्या सीखे रही होंगी। हो सकता है आपने सीखा हो कि टीम वर्क जरूरी है, हो सकता है आपने सीखा हो कि शांत रहकर खेलना जरूरी हो, या कि धैर्य रखना जरूरी है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आप ध्यान देंगे तो आप उन सब चीजों को ढूंढ पाएंगे जो आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक हो जाएं। मान लीजिए आपने मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती थी जो आपकी इस सफलता में बाधक हुई। हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो, तो जैसा मैंने पहले बताया, गहरी सांसें लेकर स्टेज पर जाएं। हो सकता है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार नहीं 20 बार प्रैक्टिस करते तो आप स्टेज पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। सीखे आपकी हो सकती हैं, लेकिन सीखे होती जरूर है। हर हार में, हर असफलता में कुछ न कुछ सीख हमें जरूर मिलती है, जो हमें जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो कहते हैं ना, जीत खुश करती है पर हार समझदार बनाती है। तो समझदार तो सबको बनना है ना, तो हार में कभी भी दुखी नहीं होना है। हाँ, जरूर हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें उन ख्यालों को सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है, जब तक कि हम वो चीज थोड़े और बेहतर ढंग से ना कर पाए। वो कछुए की बात याद है ना आपको। कछुआ तो बेचारा इतना धीमे धीमे चलता था, पर उसने खरगोश से बाजी मार ही ली क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बस हमें यही करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हार के सामने हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूंगी आपसे आज। तो प्यारे दोस्तों, आशा करती हूं कि आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जीवन में हार का कितना महत्व है और हारना क्यों जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।
3: ये था बच्चों का अलबेला सा संसार, जहाँ जुगनू सी मुस्कुराहटें हर पल तैरती रहती हैं। उम्मीद है बाल सभा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अपने प्रसारण के माध्यम से हम आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज क्या है जानकारी का विषय, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं लेकर अपना विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त डॉक्टर रानी रैकवार भारती, लेकर आपका विशेष कार्यक्रम। जो आज कार्यक्रम हमारा समर्पित है एक ऐसे अभियान को जो सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं बल्कि लाखों जिंदगी को बचाने का संकल्प है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। लोगों को तंबाकू से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति जागरूक कर सकें, इसके लिए ये कार्यक्रम विशेष है। भारत में हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़े की बीमारी, ये सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि परिवारों की खुशियां छीन लेने वाली सच्चाई है। तो क्यों ना इस विषय पर, इस गंभीर बीमारी पर चर्चा की जाए। तो आज हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश साहू को, जो जनरल फिजिशियन हैं और बेहद लंबे समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक जाने माने चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, आज जो है वो 31 मई का दिन और पूरी दुनिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रही है, क्या लगता है ये क्यों मनाने की आवश्यकता महसूस हुई?
2: दिन ब दिन जिस तरीके से तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है हमारे युवा वर्ग में और इससे कम उम्र के बच्चों में और हर एज के लोगों में, तो ये एक भयावह रूप लेता जा रहा है। और जिस टाइप से हम आजकल देख रहे हैं इसकी भयावहता को देखते हुए इसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जागरूकता फैलाएं, इससे होने वाली नुकसान के बारे में हम लोगों को चेताएं, उनको बताएं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उनको इससे क्या सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सब को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, अगर हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू किस तरह से नुकसान करता है शरीर को?
2: तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है, हर अंग को नुकसान करता है। तंबाकू, हम अगर मुंह से, जैसे हमने तंबाकू लिया तो जब हम उसको चबाते हैं तो दो प्रोसीजर होती है चबाने में। एक तो दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है, उसके बाद जो लार निकलता है वो तंबाकू उसमें मिलके हमारे सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू अंदर जाता है। तो जब अंदर जाता है तो वो शरीर के मुंह से लेकर के जहां जहां जाता है वो हर पार्ट को नुकसान करते हुए जाता है। तो सबसे पहले तो तंबाकू मुंह का कैंसर का मुख्य कारण बनता है। उसके बाद जो नीचे जितने ऑर्गन हैं, जैसे अंदर जाएगा उस हिसाब से वो अपना प्रभाव डालना शुरू करता है, उसके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे लंग्स फेफड़े हो और हार्ट में हो, दिमागी हो, तो ये सारे अंग को धीरे धीरे धीरे धीरे, अगर लंबे समय तक इसको नहीं रोका गया, लंबे समय तक लेते हैं तो इसका शरीर के हर अंग में दुष्प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, आपने तो इसका दुष्प्रभाव बता दिया। ऐसा क्या है उसको खाने से कि जो इंसान है उसका आदी हो जाता है?
2: देखिए, ये तंबाकू का सेवन अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो एक शौक से शुरू होता है कि बच्चों में या युवा वर्ग में एक इसको स्टाइलिश, एक स्टाइल का माना जाता है कि एक फैशन के रूप में लिया जाता है कि दोस्तों के साथ खा लिया, और ये आदत धीरे धीरे धीरे धीरे शौक में बदलती है और इसके बाद शौक ये लत में बदल जाती है। शुरुआत तो घर परिवार से भी हो जाता है कि अगर हमारे घर के बुजुर्ग खा रहे हैं तो उनको देख के भी कई बार बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक शौक के माध्यम से शुरू होता है और ये फिर धीरे धीरे धीरे धीरे एक लत में उसकी आदत ही बन जाती है। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर निकोटिन का जो केमिकल होता है ये शरीर को एक आदि बना देता है, ये दिमागी तौर पर एक आदि बना देता है कि इसको खाने के बाद एक लगता है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये उसके दुष्परिणाम ही आगे सामने आते हैं।
1: सिगरेट के माध्यम से भी लोग ले रहे हैं, गुटखा, पान मसाला, हुक्का, ये कई तरह के जो रूप हैं, इस तरह से भी लोग तंबाकू को उपयोग कर रहे हैं। आपने जो बताया खैनी के रूप में खाते हैं, तो ये तो नुकसानदायक है ही, तो ये सिगरेट गुटखा पान में इनमें भी हानिकारक है?
2: बिल्कुल, ये तंबाकू किसी भी रूप में सेवन किया जाए, चाहे वो सिगरेट पान तंबाकू कहीं पे भी किसी भी रूप में मिला के उसको खाया जाए, ये हमेशा नुकसान ही करेगा, शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। तंबाकू अगर सिगरेट के रूप में हम लेते हैं, तो सिगरेट हम इनहेल करते हैं, तो जैसे अंदर धुआं उसका जाता है, तो हमारे लंग्स में होते हुए वो जो एक लंग्स के पोर्स को ब्लॉक करता हुआ जाता है। बहुत ज़्यादा सेवन अगर कोई कर रहा है, तो ये निश्चित तौर पर उसके फेफड़े कमज़ोर होंगे, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, और आगे जाके अनियमित टाइप के जो सेल्स डेवलप होते हैं, और जो कि कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं। तो तंबाकू अगर सिगरेट में लिया जाए, अगर खैनी को मिला के खाया जाए, या उसको पान के अंदर लिया जाए, किसी भी रूप में लिया जाए, ये निश्चित तौर पर एक दुष्परिणाम ही करेगा, ये को छोड़ना ही उचित है।
1: क्या कारण है कि ये चलन में आने लगा है?
2: आजकल सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है। बचपन में हमने पढ़ा था कि विज्ञान एक चमत्कार भी है और अभिशाप भी है
1: जी।
2: तो कई बार ये कारण भी होता है कि हम सोशल मीडिया से कुछ अच्छी चीजें ना सीखते हुए बुरी चीजें ज्यादा सीख लेते हैं। तो इसका चलन में एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि आजकल उसमें भी चेतावनी दी रहती है, लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लोग उसको सेवन करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये शौक से ही शुरू होता है, एक फैशन स्टाइल है, और उसके बाद वो फिर लत में बदलते जाती है। और आजकल एक और देखा गया है कि पहले थोड़ा युवा वर्ग में ये होता था, अब तो कम उम्र के बच्चे और जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं, और ये बहुत ज्यादा आजकल चलन में।
1: बिल्कुल, नई उम्र की जो बच्चियां हैं वो भी और बच्चे भी हैं, वो बिल्कुल इसको बिल्कुल धुएं में अपनी जिंदगी जैसे उड़ाने पे उतारू टाइप के हो गए हैं। तो इनको कैसे इस बात के लिए थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई ये इनके लिए हानिकारक है?
2: इसके लिए शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी, परिवार से करनी पड़ेगी, कि परिवार में बिठा के काउंसलिंग की जाए कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। इसके बाद जो स्कूल कॉलेज हैं, यहाँ कैंप लगाना, और सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे तो लगता है इसको एक पाठ्यक्रम में ही शामिल करने की जरूरत है, जिस टाइप से ये आजकल बहुत ही एक प्रचलन हो गया है। तो स्कूल कॉलेज और जगह जगह कैंप लगाना, शिविर लगाना, और अपने इस स्तर पर राज्य सरकार काफी इसमें पोस्टर वगैरह भी लगाती है, और फिल्म के माध्यम से भी इसको समझाया जाता है। तो इसलिए इसमें यह है कि हमको हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक युवा वर्ग ही हमारे इस चपेट में आ जाएगा, तो कहते हैं कि एक युवा वर्ग ही किसी राष्ट्र की एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वही नशे की गिरफ्त में है तो फिर हमारे देश का क्या होगा। तो हमें अपने परिवार के लिए जीना है, हमारे समाज के लिए जीना है, हमारे राष्ट्र के लिए जीना है। अगर ये भावनाएं हमको शुरू से बच्चों में, युवाओं में, और हर वर्ग में हमको डालना जरूरी है।
1: बिल्कुल, लेकिन मैंने कई जगह ये चीज देखे हैं, और कई बच्चे जो हैं, या कहना चाहिए जो धूम्रपान के और तंबाकू के आदि हैं, वो इस बात का वास्ता देते हैं कि ई सिगरेट और वेपिंग सुरक्षित है भाई, इससे नुकसान नहीं होगा। ये कितना भ्रामक है।
2: ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान है जितना सामान्य सिगरेट होते हैं जिसमें तंबाकू होता है, क्योंकि इसमें भी निकोटीन है और कुछ जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि अंदर जा करके हमारे फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। तो ई सिगरेट भी बहुत नुकसानदायक है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी को वैसे भी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है, या हार्ट की बीमारी है, या थायराइड है, या कुछ और उसको कॉम्प्लिकेशन है, और वो नशे का सेवन करता है, तो उसको ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। अगर किसी को ये नहीं है तो भी नुकसान करेंगी, लेकिन अगर किसी को ये सारी बीमारियां भी साथ में है तो उतना नुकसान करेंगी। तो ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान करेगी। हुक्का का लाउंज में जो भी परोसा जाता है, ये सब नुकसान करते हैं। तो ये
1: वेपिंग क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में बताइएगा।
2: वेपिंग भी वही एक नशे का ही एक प्रकार है, उसको केमिकल डाल के, और आजकल तो बहुत सारे और ऐसी चीजें आ गई हैं कि इंजेक्टेबल भी ले लेते हैं।
1: अच्छा।
2: वेन्स के थ्रू भी लेते हैं, इनहेल भी कर लेते हैं। हमने तो ये देखा है कि टायर को जला के भी कई बार यूज करते हैं, ड्रग्स हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसान है, तो हम जितना इससे दूर रहेंगे उतना ही।
1: तो मतलब अगर जो ये हमें एक्सक्यूज देते हो कि ई सिगरेट और वेपिंग सुरक्षित है, तो हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये भी सुरक्षित नहीं है, दूर रहना ही, तौबा करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तंबाकू की बात हो रही है तो ज्यादातर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू के सेवन से होती हैं और स्वास्थ्य पे असर डालती हैं?
2: देखिए, अगर तंबाकू लेते हैं तो सबसे पहले तो मुंह का कैंसर होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। इसके बाद हार्ट डिजीज है, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, और सीओपीडी जैसे बोलते हैं अस्थमा या इस टाइप से जो आगे रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, ये मुख्य कारण बनते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि तंबाकू शरीर के ब्लड में जा करके शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। जो तंबाकू लेते हैं उनको ये जरूर लगता है कि थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम को जाकर के ब्लॉक करता है और धीरे धीरे धीरे धीरे उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, तो ये नुकसान तो करता है।
1: बिल्कुल नुकसान करता है, लेकिन कई बार एक अच्छा ये भी बात देखने में मिली है, कई लोग इस बात का एक्सक्यूज करते हैं कि भाई हम घर में सिगरेट पी रहे हैं या हम धुएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे लोग नहीं कर रहे, घर में गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं करते, लेकिन कई बार देखा गया कि उनमें भी इसका असर देखने को आता है।
2: देखिए, इसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, क्योंकि जो धूम्रपान कर रहा होता है वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, लेकिन अगर जो धूम्रपान नहीं कर रहा है उसके सामने बैठ के कर रहे हैं और जो नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट तरीके से जो धुआं हमारे अंदर आता है वो भी उतना ही नुकसानदायक होता है जितना कि जो धूम्रपान कर रहा है उसमें होता है। गर्भवती महिलाओं के सामने स्मोकिंग करने से, या गर्भवती महिलाएं खुद भी अगर कर रही हैं, तो फीटल जो बच्चा है उसमें उसको प्रभावित होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लंग्स कमजोर होने के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होने के चांसेस होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको ये पैसिव स्मोकिंग को रोकना चाहिए, घर में कभी ना करें और कहीं भी ना करें, इसको तो छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन अगर नहीं छूट रही है तो कम से कम इतना तो करें कि घर परिवार में, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके सामने, या कोई किसी को कोई बीमारी है उनके सामने, तो बिल्कुल भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से बचें।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से बचना चाहिए। वैसे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि उसका प्रभाव किसी और पर ना पड़े। तंबाकू की बात अगर हो रही है तो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है छोड़ना? अपनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता।
2: इसमें जैसे मैंने बताया कि निकोटिन नाम का जो केमिकल होता है, ये नर्वस सिस्टम पर जाकर के अटैक करता है, और धीरे धीरे ये निकोटिन एक आदत के रूप में बन जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि जब तक हम सिगरेट नहीं लेते या गुटखा पान तंबाकू नहीं खाते, तंबाकू का सेवन नहीं करते, तब तक हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा पेट खराब रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। तंबाकू या नशे की कोई भी चीज़, कोई एंटासिड या एसिडिटी को कम करना या पेट साफ करने की दवा नहीं है, ये एक धीमा जहर है। ये सिर्फ एक मन को शांत करने के लिए लोग बना लेते हैं कि हम ये खा लेते हैं, क्योंकि उसको आदत लग गई है, और वो आदत के कारण उसको ऐसा लगता है,
1: बहाने ढूंढते हैं,
2: भ्रम में ही रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है। आपको कभी भी देखिएगा कि नशे करने वाला व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है।
1: ये बात अगर हम कहें कि किसी ने संकल्प ले लिया कि अब छोड़ना है, क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या बदलाव है जो शरीर में आते हैं तंबाकू छोड़ने से?
2: देखिए, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, सिगरेट तंबाकू ले रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर वो लंबे समय से ले रहा, तो कम से कम 15 से 20 साल की आयु उसकी कम हो जाएगी। और अगर इसको छोड़ा जाए तो 15-20 दिनों में ही इसका असर आना शुरू हो जाता है, सकारात्मक असर आना शुरू हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, पल्स रेट उसके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, कार्डियक रेस्ट उस रेट उस नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे, मन में एक अच्छे भाव आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी काउंसलिंग करें, परिवार उसकी काउंसलिंग करे, डॉक्टर के, बहुत आजकल छोड़ने के लिए एक थेरेपी यूज किया जाता है, योग मेडिटेशन, इसका बहुत अच्छा एक छोड़ने का तरीका है। और अगर जुनून है, छोड़ना है, जज्बा है, तो निश्चित तौर पर छोड़ा जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने डॉक्टर के परामर्श लेके उनके संरक्षण में नशे को छोड़ें। आजकल तो काफी संस्थाएं काम कर रही हैं इसके लिए, नशा मुक्ति केंद्र हैं जहां पर बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, योग मेडिटेशन कराया जाता है, उसको छोड़ने के क्या क्या तरीके हैं और किस टाइप से हमको छोड़ना है, धीरे धीरे धीरे करके कैसे उसको नॉर्मल लेवल पर लाना है, ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो हम इससे छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं।
1: बिल्कुल। परिवार किस तरह की भूमिका निभा सकता है, हमारे समाज के लोग किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताएं ताकि उन्हें मॉरल सपोर्ट मिले और वो इस चीज को छोड़ पाएं।
2: देखिए, कभी भी नशे के लिए मैंने जहां तक देखा है लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको उलाहना देते हैं। आप उनको ताने ना मारें। लोग छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन कई बार तानों की वजह से और मजाक की वजह से छोड़ भी नहीं पाते। तो परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है, उसको प्यार से समझाएं, उसको सहानुभूति दिखाएं, उसके साथ उसके प्लस माइनस सारी चीजें समझाएं कि क्या इसके नुकसान है, क्या इसके क्या मिलना है इससे। और समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जैसे मैंने बताया कि उसको ताने ना मारें, एक उसके साथ एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको समझाया जाए, उसको किसी पर साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास अप्रिशिएट किया जाए, उसको बताया जाए कि आप कितने परिवार के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपका क्या महत्व है, आपका समाज का के लिए कितना महत्व है, आप समाज को राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। जिस दिन अगर कोई भी युवा या कोई भी जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, तंबाकू या किसी का भी, ये समझ जाए कि उसकी सर्विंग क्या, उसको क्या देना है एक देश को, तो वो 100% ये नहीं करेगा, छोड़ देंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात है कि हम उनको प्रोत्साहित करें और उनको इस बात का महत्व समझाएं कि आप महत्वपूर्ण हैं व्यक्तिगत रूप से भी और परिवार के रूप से भी और देश के लिए भी। बात देश तक पहुंचाई है आपने कि भाई ये है, सरकार इतने सारे अभियान चला रही है, इतने जागरूक करने के लिए बहुत सारे स्कीमें भी चला रही है, तो सरकार द्वारा जो चेतावनी चित्रों और विज्ञापन जो होते हैं क्या ये प्रभावी हैं, ये मदद करेंगे?
2: बहुत प्रभावी होते हैं। कई बार ऐसे विज्ञापन देख के जो
1: कैंप
2: सरकार
1: भी लगाए जाते हैं,
2: कैंप भी लगाए जाते हैं और इस टाइप के पोस्टर जो है देख के भी लोग डरते हैं और उसके बारे में कम से कम सोचना शुरू करते हैं। ये पोस्टर देख के एक दिमाग में तो आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी मुझे भी हो जाए और मैं, तो वो एक सोचना तो शुरू करता है। तो एक अच्छा इनिशिएशन है, एक अच्छा शुरुआत अच्छी है, तो ये सरकार का कदम बहुत सराहनीय है। WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है कि सिगरेट पीने से क्या या तंबाकू का सेवन करने से कितने हानियां हैं, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो बहुत सारे अभियान, NGOs भी जो निजी संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं। अगर मुझे लगता है कि हम सब मिलके इसके लिए कदम उठाएं, हमारे परिवार के तौर पर, समाज के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर, नॉन मेडिकोस के तौर पर, अगर सब मिलकर के इसको करें तो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पर इसके ऊपर विजय पा लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा देश, हमारा युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूं कि 6वीं 7वीं के बच्चे भी आजकल नशे का सेवन करने लगे हैं, तो अगर ये सब मिलकर के इसके लिए एक युद्ध छेड़ दें कि नहीं, इसके लिए हमको विजय पाना है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो निश्चित तौर पर हम इस पर विजय पा लेंगे और इसके आजादी मिल जाएगी।
1: कोई ऐसा वाक्य हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि आपने देखा हो कि इन्होंने नशा छोड़ा हो काफी मशक्कत के बाद, तो उसमें काफी सकारात्मक बदलाव आपको देखने मिले हो?
2: मेरे पास एक युवा महिला आई थी और एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थी कुछ समय पहले, और वो अल्कोहल और तंबाकू और ये सारा सिगरेट वगैरह सब का सेवन करती थी, लेकिन उनका जब शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा तो वो आए, तो उनको मैंने काउंसलिंग की और उनको थोड़ा ये समझाया कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और जो हो रहे थे उनको, धीरे धीरे धीरे धीरे उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और छोड़ना शुरू किया। उसके बाद वो ई सिगरेट जो आपने बात की उसमें आए और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है, तो उनको उसके भी दुष्परिणाम बताए। धीरे धीरे धीरे धीरे उनको कई छोड़ने में दिक्कत गई, लेकिन उसके परिवार को भी बुलाया और उनके परिवार वालों को भी समझाया, तो एक सामूहिक प्रयासों से न सिर्फ खाली मेरे दवाओं से ही कुछ नहीं होता है, इसके लिए एक खुद का जज्बा होना भी जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से आज वो उन्होंने पूरी तरीके से उससे मुक्ति मिल गई है और वो अपना बहुत अच्छा एक हेल्दी लाइफ अपना व्यतीत कर रही हैं।
1: तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस बात के सबूत आपके पास हैं कि मतलब छोड़ दिया जाए इसको तो नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, बल्कि आप उसका एडिक्ट रहेंगे तो आपको नुकसान बढ़ेगा
2: निश्चित तौर पर। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तंबाकू लेते हैं, सिगरेट वगैरह लेते हैं, वो ये बात हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जब भी मैंने छोड़ने की कोशिश की है तो मेरे को और दिक्कत हो गई है, मैंने कोशिश की लेकिन उसके बाद मेरे को और हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो ये उनको समझाने की जरूरत है कि जब आप छोड़ें तो किस तरीके से छोड़ें और छोड़ने के साथ हमको क्या सप्लीमेंट देना है, क्या साथ में दवाओं का स्टार्ट करना है और किस तरीके से उनको व्यायाम करना है, क्या डाइट रखनी है, कितना उनको योगा मेडिटेशन, ये सारी चीजें एक साथ करने से निश्चित तौर पर वो नशा आपका छूट सकता है।
1: बिल्कुल, बात हो रही है तंबाकू की तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम करना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा चलन है बीड़ी का, सिगरेट तो कम है वहाँ पर लेकिन बीड़ी और खैनी परोसी जाती है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जब कोई पारिवारिक समारोह होता है तो उसमें बकायदा प्लेट में रख के परोसा जाता है कि आप इसका सेवन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कितनी आवश्यकता है?
2: जितना शहरी क्षेत्रों में है उतना ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी है।
1: इन्हें कैसे समझाएं?
2: ग्रामीण, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी समझाने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, उनको इसके इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और खासकर इसकी शुरुआत नीचे से ना करते हुए ऊपर से करेंगे, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति जो दादा दादी नाना नानी ये सेवन करते हैं, विरासत में दे रहे हैं, उनको पहले समझाया जाए कि इससे क्या दुष्परिणाम है, क्योंकि देखा गया है कि उन्होंने अपने पोते को गोद में रखा है और बीड़ी पिए जा रहे हैं तो वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ में जो छोटा बच्चा है उसके भी लंग्स में वो उतना ही नुकसान कर रहा है, तो उनको समझाया जाए कि इससे ये दुष्परिणाम होते हैं, तो वो समझें, फिर वो अपने छोटों को समझाएं और धीरे धीरे धीरे धीरे ये जड़ से खत्म हो जाएगा।
1: तो बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर ग्रामीण स्तर पे भी समझाना है तो शुरुआत बड़ों से करनी होगी, तब वो नीचे तक जाएंगे। स्कूल, पंचायत और स्वास्थ्य शिविर, ये किस तरह से काम आ सकते हैं?
2: स्कूल में मुझे तो लगता है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, आज की भया इस सामाजिक जो परिवेश को देखते हुए मुझे निश्चित तौर पर लगता है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। स्कूलों में जैसे शनिवार है या कोई भी इस टाइप से एक दिन निश्चित करके इसके बारे में बताया जाए, बाहर से कुछ लोगों को, विशेषज्ञों को बुलाया जाए, काउंसलर्स को बुलाया जाए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है और जैसे ही बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में फिर वही काउंसलिंग एक बार होनी चाहिए, तो हर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हर स्टेप में काउंसलिंग होनी चाहिए, तो सोशल मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए, न्यूज़ मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी जानकारी तो बता दी, मेरे मन में भी सवाल आ रहा और हमारे सुनने वालों के भी मन में सवाल होगा, सबसे बड़ा इस समय एक बीमारी है तनाव, डिप्रेशन, क्या ये बहुत बड़ा कारण है, क्या इसको दूर करके भी इसको जोड़ा जा सकता है?
2: जी, तनाव, डिप्रेशन ये एक सेल्फ क्रिएटिंग प्रॉब्लम ही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तब से ही तनाव शुरू हो जाता है और मरते दम तक रहता है किसी न किसी रूप में, तो तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये जरूर लगता है जो नशा करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी तनाव हो गया, डिप्रेशन आ गया या कुछ भी पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक सिगरेट ले लेंगे या पाउच ले लेंगे तो उससे उनको बड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, जो कि आपके ब्लड में जाके, आपके लंग्स में जाके आपके हर चीज को प्रभावित कर रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और सिगरेट या नशे को छोड़ने के लिए योग, मेडिटेशन, म्यूजिक, ये थेरेपी बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट, आपका एक शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है इसका, अपने शरीर की को रिस्पेक्ट करें, शरीर की बनावट की रिस्पेक्ट करें, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना इस चीज़ को समझें, और हमेशा अपने डॉक्टर के, अपने गुरुओं के, अपने परिवार के संपर्क में रहें, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, आपने कामयाबी की बात करी है और बिल्कुल सही कहा है कि हम सकारात्मक माहौल में रहेंगे और तो हमें बिल्कुल इसमें सफलता मिल जाएगी। आपने बहुत लंबा समय आपने डॉक्टरी में प्रैक्टिस किया हुआ है, तंबाकू के कई आपने केसेस देखे हैं और उनको निपटाया भी है सही तरीके से, कि भाई सुधार भी किया है और उनको सुरक्षित भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आज विशेष दिन पर?
2: निश्चित तौर पर मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मैंने हमेशा शुरुआत की है बच्चों से। जब भी कोई बच्चा आता है तो उनकी बातों को समझें, अगर बच्चा अकेला है तो उसको समझें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करें। युवा वर्ग भी है, अगर वो नशे की गिरफ्त में है तो उनको समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ले रहे हैं, उसके डायग्नोस करें उसको कि इसका कारण क्या है, क्या ये एक सामाजिक दिखावे के तौर पर ले रहे हैं या इनको कोई स्ट्रेस है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये लेने से इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, या ये क्या चाह रहे हैं। जब तक आप युवा वर्ग की या जो भी नशा ले रहे हैं इनकी मनोस्थिति को नहीं समझेंगे, इसको दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने तो वो नहीं लेंगे लेकिन बाद में जाके वही करेंगे जो उनको करना है। हमको इनकी मनोस्थिति को समझना है, इनको मन को समझना है, और मन को समझ के इनकी काउंसलिंग करनी है कि इसके क्या दुष्परिणाम बाद में हो सकते हैं। आप इनका दोस्त बनिए, इनका मजाक ना उड़ाएं, इनको ताने ना मारें, इनके दोस्त बने। जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको समझेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और खुद को गंभीरता से लेंगे। आप उनको समझाएं कि खुद के दोस्त बने, खुद की रिस्पेक्ट करें, नशे से क्या नुकसान हो रहा है, इससे आप कहां जा रहे हैं, आपकी आगे आगे आने वाले दिनों में आपको और कौन सी परेशानियों का सामना पड़ सकता है। हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आए आप, हो सकता है आपको दमे की बीमारी हो जाए, हो सकता है रीनल प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी चीजें आपको उनके सामने रखना है। तो ये उन चीजों को वाकई समझेंगे और फिर ये हो सकता है कि निश्चित तौर पर उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बेहद ही विस्तृत रूप में हम सबको बताया कि भाई धुएं में और तंबाकू से हमको दूर रहना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जीवन को खत्म करने वाला जहर है, आपने ये चीज़ बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमें ये संकल्प लेना होगा दोस्तों कि हम खुद भी तंबाकू से दूर रहेंगे और अपने परिवार, बच्चों और समाज को भी इसके नुकसान के प्रति पूरी तरह से जागरूक करेंगे, क्योंकि तंबाकू और धुएं ये हमारे लिए बेहद नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये केवल आदत नहीं है, ये एक बीमारी है जो हमारे शरीर को तोड़ती है, परिवार को तोड़ती है और सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम अधूरा नहीं हो सकता, और इंसान तो हर जंग जीत सकता है, जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, जीवन अनमोल है, हमारी सांसें किसी धुएं की मोहताज नहीं है, हमारे सपनों को किसी जहर की जरूरत नहीं है। तो इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं विदा। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और वाचन में मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रैगवार। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 MHz पर।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह से विभिन्न विषयों पर जानकारी लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। बस आप वादा कीजिए कि आप बने रहेंगे 90.8 MHz पर। सुनते रहेंगे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने का हमारा प्रयास चल रहा है और इसी सिलसिले में आप सुन रहे हैं सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा। और श्रोताओं, जैसा कि आपको याद होगा कि हम पिछले सप्ताह के एपिसोड में जिक्र कर रहे थे कि किस तरह भारतीय थल सेना ने इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पश्चिमी मोर्चे पर जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई उसकी गौरव गाथा लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हम पिछले बार जिक्र कर रहे थे
2: जी
3: बैटल ऑफ बसंतर का
2: जी, बिल्कुल,
3: जो कि इस पूरे के पूरे 71 वॉर में की सबसे प्रचंड बैटल थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और इसमें आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फियर्स रहा था कि दो दिन के इस बैटल में 15 से 17 दिसंबर तक जो ये लड़ी गई थी, इसमें दो परमवीर चक्र और 5 महावीर चक्र से जो है लोगों को सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स भी मिले थे। तो हाउ फियर्स दिस बैटल इज, यू कैन वेल इमेजिन अबाउट इट। एंड इस बैटल में सबसे बड़ी बात जो हुई थी, इंडियन आर्मी जो है आउटशाइंड एंड इट इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तान टैंक्स एंड इन्फेंट्री सोर्सेस। ऑलमोस्ट एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो होती है जिसमें 100 से ज्यादा टैंक्स हैं, उसका जो एक मेजर पोर्शन जो है बर्बाद कर दिया था। और ये बहुत बड़ी सफलता मिली थी
2: जी।
3: इसकी मतलब कुछ जो है मुख्य बातें हम आज आप जिक्र करते हैं
2: जी, बिल्कुल सर।
3: जैसे मैं शुरुआत करूंगा कि जब इनिशियल फेज में अटैक के बसंतर रिवर को क्रॉस करना था
2: जी,
3: उसके लिए 16th बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट थी, उसको मतलब टास्क दिया गया था कि वो दुश्मन की दो वाइटल लोकेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, उन पर कब्जा करें
2: जी।
3: तो अब जो इनिशियल जो बटालियन जाती है, जो सबसे पहले जाती है, आप समझ सकते हैं उस समय दुश्मन भी तैयार रहता है पूरी तरह से,
2: जी बिल्कुल,
3: एंड आप भी तैयार रहते हो। सो इट

0: The battle of wits, it's a battle of gallant, it's a battle of bravery. कि दोनों में से कौन जीतेगा?
1: कौन जीतेगा? पहली बाजी जो मार लेता है सर, वो आखिरी तक आगे हावी रहता है.
0: आगे हावी रहता है. और ये अगर उस दो लोकेशन जो भी इनका जो ऑब्जेक्टिव था, दो लोकेशन तीन लोकेशन, वो कैप्चर करने के बाद ही आगे के लिए रास्ता बनेगा.
1: जी बिल्कुल.
0: ठीक है, ब्रिजेट बनेगा आगे के लिए जो है, एडवांस होगा.
1: जी बिल्कुल.
0: तो 16 मद्रास को दो लोकेशंस कैप्चर करने को जो टास्क था उस पे उन्होंने अटैक किया. और इट वाज अ वेरी इंटेंस बैटल अगेन, क्योंकि उन्होंने दुश्मन पूरी तरह से तैयार था. उन्होंने बहुत स्ट्रांग माइनफील्ड्स लगा रखी थी. उनके जो है वेपन्स जो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर था, देन आर्टिलरी फायरिंग का सपोर्ट था, आर्टी सपोर्ट था, सब कुछ था.
1: जी.
0: और मतलब उनके पास जो है इवन कंपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा वहां पे लोग थे.
1: अच्छा.
0: इस बैटल में जो है एक वक्त ऐसा आ गया था कि हैंड टू हैंड फाइट हो रही थी.
1: अच्छा.
0: सोल्जर्स की एक एक बंकर क्लियर कर रहे थे लोकेशंस पे. करने के बाद जो है 16 मद्रास वाज एबल टू कैप्चर दिस ऑब्जेक्टिव. दो लोकेशन को उन्होंने कैप्चर करा.
1: जी.
0: अब पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले बोला, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि उसको जो है डिफेंड करना. क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हम हार गए तो इसमें बसंता रिवर क्रॉस करने का इंडिया को जो है
1: मौका
0: मिलेगा.
1: जी बिल्कुल.
0: और साथ साथ जो उनके आगे के लोकेशंस हैं वो खतरे में आ जाएंगे. ठीक है. पाकिस्तान ने जो है इस पे काउंटर अटैक करना शुरू किया रिगेन करने के लिए. अब वो एक के बाद एक जो है अटैक करते गए. आप ये समझिए कि दो दिन तीन रातें लगातार उन्होंने काउंटर अटैक्स किया. तो कितने बार उन्होंने काउंटर अटैक किया होगा, एक के बाद एक. एंड हर बार जो है जो डिफेंसेस होल्ड कर रहे थे, तंबीज, जिसको मद्रास रेजिमेंट में हम जवानों को तंबीज बोलते हैं,
1: जी, जी,
0: तो जो होल्ड कर रहे थे तो दे वेरी ब्रेवली एंड उन्होंने इस लोकेशन को अपने हाथों से जाने नहीं दिया.
1: जी.
0: वो जो है जितने बार अटैक होता रहा उतनी बार उसको जो है रिपल्स करते चले गए. तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था कर्नल बीपी गही साहब जो थे, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द सेंस जो है अटैक में भी, उसके बाद भी, एंड इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग वेरी सीरियस इंजुरीज, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल, फिर भी जो है वो लड़ते रहे. एंड लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के लिए, शहीद हुए. देखिये, ये जो रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट जो है, इसका मोटो है इट्स ग्लोरी टू डाई डूइंग वन्स ड्यूटी.
1: जी, यानी कि स्वधर्म में निधन श्रेय.
0: अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने. तो इसको जो है ट्रू सेंस में अपने रेजिमेंट के मोटो के लिए उन्होंने जो है उसको कायम रखते हुए जो है शहीद हुए. एंड इसके लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था पोस्टमसली.
1: यानी अपने पहले धर्म के लिए बलिदान हो जाना.
0: बलिदान. जी. इसी तरह से 16 मद्रास के एक और सोल्जर थे, हवलदार थॉमस फिलिपस.
1: जी.
0: उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से जो है लड़ते हुए अपनी प्लेटून को, क्योंकि वो प्लेटून कमांडर नहीं थे, प्लेटून कमांडर जो है शहीद हो गए थे, तो उन्होंने टेक ओवर किया था.
1: जी.
0: और वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि आखिरी बंकर जो है कैप्चर नहीं किया गया था. ही ऑल्सो रिफ्यूज कि भाई चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बावजूद जो है वो इवैक्यूएट नहीं हुए थे. तो उनको भी जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इसी तरह से जो बैटल ऑफ बसंतर है उसमें बहुत सारे करेजियस एक्शंस देखे थे. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि इसमें दो परमवीर चक्र, पांच महावीर चक्र और अनगिनत जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स मिले थे.
1: आप जैसा बोल भी रहे ना कि प्रचंड युद्ध था सर.
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं यहाँ पे जो दो परमवीर चक्र विजेता है उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा.
1: बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे सर इन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में.
0: जी.
1: और ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं जो आज इस कार्यक्रम को सुन रही है वो इससे प्रेरणा ले पाए.
0: तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का.
1: जी.
0: जो उस समय मेजर थे और 3 कैनेडियंस में चाली कंपनी कमांड कर रहे थे. इस बटालियन को भी जो है 16 मद्रास की तरह जो टास्क मिला था
1: जी
0: आगे बढ़ के ब्रिजहेड एस्टैब्लिश करने का. अच्छा. मतलब इन द सेंस रास्ता
1: बसंतर
0: रिवर पे. जी. जैसे यहाँ जो है 16 मद्रास लड़ रही थी उसी तरह से 3 ग्रेनेडियर्स भी लड़ रही थी.
1: जी, जी.
0: जो है 3 ग्रेनेडियर्स का टास्क था, मतलब एक लोकेशन थी जरपाल, उसके ऊपर कब्जा करना. अगेन जैसे कि हम यहाँ पे 16 मद्रास में हमने देखा था कि दुश्मन ने काफी अच्छे से तैयारी करके रखी हुई थी एंड इसी तरह से ये लोकेशन भी बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड थी. तो जैसे ही कंपनी मतलब आगे बढ़ी है तो उनके ऊपर काफी हैवी फायरिंग आई, शेलिंग आई. ठीक है, काफी उनको जो है कैजुअल्टीज हुई. लेकिन अगेन ग्रेनेडियर्स जो थे जो है सोल्जर्स थे वो जो है कॉन्स्टेंटली लड़ते रहे एंड ये उनकी हिम्मत, बहादुरी और जज्बा जो है उसके चलते हुए जो है उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अपना कैप्चर किया जो है। यहाँ पर भी सेम तरह के हालात थे कि एक एक बंकर को क्लियर करने के लिए हैंड टू हैंड फाइट हुई, एक एक बंकर क्लियर करने के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ी थी।
1: आमने सामने आ गए,
0: आमने सामने आ रहे हैं बंकर, मतलब सुनने में शायद आपको अगेन आसान लगे लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक एक बंकर को क्लियर करने में काफी टाइम लगता है, वहां से फायरिंग आ रही है आपके ऊपर, दुश्मन को भी मालूम है कि अभी मेरे ऊपर चार लोग आएंगे तो जो है मैं खत्म हो जाऊंगा, उसको भी वो अपनी
1: पूरी तैयारी
0: सब चीजों के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने यूनिट के लिए लड़ रहा है, अपने आप के लिए लड़ रहा है, सबके लिए वो लड़ रहा है। तो ही इज ऑल्सो इक्वली मतलब रेजिस्टेंट, तो उसको काबू करना, उसको ऊपर कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगेन जैसे ही ये लोकेशन पे कैप्चर हुआ तो दुश्मन ने जो है काउंटर अटैक लॉन्च करना शुरू किया, और इस बार उन्होंने जो काउंटर अटैक को लॉन्च कर रहे थे उसमें आर्मर्ड भी थी, आर्टिलरी का सपोर्ट भी था। अब ब्रिगेडियर हुशार सिंह साहब जो थे ही वॉज कमांडिंग दैट कंपनी, ये जो कंपनी कमांडर साहब होते हैं उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनके जज्बे पे, उनकी लीडरशिप के ऊपर जो है पूरी कंपनी निर्भर होती है। और हुशार सिंह साहब जो थे वो एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच जो है अपने जवानों का हौसला अफजाई करते रहे, बढ़ते रहे, उनको जो है उन्होंने हर काउंटर अटैक पे उनका हौसला अफजाई करते रहे और खुद भी लड़ते रहे। ऐसे करते करते मतलब इवन उनको जो आर्टिलरी शेलिंग में उनको खुद को जो है कैजुअलिटी हुई थी जो है, लेकिन फिर भी जो है वो पीछे नहीं हटे और दुश्मन को जो है उन्होंने हैवी कैजुअलिटी पहुंचाई थी। फिर से दोबारा जो है उनके ऊपर काउंटर अटैक आया, ठीक है। तो इस दौरान जो है लड़ाई जब चल रही थी तो जो MMG गन थी उसका क्रू को गोली लग गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो हुशार सिंह साहब खुद जो है उन्होंने MMG को ऑपरेट किया और वो लगातार दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे। सी हाउ फियर्स इट कैन बी कि ये जो अटैक था फाइनल अटैक था एक तरह से 17 तारीख को जो हुआ था, और उसमें दुश्मन की पूरी बटालियन थी जो है उसमें उनके 80 जवान मतलब मरे थे, इंक्लूडिंग उनके बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर साहब, उनको छोड़ के जो बाकी लोग डिमोरलाइज होकर चले गए थे,
1: भाग गए थे
0: इन द सेंस क्योंकि इतना मतलब जो है इतना जो है इन्होंने स्ट्रांगली लड़ाई लड़ी थी। एंड उसका सबसे बड़ा कारण था कि हुशार सिंह साहब जो थे वो खुद वहां खड़े थे, एक एक जवान के साथ खड़े हुए थे, प्रेरित कर रहे थे। एंड नो डाउट दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ एग्जेम्पलरी करेज एंड ब्रेवरी एंड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, जिसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एंड वेरी राइटली सर वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। एंड उसी के कारण जो है युद्ध का जो है मतलब स्वरूप बदल
1: गया, दुगने उत्साह से लड़ाई होने लगी है ना सर,
0: दुगने उत्साह से लड़ाई हो रही है। आप दुश्मन का जो है ने जो है टैंक्स के ऊपर और जो उनके रिसोर्सेस हैं उसको नुकसान पहुंचाया, समाप्त कर दिया है। एंड जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और बहादुर ऑफिसर थे जिनको हम सब जानते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब। एंड वो 17 पूना हॉर्स के थे
1: जी।
0: आपको अगर याद हो 17 पूना हॉर्स के पहले भी एक परमवीर चक्र जी सर है ना, तो वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे और 17 पूना हॉर्स के दूसरे परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
1: सर। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सबसे कम उम्र वाले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र
0: जी। बिल्कुल सही बोला आपने, मात्र 21 साल की उम्र थी उनकी जब
1: उन्हीं के ऊपर 21 वर्ष से ही मूवी भी बनी है सर।
0: 21 में बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इनका जो कमीशन हुआ था पूना हाउस में 13 जून को हुआ था 71 को, तो मतलब से 6 महीने पहले, लड़ाई से 6 महीने पहले जो है इन्होंने यूनिट ज्वाइन करी थी। इट्स अगेन यूनिक फीचर फॉर ए यूनिट, आप देखिए पूना हाउस के लिए जिसमें कि दो दो परमवीर चक्र हैं। ऐसी एक और यूनिट भी है बाय द वे, अगर को याद हो लांस नायक करम सिंह जी और सुविधा जोगिंदर सिंह जी, दोनों जो है परमवीर चक्र विजेता फर्स्ट सिख के थे
1: जी। अपन ने कार्यक्रम में इस दौरान उनका भी
0: उनका जिक्र किया है हमने, है ना, कार्यक्रम में उनका जिक्र किया है। तो 71 पूना हॉर्स जो थी ऑफेंसिव ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ था शुक्रगढ़ बल्ज में, तो इनको भी टास्क मिला था ब्रिजहेड एस्टेब्लिशमेंट करना है, यानी रास्ता जो बनाना है, उसमें जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसके साथ ये लोग थे।
1: अच्छा,
0: तो 15 दिसंबर को इन्फेंट्री ने जो है सक्सेसफुली ये लोकेशंस कैप्चर कर ली थी क्रॉस जो है बसंतर, तो
1: रास्ता क्लियर हो गया था,
0: रास्ता क्लियर हो गया था, है ना। अब वो जैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि उस पे काउंटर अटैक आया था दुश्मन का, जिसमें कि आर्मर्ड रेजिमेंट के टैंक्स भी थे, ठीक है। तो जो स्क्वाड्रन थी इन्फेंट्री के साथ जो है उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा टैंक्स आ गए थे क्योंकि दुश्मन की रेजिमेंट थी, तो उन्होंने जो है रीइन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया। तो जब रीइन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया तो जो अरुण खेत्रपाल साहब थे वो वहां पास में ही लोकेटेड थे, तो उन्होंने क्या किया अपने ट्रुप में, मतलब जो टैंक्स होते हैं उसके साथ इमिडिएटली जो है उन्होंने रश किया।
1: अच्छा,
0: कि वो स्क्वाड्रन को सपोर्ट कर सके। अब वो जब जा रहे थे तो रास्ते में जो है उनके ऊपर भी काफी हैवी फायरिंग आई दुश्मन की लोकेशन से।
1: अच्छा,
0: और आरसीएल गन्स होती हैं जो रिकॉयललेस गन होती है जो टैंक्स के लिए घातक होती है, तो माइनफील्ड में लगी हुई थी, उससे भी उनके ऊपर फायर आया। तो ये उनके साथ जो है लड़ते हुए इन्होंने उन सबको जो है खत्म किया, नेस्तनाबूद किया जो है। और इनफैक्ट इस दौरान उन्होंने काफी सारे दुश्मन के जो है जवानों को POW प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनाया, पकड़ा भी है। और ये सब जब ओपोजिशन खत्म करके जो स्क्वाड्रन थी उसके मतलब जो है वहां तक पहुंचे सपोर्ट करने के लिए जिसको जा रहे थे, तब तक जो है दुश्मन का काउंटर अटैक फिजल आउट हो गया था, वो काउंटर अटैक जो है सफल नहीं हुआ था और वो लोग वापस जा रहे थे। तो उनके पीछे पीछे जो है जाके
1: उनका पीछा किया,
0: हाँ, पीछा किया और उनके एक टैंक को बर्बाद किया। तो मतलब जो कमांडर साहब थे उनको, मतलब जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उनको काफी परसुएड करना पड़ा कि भाई मत करो, आप इनके पीछे मत जाओ, अभी बहुत कुछ है, करना है। सी इट्स अ जोश,
1: जी बिल्कुल,
0: यंग जोश जो होता है वो वाली बात थी। तो थोड़ी देर बाद क्या है, दुश्मन ने फिर से दोबारा काउंटर अटैक लॉन्च किया। अच्छा, इस बार उन्होंने अटैक लॉन्च किया था जहाँ पे अरुण खेत्रपाल साहब थे, डिप्लॉयड थे, तो उस लोकेशन से उन्होंने मतलब जो काउंटर अटैक लॉन्च किया। अब इसमें जो है इट वाज अ वेरी फियर्स बैटल, टैंक टू टैंक बैटल शुरू हो गई जिसमें कि दुश्मन के 10 टैंक डिस्ट्रॉय हुए और कहते हैं कि उसमें से 4 तो अरुण खेत्रपाल साहब की जो ट्रुप थी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, खुद किए जो है। तो ये जब हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, ये 3 टैंक्स में थे, 2 टैंक्स जो थे खेत्रपाल साहब के जो ट्रुप थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अभी जो है इनका जो टैंक था वो ही बचा था, ठीक है। अब वो भी जो है ये लड़ते रहे। इस बीच में इनके टैंक को भी जो है दुश्मन का गोला लगा,
1: अच्छा,
0: जो है फायरिंग में, और उसमें से ये आग में घिर गया पूरी तरह।
1: अच्छा जी,
0: अब देखिए टैंक जल रहा है तो सुनिश्चित है कि आदमी बचेगा नहीं। तो उनको हुक्म भी था कि भाई आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने देखा कि टैंक की जो गन है वो काम कर रही है, तो ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट लीव द टैंक एंड ही केप्ट ऑन फायरिंग ऑन द एनिमी। और ऐसे करते करते उन्होंने जो दुश्मन के जो बाकी टैंक्स थे वो भी डिस्ट्रॉय किए, यहाँ तक कि जो लास्ट टैंक था जिसको डिस्ट्रॉय किया वो कहते हैं उनके लोकेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर पे था। जब उन्होंने कम्युनिकेट कर रहे थे अपने कमांडर को, जब उनको बोला गया कि आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, कि ये एग्जैक्टली वर्ड जो बोलते हैं, कहते हैं कि नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल फायरिंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स।
1: क्या बात है,
0: ये एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, बहुत बहुत बड़ा जज्बा है। तो उसके बाद जो इनका टैंक को सेकेंड हिट लगा एंड दिस ब्रेव सोल्जर जो थे शहीद हो गए, लेकिन
1: यानी वो टैंक उन्होंने छोड़ा
0: नहीं,
1: अंतिम सांस तक
0: नहीं छोड़ा। एंड इसके कारण के जो एफर्ट्स थे तो उससे दुश्मन का जो काउंटर अटैक था वो तो फिजल आउट हो गया। जो उनको दुश्मन का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो नहीं,
1: नष्ट हो गया।
0: एंड अरुण खेत्रपाल साहब जो थे, इन ट्रू ट्रेडिशन ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, ही लेट डाउन हिज लाइफ and he was awarded Paramvir Chakra posthumously for his brave action.
1: अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा है सर।
0: बिल्कुल, आपने सही बोला।
1: जी।
0: इतिहास में आपको ऐसे जो है actions बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
1: सर यहाँ एक सामान्य नागरिक का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सर टैंक के अंदर कितने व्यक्ति होते हैं?
0: टैंक में 3 लोग होते हैं जनरली, जैसे एक ड्राइवर होता है, एक लोडर होता है, एक कमांडर होता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन तीनों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता
1: जी,
0: है।
1: उनका भी कोऑर्डिनेशन है ना, तभी
0: कोऑर्डिनेशन है
1: जी,
0: क्योंकि जो गनर होता है जो लोड करते हैं
1: जी,
0: लोडर नहीं उसको गनर बोलते हैं, ड्राइवर गनर एंड जो है कमांडर।
1: तो सर वो जो गोले होते हैं वो टैंक के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम उसको लंबी लड़ाई लड़ सके
0: या अच्छा। होता है उसमें काफी राउंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के राउंड्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं।
1: यानी ये इतना त्वरित निर्णय होता होगा किस तरह का गोला हमें अब डालना है।
0: बिल्कुल, वो तो है ही है। उसके अलावा उसकी जो मोबिलिटी होती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जब चार टैंक एक साथ जब चल रहे होते हैं, पांच टैंक चल रहे होते हैं, धूल उड़ रही होती है, उसके बीच में जो वो आवाज होती है ना, उससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा टैंक आ कहाँ से रहा है। एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपको लगेगा टैंक आपके दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। आवाज इस तरह से आती है जो है, हम जब ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा है, ये
1: जब तक आप इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं लेंगे आप इन्हें ऑपरेट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं अरुण खेत्रपाल साहब के बारे में, सर के बारे में सोचता हूँ, मतलब ही इज रियली पर्सन हु मोटिवेट्स अस।
1: जी बिल्कुल सर,
0: विदाउट एनी डाउट।
1: बिल्कुल सर,
0: एंड वी सैल्यूट हिम फॉर हिज ब्रेवरी एंड हिज गैलेंट एक्शन।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो ये था बैटल ऑफ बसंतर, जो कि शकरगढ़ बल्ज की, जैसे कि बोला कि सबसे जो है प्रचंड बैटल रही थी। उसके बाद जो है 17 दिसंबर को सीज फायर डिक्लेयर हो गया था
1: जी,
0: तो ऑपरेशंस जो है वहीं पे खत्म हो गए थे। कहते हैं कि अगर थोड़ा वक्त और रहता
1: जी,
0: तो शायद हम काफी इसमें एडवांस कर सकते थे, और ये जो बल्ज है
1: जी,
0: ये हो सकता है हम इस पे
1: हमारे कब्जे में होता,
0: हमारे कब्जे में होता जो है। एनीवे वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स
1: जी।
0: तो इसी तरह से जो है नीचे अगर हम आते हैं पंजाब में, खेमकरण सेक्टर में जो है फिरोजपुर, अमृतसर, अमृतसर के नीचे फिर फिरोजपुर, उसके नीचे खेमकरण सेक्टर आता है, वहाँ पे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। वहाँ पे भी एक बल्ज है, उसको सेजरा बल्ज बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: 55 किलोमीटर का है ये, खेमकरण के साउथ ईस्ट में लोकेटेड होते हैं।
1: अच्छा,
0: इसको भी जो है दुश्मन ने, पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था, बटालियन से ज्यादा स्ट्रेंथ थी
1: जी,
0: और उनके पास जो है और भी जो है टैंक्स वगैरह थे उसमें।
1: अच्छा,
0: और 6 दिसंबर को इसको जो है कैप्चर किया था 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअल्टीज ऑन एनिमी। इट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब जो है बहुत ज्यादा जो है फियर्स ऑपरेशन रहा था, बैटल रही थी। अच्छा, इसको कैप्चर करने से क्या था, जो उसके पीछे हरिके डैम में आए, हरिके जहाँ पे सतलज वो जो ब्रिज है वो जो है उसके ऊपर जो है किसी तरह का खतरा जो था वो खत्म हो गया था। दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। नीचे अगर हम आते हैं मतलब वेस्ट में आगे बढ़ते हैं तो फिर राजस्थान सेक्टर आता है। राजस्थान सेक्टर में हम सब ने 2-3 बार इसका जिक्र किया है, बैटल ऑफ लोंगेवाला का।
1: जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी, आज तक भी लोग याद करते हैं इस बैटल।
0: बिल्कुल याद करते हैं इसको, द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाला। अगेन इट वाज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ जॉइंट फ्रेंडशिप बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसलमेर के आगे जो है वेस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो ये पोस्ट है लोंगेवाला, उस समय 23 पंजाब की जो यूनिट है उसकी अल्फा कंपनी ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था
1: जी।
0: जो है डिफेंसेस इख्तियार किए हुए थे, और 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने इस पोस्ट के ऊपर अटैक लॉन्च किया था। ठीक है, उनका इरादा एक्चुअली जैसलमेर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसके लिए उनको जरूरी था कि वो इस पोस्ट को क्लियर करें।
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए उन्होंने जो है 2 स्क्वाड्रन टैंक्स के, मतलब तकरीबन देखिए 28 से 30 टैंक्स,
1: अच्छा,
0: और 2 इन्फेंट्री कंपनी के साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था इस कंपनी के ऊपर। जो है डेजर्ट का इलाका है, प्लेन है, एक तो उसमें डिफेंस इख्तियार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको नेचुरल जो है जैसे पहाड़ों में क्या होता है, एक नेचुरल ऑब्स्टिकल होता
1: छिपने
0: है, छिपने की जगह कम होती है, ऑब्स्टिकल्स भी नहीं होते। ठीक है, ओके। तो या जैसे कैनाल्स होते हैं ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, जंगल होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, तो ये नहीं होता। तो इसमें इन्होंने जो डिफेंस इख्तियार करी थी, तो टैंक्स इनके ऑलमोस्ट 50 मीटर तक आ गए थे, इतनी पास से आके लड़ रहे थे, और उसमें जो जवान है अंदर बैठे हुए हैं वो अपना डिफेंस में उसको इतना स्ट्रॉन्गली होल्ड करे हुए हैं कि उनको उन्होंने कब्जा करने नहीं दिया। अटैक शुरू होने के बाद से जो है पूरी रात मतलब जो है लड़े हैं, एंड इस बीच में जो है NNF उसको जो है
1: सैनिकों ने सर टैंकों को रोके रखा
0: एंड बिल्कुल रोके रखा ठीक है उनके पास आसिल गन्स थी बट उसके बावजूद जो है और इन्फेंट्री भी थी जो अटैक कर रही है ओनली टैंक्स हैं जो अटैक कर रहे हैं तो उसके बाद सुबह सुबह जो है एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू किए थे जिसमें हम सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट They destroyed 17 tanks और 23 जो टैंक्स थे उन्होंने अनसर्विसेबल कर दिए थे 11 सॉर्टीज करी थी अगेन यूनिक ऑपरेशन ठीक है अब इसमें भी देखिए एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा था ठीक है मतलब दे रियली प्लेड ए मेजर रोल इन इट एंड ग्राउंड के ऊपर जो ट्रुप्स थे और उनके कंपनी कमांडर साहब थे ब्रिगेडियर के एस चांदपुरी साहब उस समय वो मेजर थे He played a vital role, ठीक है? Again, like, हमने जैसे जिक्र किया था ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का उसी तरह से चांदपुरी साहब ने भी जो है अपनी कंपनी की हौसला अफजाई करी ठीक है अब देखिए जवान को मालूम है कि इस समय मैं लड़ रहा हूँ मेरे सामने से टैंक्स आ रहे हैं सामने से फायर आ रहा है एंड आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं कोई कुछ नहीं होगा मैं हूँ तेरे लिए बहुत बड़ी बात ठीक है एंड ये जो है उन्होंने स्ट्राइक आने तक 23 पंजाब के जो बहादुर जवान थे उन्होंने पोस्ट होल्ड करके रखी जो है इंडीड ही वाज अवार्डेड विद महावीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रेव लीडरशिप तो जब तक ऐसे बहादुर
1: बहादुर सिपाही नहीं रहेंगे तब तक जीत तो मिलना मुश्किल है नामुमकिन है
0: जी और जब तक ये लोग हैं तब तक इस देश का कोई बाल बांका
1: नहीं कर सकता बिल्कुल सर
0: जब तक इतने बहादुर जवान हैं हमारे पास और इतने काबिल लीडर हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता
1: बिल्कुल सर तो श्रोताओं आज हमने जाना हमारी थल सेना ने किस तरह सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई अब चलते चलते हम इस श्रृंखला के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस युद्ध से हमने आखिर क्या पाया और क्या खोया भी ये बात बिल्कुल लाजिम है कि जिस उद्देश्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया उसे हमने गौरवपूर्ण तरीके से प्राप्त भी किया इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व सर कार्यक्रम में इस कड़ी में आ पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जय हिंद पूर्वा जी एंड जय हिंद श्रोताओं
1: जय हिंद सर तो श्रोताओं ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का परिकल्पना थी अदिति गौड़ की ध्वनि संपादन किया अमित कोंदानी ने और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए
2: हमारी सेना हमारा गर्व अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम ये है देश का चैनल देश के लिए

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ, आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए
1: दादू? आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू, तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है मेरा कौन दोस्त कब आया था।
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है।
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है। सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा, मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया।
1: अच्छा।
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: ओ, तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगे कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5,000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
2: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
2: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
2: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण, टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
2: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
2: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
2: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
2: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुरु, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर हैं?
2: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
2: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे नागपुर ARDI हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में IRDE इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी, क्या इनके कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में DMRL, DLJ में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज RTR की और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती है?
2: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन, एडमिन, स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए DRDO, IIT नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या PhD के लिए DRDO के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, बहुत कठिन डगर है पनगढ़ की।
2: हाँ तो बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को DRDO ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी DRDO में जा सकते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल बेटा, DRDO सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
2: DRDO में MTech PhD के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। IIT नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, क्या मैं कॉलेज के दौरान भी DRDO में इंटर्न कर सकती हूँ?
2: क्यों नहीं बेटा, DRDO के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी, क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
2: बिल्कुल, महिलाएं आज DRDO की ताकत हैं।
1: दादू, क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
2: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। Agni-4 और Agni-5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
2: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां ना सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
2: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी, और कोविड में DRDO ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
2: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। UV सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: PPE किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
2: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, DRDO के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हाँ बेटा, DRDO का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर DRDO में वैज्ञानिक बनूंगी।
2: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए देश को, युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
2: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर DRDO ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
2: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
3: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे DRDO यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक नेमा।
3: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार।

0: देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, राष्ट्र मात्र भूखंड नहीं, ये हमारी अनुभूति है, हमारी चेतना, हमारा अभिमान है। तभी तो हर भारतवासी गर्व से कहता है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही है हमारा अगला कार्यक्रम। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
1: मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ओए मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती ओ सल्लो ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है। अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
2: क्या कक्का फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
1: अबे चल ओए बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो कौन सी पोती बांच रहा दिखा जरा दिखा
2: छोड़ो ना काका।
1: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था दो हफ्ते से।
2: आओ काका
1: चल चल सुना क्या पढ़ा चल बता चलो जा शुरू।
2: हम कहाँ पढ़े?
1: अरे
2: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अरे कक्का राम राम
1: राम राम राम राम राम राम।
3: ओए सल्लू कैसा है तू?
2: अरे मस्त एकदम चकाचक।
1: अरे आजा राजू आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
3: अरे बस कक्का छुट्टियों में जरा घर आया था, कॉलेज शुरू हो गया ना तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
1: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
3: देवी अहिल्याबाई?
1: हाँ।
3: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
1: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में बताओ।
3: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में। अरे कुछ भी नहीं मालूम।
1: लो फिर वही ढाक के तीन पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
3: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
1: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियां अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
3: ऐसा?
1: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
3: अरे आप और कौन कर?
1: अरे मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है। अरे मैं नहीं, मैं नहीं।
3: कक्का कक्का सुनो तो, सुना दो जरा मजा आ जाएगा।
1: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैया कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे, हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे?
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से। देखना, एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे? पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया, जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है ये दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं, ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ता बाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
7: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए, सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो, सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: बताए फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्या बाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्या बाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है?
6: अरे कहाँ चला जा रहा है? पकड़ो,
5: बचने ना पाए।
6: अरे उधर से घेर लो।
5: दरबार में सीधे घुस गया। छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटा थे, छोरों को मारा थे महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छु नहीं है, हमारो जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देते। हम जाए तो कहाँ जाए महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं।
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है।
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए। छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्या बाई का न्याय।
11: जय हो।
10: अहिल्या बाई का न्याय।
11: जय हो।
10: महारानी की जय हो।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती गईं। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करते काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महाराज।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहास जनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं देवी। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका, मान गए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ,
3: राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: माना नहीं किया।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।

0: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद हमारा विशेष प्रसारण आप सुनेंगे, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। इंतजार कीजिए इस विशेष प्रसारण का।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है, तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
1: हाँ जी,
3: मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है।

0: तो मैं उस प्रोसेस को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिव्या ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के
3: अजय, ये फिल्म तो पक्का सुपर हिट है।
4: हाँ, पर इस खाने में तो टेस्ट ही नहीं है।
5: इसके टेस्ट को बूस्ट करते हैं
6: पुष्प स्पाइस बूस्टर, एक मैजिकल मसाला जो हर खाने का स्वाद बढ़ाए।
7: पुष्प स्पाइस बूस्टर, अपना स्वाद अपने पॉकेट में।
1: और तीन छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली,
5: जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला
8: उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा
1: बस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया।

0: समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके मन की बात। हम आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम आपके लिए करेंगे आज रात 9 बजे, तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम मन की बात 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, आज हम जिस कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो किसी साधारण कवि की रचना नहीं है, ये उस सृजनकर्ता की आवाज है जिसने कविता को केवल लिखा नहीं, उसे जिया, उसे जंग की तरह लड़ा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में केवल एक नाम नहीं है, वे चेतना है, वे युग की धड़कन है। उनकी कविता में शब्द नहीं है, शस्त्र हैं जो अन्याय के विरुद्ध उठते हैं और मनुष्य के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। दिनकर जी की काव्यधारा में ओज की गर्जना है तो वहीं करुणा की गहरी धारा भी है। वे वीरता के कवि हैं पर उनकी वीरता पत्थर सी कठोर नहीं, वो संवेदना से सिंचित है और रश्मि रथी इसी संवेदनशील ओज का सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे मानवीय स्वर है। ये महाकाव्य केवल कर्ण की कथा नहीं कहता, ये उस हर व्यक्ति की व्यथा है जो योग्य होते हुए भी पहचान से वंचित रह जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी की। बहुनात्र किम मुक्तेन, संक्षेपात शृणु पांडव, त्वत्समम त्वाद विशिष्टम वा कर्णम मन्ये महारथम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में मेरी बात सुनो। मेरे विचार में कर्ण या तो तुम्हारे समान है या फिर तुमसे भी श्रेष्ठ, और इसीलिए मैं उसे महारथी मानता हूं।
3: यह श्लोक कर्ण के लिए श्री कृष्ण की सबसे स्पष्ट और निर्भीक स्वीकृति है। कृष्ण यहाँ तुलना करते भी हैं और तोड़ भी देते हैं, कर्ण को किसी नीची श्रेणी में नहीं रखते। त्वत् समम कहकर वे उसे अर्जुन के समकक्ष रखते हैं और त्वाद विशिष्टम कहकर उसकी अद्वितीयता को स्वीकार करते हैं। यही भाव दिनकर के रश्मि रथी की आत्मा है। कर्ण को समाज ने जो नहीं दिया, कृष्ण ने उसे शब्दों में दे दिया।
2: हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्र रक्षक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था हृदय था युधिष्ठिर, कर्ण का श्रद्धा युत हृदय था। अर्थात कर्ण का हृदय बिल्कुल निष्कपट और पवित्र कर्मों से युक्त था, वो संकट में पड़े लोगों की रक्षा करने वाला था, वो अद्वितीय दानी था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, कर्ण का हृदय श्रद्धा त्याग और महानता से भरा हुआ था।
3: तो आइए श्रोताओं, काव्य गुंजन के इस विशेष अंक में हमारे साथ चलिए, जहां हर शब्द एक दीप है और हर भाव एक अनंत यात्रा। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं इस अद्भुत महाकाव्य को जिसके रचयिता महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्रोताओं, ये केवल काव्य गाथा नहीं बल्कि तेज, तप, त्याग और आत्मगौरव का जीवंत महागान है। मानो कर्ण के शब्दों की गूंज आपसे कुछ कहना चाह रही हो।
4: मैं कौन हूं, एक नाम या एक प्रश्न, एक जन या निरंतर किया गया संघर्ष, यदि मनुष्य को केवल उसके कुल से जाना जाए तो फिर कर्म का अर्थ क्या रह जाता है? और यदि पहचान जन्म से तय हो तो पुरुषार्थ किस लिए? मैं कर्ण हूं जिसका जन्म लोक लज्जा का बोझ बना और जीवन स्वयं को सिद्ध करने की साधना। मेरे पास वंश की विरासत नहीं पर श्रम की स्मृति है। मेरे माथे पर नाम नहीं लिखा पर मेरी भुजाओं में भाग्य को बदलने की शक्ति धड़कती है। मुझसे मेरी जाति पूछी गई पर मैंने अपने मौन से उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य की सच्ची पहचान शब्दों में नहीं उसके कर्म में अंकित होती है। मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं उस समाज से संवाद करने आया हूं जो जन्म को धर्म मान बैठा है और पुरुषार्थ को अपराध। आओ मेरे साथ चलो, किसी युद्ध की ओर नहीं बल्कि उस अनंत संघर्ष की ओर जहां हर युग में मनुष्य को पहले मनुष्य बनने के लिए लड़ना पड़ता है। यही है मेरी यात्रा, यही है मेरी वेदना और यही है रश्मिरथ।
3: आइए श्रोताओं सुनते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का भाग एक।
2: जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र

0: का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं, आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार।
1: सभा एकाएक मौन हो जाती है, धनुष की एक एक टंकार के साथ वंश का घमंड डगमगाने लगता है, जन्म का अभिमान दरकता है और तालियों से उपजा सस्ता यश अपनी ही गुफापन को उजागर कर देता है। इसी क्षण से प्रथम सर्ग की अगली यात्रा आरंभ होती है, जहां कर्ण केवल रणभूमि का योद्धा नहीं रह जाता, बल्कि समाज द्वारा स्थापित मानकों से प्रश्न करने वाला एक सजग और जागृत विवेक बनकर सामने आता है। अब श्रोताओं, आइए उस उत्तराधिकारी क्षण की ओर रुकें, जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं। सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 3 को।
0: फिरा कर्ण, क्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ बताओ, बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला,
2: जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो क्लानी से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान।
1: श्रोताओं, मनुष्य इस धरती पर सदियों से सत्ता और पहचान के द्वंद से जूझता आया है, यहाँ अक्सर कर्म से पहले परिचय मांगा जाता है और प्रतिभा से पहले उसकी जाति पूछी जाती है, धर्म का नाम लिया जाता है पर उसी की आड़ में शोषण भी होता है, और जातियों के इतने सकरे खांचे बना दिए जाते हैं कि उसमें असंख्य भावनाएं घुट कर रह जाती हैं। इन्हीं भावनाओं से आहत मानो कर्ण स्वयं कह रहे हो।
3: मेरी पीड़ा केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की आवाज है जिसे योग्य होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिली, जो मंच के सामने तो खड़ा रहा पर मंच पर चढ़ने से पहले उससे उसका जन्म पूछ लिया गया। रश्मिरथी हमें यह चेतावनी देती है कि जब समाज पहचान को कर्म से बड़ा मान लेता है तो वो अपने ही भविष्य को अपमानित करता है, क्योंकि प्रतिभा को रोका जा सकता है पर इतिहास को नहीं। और यहीं से आरंभ होता है वो क्षण जहां मेरी चुनौती केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे से है।
1: कर्ण का तेज अब शब्दों में सीमित नहीं रहता, वह उसके मौन और उसकी भुजाओं में धधकने लगता है। और तभी जब अन्याय अपनी अंतिम सीमा लांघता है, सभा में एक स्वर उठता है, ऐसा स्वर जो मित्रता भी है, राजनीति भी और विद्रोह भी। ये वही क्षण है जब अपमान के सामने सम्मान की पहली ढाल खड़ी होती है और कर्ण के जीवन की दिशा एक निर्णायक मोड़ लेने लगती है। श्रोताओं, हम आपको उसी क्षण की ओर लिए चलते हैं जहां नियति और साहस आमने सामने खड़े हैं। आइए अब हम सुनते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ।
3: पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान।
0: कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सहना सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा श्वपच चर्मकार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार।
1: श्रोताओं, यह वह क्षण है जहां सभा केवल राज दरबार नहीं रह जाती, वह समाज का कठोर दर्पण बन जाती है। यहां तलवारों से पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और पराक्रम से पहले पहचान। यहां प्रतिभा को उसके तेज से नहीं उसकी जाति से आंका जाता है और योग्यता से पहले वंश का लेखा जोखा खोला जाता है। अन्याय यहां चिल्लाता नहीं, वह शास्त्र बनकर नियम बनकर मर्यादा का मुखौटा ओढ़कर खड़ा होता है और उसी की ओट में अपमान को न्याय का नाम दे दिया जाता है। ये केवल उस युग की कथा नहीं, आज भी जब समाज पद, पहचान, जाति और सत्ता के तराजू पर मनुष्य को तौलता है, तब हर कर्ण इसी पीड़ा से गुजरता है। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है मानो सभा नहीं, स्वयं इतिहास ठहर गया हो और उस मौन को चीरता हुआ अब कर्ण स्वयं कह उठता है।

0: बार मैं स्वयं से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? वो जिसे उसके तेज से पहचाना जाना चाहिए, या वो जिसे नाम और जन्म के तराजू पर तौला जाता है? मेरे हाथों में धनुष है, ललाट पर सूर्य का तेज, फिर भी मेरी पहचान से पहले मेरी जाति पूछी जाती है। क्या वीरता भी किसी वंश की मोहताज होती है? इस सभा में मेरी भुजाएं नहीं कांपी, पर मन अवश्य थर्राया है, अन्याय से नहीं बल्कि उस सत्य से जिसे सब जानते हैं, पर स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं। यदि सम्मान मांगना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं, और यदि तेज ही मेरी जाति है तो आज इस अपमान की अग्नि में तपकर मैं स्वयं को पहली बार पूरी तरह पहचान रहा हूं।
1: श्रोताओं, इसी सन्नाटे में जहां नियम अन्याय का कवच बन चुके हैं और मौन कायरता का साथी, सभा के बीच से एक स्वर उठता है। यह स्वर केवल किसी राजकुमार का नहीं है, यह उस व्यक्ति का है जो पहली बार सत्ता को नहीं अन्याय को चुनौती देने जा रहा है। श्रोताओं, ये क्षण केवल कर्ण के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, ये उस व्यवस्था के विरुद्ध पहला सार्वजनिक प्रतिरोध है जो प्रतिभा को जन्म से बांधना चाहती है, और यही इसी एक स्वर के साथ मित्रता जन्म लेती है, राजनीति आकार लेती है और इतिहास एक नया मोड़ लेने को विवश हो जाता है।

0: श्रोताओं, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वह विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है। आगे हम प्रथम सर्ग के अंतिम भागों 5, 6 और 7 का काव्य पाठ सुनेंगे। यह काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाधम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी आपके रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
2: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 MHz।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के समापन का समय हो रहा है। आपसे विदा लें उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे द्वारका प्रसाद मिश्र की। बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुनेंगे 6:30 पर। आज इसमें चर्चा होगी हार के महत्व पर। शाम 7 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम शाम 7:30 प्रसारित होगा। इसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर। आज इसका 5वां भाग प्रसारित होगा। देश के संस्थान, ये कार्यक्रम रात 8 बजे आप सुनेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे DRDO की। हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में रानी अहिल्याबाई होलकर की चर्चा होगी रात 8:30। रात 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मन की बात का पुनर्प्रसारण। और 9:30 हम आपको सुनवाएंगे काव्य गुंजन के अंतर्गत रश्मि रथी का 1वां भाग। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अनुमति दें अपने रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
3: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
1: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
3: हो भी क्यों ना,
1: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
3: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
1: हाँ?
3: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
1: हाँ?
3: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
1: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
3: अच्छा?
1: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
3: बिल्कुल ठीक।
1: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
3: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
1: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
3: कौन सी?
1: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
3: ये तो ठीक है।
1: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
3: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है, भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
1: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
3: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
1: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
3: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
1: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
3: बिल्कुल,
1: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
3: कौन से श्लोक?
1: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
3: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
3: अच्छा।
1: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
3: क्या?
1: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
3: भाई वाह, क्या बात है।
1: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
3: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
3: बिल्कुल।
1: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
3: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
1: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
3: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
1: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
1: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
3: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
1: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
3: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मरणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
1: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीपदान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हों।
3: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका, कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
1: कौन सा?
3: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
1: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
1: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
3: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
1: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
3: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
1: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
3: हाँ।
1: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
3: बिल्कुल।
1: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
3: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
1: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
3: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
1: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
3: कौन सी?
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
3: बिल्कुल।
1: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
3: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
1: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
1: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं। इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
3: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
1: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
3: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
1: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
1: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
3: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
1: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
3: बिल्कुल।
1: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
3: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
1: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
3: अच्छा,
1: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
3: जी।
1: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
3: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
1: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
3: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
1: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
3: हाँ।
1: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
3: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला, आज भी जब बसता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
1: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
3: बिल्कुल।
1: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
3: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्ति पीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
3: बिल्कुल।
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
3: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
3: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
3: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
3: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था, लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
3: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
3: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल चार बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
3: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
3: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
3: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
3: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
3: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
2: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
3: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को

0: आयुष्मान मेधावी हो, अपनी अपनी आसंदी पर बैठे।
1: जी गुरुजी।
0: बच्चों, गणित की इस कक्षा में आज हम ज्यामिति और बीज गणित पर चर्चा करेंगे।
2: गुरुजी, ये अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं?
0: बेटे, ये नाम पश्चिमी देशों का दिया है। शून्य और एक से नौ तक के अंकों को दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन दस अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इस दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये अंक ही पश्चिमी देशों द्वारा अरेबिक न्यूमरल्स कहे गए हैं।
3: ऐसा क्यों गुरुजी?
0: बेटे, हुआ यूं कि 9वीं शताब्दी में ये अंक अरब पहुंचे। उस समय अरब का एक विद्वान अल ख्वारिज्मी भारत आया और उसने यहां आकर अंक गणित का अध्ययन किया। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में भी किया था। इन अंकों को अरबी में हिंदसा यानी हिंद से आए कहा जाता है। कहा जाता है अल ख्वारिज्मी की गणित की पुस्तक का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ और जब ये पुस्तक पश्चिमी देशों में पहुंची तो अरब से पहले ये अंक मिस्र में और फिर उत्तरी अरब से धीरे धीरे पश्चिमी देशों को मिले। पश्चिम ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा, जबकि ना तो इसकी खोज और ना ही इसका विकास अरब में हुआ है।
2: यानी अरेबिक न्यूमरल्स सही मायने में भारतीय न्यूमरल्स है?
0: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सारा विश्व ये मानने लगा है कि अंकों और दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। न केवल अंक गणित बल्कि बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस और वेक्टर गणित आदि गणित की विविध शाखाओं का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व में दशमिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है।
4: यह तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है।
0: निश्चय ही, वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। क्यों ना हम आज वेदकालीन भारत की एक झलक देख लें? चलिए, आज हम आप सभी को महर्षि बोधायन के आश्रम में लिए चलते हैं। वे एक महान गणितज्ञ थे। उनका कालखंड ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

0: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। युवराज रोहित
1: जी आचार्य श्री,
0: अभी जिस मंत्र का उच्चार किया गया है वो कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है?
1: आचार्य श्री, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हुए कहा गया है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी ये पूर्ण ही रहता है, अंत में पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है।
0: ठीक, इस अद्भुत संकल्पना में ब्रह्म की व्याख्या होती है, पर ये तो इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, इसका गणितीय अर्थ कौन बताएगा? हाँ आपस्तंभ, तुम बताओ।
2: आचार्य श्री, गणितीय अर्थ में ये मंत्र शून्य की सटीक व्याख्या करता है। हम जानते हैं शून्य में से शून्य घटा दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है, इसी तरह शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही रहता है।
0: एकदम सही। शिष्यों, पिछले दिनों आपने योग वियोग पूरण भाग आदि के जो गणितीय प्रश्न हल किए थे उनसे इस मंत्र में कही बातों का सत्यापन सहज ही हो जाता है।
1: आचार्य श्री, आप स्तंभ मुनि बता रहे थे कि आपने एक नए सूत्र की रचना की है जिसमें अनेक नए प्रमेय विकसित किए गए हैं।
0: हाँ वत्स, ये सत्य है। हमने मुनि आपस्तंभ को इन नए प्रमेयों के सत्यापन तथा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न विकसित करने का कार्य सौंप रखा है। मुनि आपस्तंभ, आपके कार्य की प्रगति क्या है?
2: आचार्य श्री, कार्य की प्रगति काफी संतोषप्रद है। प्रमेयों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी प्रमेय सत्यापन के विविध प्रयोगों में सत्य सिद्ध हुए हैं। अभ्यास प्रश्न का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे।
0: ठीक, हम आश्वस्त हुए। यूं तो हम प्रत्येक प्रमेय का स्वयं सत्यापन कर चुके थे, पर किसी भी प्रमेय की सफलता और उपयोगिता की कसौटी ये तथ्य है कि वो विविध प्रायोगिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो।
1: आचार्य श्री, शुल्ब सूत्र की प्रमुख विशेषता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही कृपया बताएं इसकी उपयोगिता क्या होगी?
0: वत्स, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। किसी भी अनुसंधान का महत्व उसके संभावित उपयोग पर ही निर्भर करता है। अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी अनुसंधान समय और शक्ति का अपव्यय ही कहलाएगा।
2: प्रिय मित्र, आचार्य श्री का ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ गणित का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाएगा। गणित के इस विलक्षण ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए हैं। इनमें दिए गए प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: और वत्स, जहां तक इस ग्रंथ की उपयोगिता का प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रमेयों के ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करके यज्ञ की वेदियों मंदिरों तथा भवनों का निर्माण पर्याप्त सुगम हो जाएगा। यज्ञ वेदी चाहे उड़ते पक्षी के आकार की हो या चतुष्कोणी, इनका निर्माण शुल्ब सूत्र में वर्णित ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रोक्त बनाया जा सकता है। वैसे ग्रंथ की उपयोगिता तो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम लोग इसका पठन पाठन कर इस पर मनन करोगे, इसमें दिए प्रमेयों के अनुप्रयोगों पर कार्य करोगे।
2: उदाहरण के लिए शुल्ब सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय कहता है, दीर्घ चतुरस्याशणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियकमानी यत् पृथक भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति, अर्थात आयत के कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है।
1: आपके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि किसी आयत का कर्ण क्षेत्रफल में उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई का होता है।
2: हाँ मित्रों, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत आ बा सा दा आयत का कर्ण बादा और लंबाई आ बा और चौड़ाई आ दा हो तो बादा वर्ग दो बराबर आबा वर्ग दो धन आदा वर्ग दो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है जो भवन या मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक सहायक हो सकता है।
0: ऐसे ही अगले दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय कहता है आयत का कर्ण आयत का सम द्विभाजन करता है, जबकि दूसरा प्रमेय कहता है कि सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इन प्रमेयों का सत्यापन किसी आयताकार या सम चतुर्भुजी सभा भवन के फर्श पर आसानी से किया जा सकता है।
2: इसी तरह शुल्ब सूत्र में वे विधियां भी दी गई हैं जिनके द्वारा आप एक त्रिकोण के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वर्ग बना सकते हैं या किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वर्ग के दो गुने या तीन गुने क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं या वर्ग के एक तिहाई क्षेत्रफल का भी वृत्त बना सकते हैं। आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि शुल्ब सूत्र में दिए गए प्रमेय और ये अनुप्रयोग कितने अभिनव और कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: निश्चय ही शुल्ब सूत्र में दिए गए ये सभी अनुसंधान एकदम अभिनव और महत्वपूर्ण हैं। अपने देश में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों के लिए भी ये एकदम नूतन और अद्भुत जानकारी देने वाले होंगे।
2: इतनी ही अभिनव और महत्वपूर्ण है शुल्ब सूत्र में वर्णित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विभिन्न श्रेणियां। ऐसे ही शुल्ब सूत्र में वर्णित क्रमचय और संचय के सूत्र हैं। विश्व में ये भारत के गणित के क्षेत्र में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। एक और अद्भुत देन शुल्ब सूत्र की रूट दो और रूट तीन जैसी संख्याओं के मान निकालने की विधियां हैं।
0: शुल्ब सूत्र पर तो चर्चा चलती रहेगी, पर अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है, सो हमें ये चर्चा यहीं रोककर भोजन कक्ष की ओर चलना होगा।

0: मुनिवर, आज आचार्य श्री को नदी तट से लौटने में विलंब हो गया है।
1: लगता है नदी तट पर उनकी भेंट किसी सुधी व्यक्ति से हो गई है, अन्यथा उनका दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता है। अलस भोर प्रथम पहर में उठना, दैनिक कर्म से निवृत्त हो नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन कर ध्यानस्थ बैठना। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों से कहते हैं, ऋषि के लिए सुयोग्य तेजस्वी मंत्र दृष्टवा वर्चस्वी होना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान और मंत्रों की साधना परम आवश्यक है।
0: मुनिश्री, कई बार आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री मंत्रों से गणितीय अवधारणाएं किस तरह विकसित कर लेते हैं।
1: ये अंततः प्रकृति के कारण संभव हो पाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तर्क है, पर तर्क द्वंद्व उत्पन्न करता है। किंतु यदि बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करके प्रखर बना दिया जाए तो उसकी सीमा विस्तृत और व्यापक हो जाती है। तब हम चीजों को जैसी है वैसी ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी हमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है।
0: यह संकल्पना काफी रोचक है, इसे मुझे ठीक से समझना होगा। आचार्य श्री ने जब यह बात कही थी तब मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, सो मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाया था।
1: आचार्य श्री की संकल्पना को इस तरह समझा जा सकता है, जब बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बढ़ने से मेधा प्रखर हो जाती है, और जब मेधा प्रखर या परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन होती जाती है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जाता है। हमारे ऋषि महर्षि बुद्धि से प्रज्ञा तक की यात्रा के विज्ञान में पारंगत हैं।
0: लीजिए, आचार्य श्री आ गए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
3: आयुष्मान यशस्वी भव।
1: नदी तट पर किससे भेंट हो गई थी आपकी?
3: वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है, नित्य क्रम से हमें थोड़ा विलंब हो गया ना। नदी तट पर आचार्य मैत्रियन से भेंट हो गई। काफी समय पश्चात उनसे भेंट हुई थी, सो चर्चा में समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने शून्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वे बोले, वैदिक पदाक्रम में शून्य का अर्थ प्रायः आकाश या रिक्त स्थान अथवा वायुमंडल जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि गणितीय अर्थ में शून्य एक वैदिक शब्द नहीं है, किंतु दार्शनिक भाव में शून्य की सुंदर अभिव्यक्ति कठोपनिषद में मिलती है। जरा देखें यह श्लोक कितना अद्भुत है। यथा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय स्थितः अथ मर्त्यो अमृते भवत्यत्र ब्रह्मा समुष्णुते। अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मर्त्य अमर होकर अनंत अर्थात ब्रह्म के समान रूप प्राप्त कर लेता है। वे आगे बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में शून्य और अनंत के बीच इस सीमांत संबंध को परिभाषित करते हुए जीव अथवा आत्मा की परिकल्पना दी गई है। संदर्भित श्लोक है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंताय कल्पते। इसका अर्थ है, बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करने पर जीव का अस्तित्व इस बिंदु पर भी उपस्थित है जिसकी अनंत के रूप में परिकल्पना की जाती है। प्रिय आपस्तंभ, मैं इन दोनों श्लोकों को गणित के प्रमेयों के रूप में रूपांतरित करने का विचार बना रहा हूं।
1: ये तो अद्भुत खोज होगी आचार्य श्री।
3: निश्चय ही। लो, मैं फिर विचार में खो गया। ध्यान सत्र का समय हो गया है, चलो सीधे ध्यान कक्ष में चलते हैं।
1: सभी लोग ध्यान कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, संभवतः हमारी ही प्रतीक्षा हो रही होगी। चलिए। ओम ओम।

0: युवराज रोहित, लगता है तुम्हारा मन कुछ उद्विग्न है। मैं देख रहा हूं, यद्यपि हम वन में लकड़ियां एकत्रित करने के कार्य में संलग्न हैं, पर तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं लकड़ियों का एक गट्ठर आश्रम भिजवा चुका हूं?
1: आप सही कह रहे हैं मुनिश्री, मेरा ध्यान भटक गया था। कई बार ऐसा हो जाता है।
0: पर ऐसा क्यों? क्या कोई समस्या है या तुम्हें अपने घर की याद सता रही है?
1: नहीं मुनिश्री, घर की याद सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण और आत्मीय है कि जो भी यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है। कल गुरु माँ ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था।
2: मैं देख रही हूँ तुम कुछ उद्विग्न हो। आजकल भोजन भी तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या घर की याद सता रही है या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है?
1: कैसी बात कर रही हैं गुरु माता? यहाँ आपका व्यवहार इतना स्नेहिल, इतना ममतामय है कि घर की याद तो आ ही नहीं सकती। आचार्य श्री की पितृतुल्य निगरानी में किसी को भी कोई भी कष्ट हो ही कैसे सकता है?
2: मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, सो मैंने तुम लोगों के लिए मोदक और पकवान बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे।
1: आप निरर्थक ही चिंता कर रही हैं गुरु माता, यहाँ का भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकर है। मेरी उद्विग्नता को आप अन्यथा न लें।
2: तो क्या आचार्य श्री की डांट से व्यथित हो? कल संध्या में उन्होंने संभवतः तुम्हें डांटते हुए कहा था, रोहित देख रहे हो ना, गोधुली हो गई है। तुम्हें दीप मंजूषा को तैयार कर प्रज्वलित करने को कहा था ना, तुम कर क्या रहे हो?
1: नहीं गुरु मां, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल संध्या में हम लोग कंदूक के खेल में इतने व्यस्त हो गए थे कि दीप प्रज्वलित करने का ध्यान ही नहीं रहा। हम में से किसी ने भी आचार्य श्री के कहे को अन्यथा नहीं लिया।
0: कोई बात तो है जो तुम हमसे छिपा रहे हो।
1: सच कहूं मुनिश्री, तो मैं चिंतित हूं।
0: चिंतित हो? किस लिए?
1: वो क्या है, आचार्य श्री ने मुझे आश्रम के आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर लगे आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने को कहा है।
0: तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है?
1: चिंतित होने की ही तो बात है मुनिश्री। मैंने गणना करके पता लगाया, अपने आश्रम के आम्र कुंज में 172 आम्र वृक्ष हैं। इन सब पर लगे आम्र फलों की गणना करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा।
0: रोहित, तुम्हें स्मरण होगा आचार्य श्री ने एक दिन पूर्व अनुमानित संख्या ज्ञात करने की विधि की चर्चा की थी।
1: हाँ मुझे स्मरण है।
0: उसके पश्चात ही आचार्य श्री ने तुम्हें आश्रम के आम्र कुंज की वृक्षों पर उपस्थित आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने का अभ्यास दिया होगा।
1: उसके बाद ही मुझे यह संख्या ज्ञात करने को कहा था। मैं तभी से चिंतित हूँ, कैसे क्या करूँ?
0: देखो प्रिय, तुमने आम्र कुंज में उपस्थित आम्र वृक्षों की संख्या गणना तो कर ही ली है। अब तुम अलग अलग आकार के 5 वृक्ष चिन्हित कर लो। इसके बाद इन चिन्हित वृक्षों में से प्रत्येक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह तुम्हें इन 5 वृक्षों पर उपस्थित फलों की 5 संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का योग करके प्राप्त संख्या में 5 का भाग देने पर तुम्हें एक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की औसत संख्या अर्थात अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस औसत संख्या को आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों की कुल संख्या से गुणा करने पर आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर आम्र फलों की अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी।
1: अरे वाह मुनिवर, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी।
0: अब से गांठ बांध लो। चिंतित रहने की जगह समस्या पर आपस में चर्चा करके हल ढूंढा जा सकता है।
1: इस सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, सुना है आप आचार्य श्री के साथ विभिन्न आश्रमों के आचार्यों के समागम में भाग लेने जा रहे हैं।
0: हाँ, ये सही है, ये आचार्य श्री का मुझ पर अनुग्रह और स्नेह ही है जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा।
1: आचार्य श्री का आप पर विश्वास अनुचित नहीं है मुनिवर, आप उनके प्रिय और सबसे योग्य शिष्य जो हैं।
0: हाँ, अब ये बातें छोड़ो, हमें जल्द ही आश्रम पहुंच जाना चाहिए, चलो।
1: हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता हूँ, चलिए।

0: वो आ रहे हैं अपस्तम मुनि।
1: हाँ, उनसे ही ज्ञात होगा आचार्यों की सभा में क्या हुआ।
2: पहले उन्हें बधाई तो दो। आचार्यों की सभा में आचार्य बोधायन के साथ भाग लेना महान उपलब्धि है।
0: मुनिश्री बधाई।
2: अत्यंत हर्षित हैं।
3: प्रणाम मुनिश्री, बताएं आचार्यों की सभा में भाग लेना कैसा अनुभव था।
4: बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये सब आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के कारण ही संभव हुआ। जहाँ तक महासभा में भाग लेने के अनुभव की बात है तो ये निश्चय ही अद्भुत था, अनिर्वचनीय।
3: वहाँ सभा में क्या हुआ मुनिश्री।
4: सभा क्या, महासभा थी वो। अनेक आचार्यों का समागम था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ। अनेक विषयों पर, शास्त्रों पर चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए। मूल बात ये है कि आचार्य बोधायन के शुल्ब सूत्र पर विशेष चर्चा हुई। सभी ने आचार्य श्री की खोजों उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुल्ब सूत्र को गणित के इतिहास में मील का पत्थर घोषित किया गया। कहा गया कि ये कालजयी ग्रंथ है जिसकी चर्चा शताब्दियों तक होती रहेगी।
5: वाह वाह वाह वाह,
0: बधाई श्री।
6: बधाई बधाई।
3: और कोई विशेष घटना।
4: हाँ, घटनाएं तो अनेक हैं, पर एक ज्ञातव्य है। वहां आचार्य श्री के मार्गदर्शन में 1000 ईंटों की एक उड़ते पक्षी के आकार की एक यज्ञ वेदी बनाई गई। ये वेदी वहां विद्वानों, विशेषकर ज्यामिति शास्त्रियों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि 10 प्रकार की ईंटों से बनी वेदी की सतह यजमान के 7.5 गुना थी और ईंटों का माप यजमान के 5वें हिस्से के बराबर था।
0: बधाई हो।
4: कृपया शांत हो, शांत हो। आचार्य श्री पधार रहे हैं, उन्हें धमाल कतई पसंद नहीं है। चलिए चलिए सभा गृह में चलिए, हमें वहां उपस्थित होना है। आइए आइए आइए आइए आइए आइए।

तो बच्चों ये थी झलक आचार्य बोधायन के आश्रम की। बच्चों विश्व के अनेक विद्वानों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने वेदकालीन भारत में गणित के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई थीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। महान वैज्ञानिक लाप्लास ने कहा था कि ये भारत ही है जिसने 10 अंकों की संख्याओं को व्यक्त करने का अद्वितीय तरीका दिया। ये तरीका अब इतना सरल लगता है कि इसकी जबरदस्त गुणवत्ता की अनदेखी तक हो जाती है। इन आविष्कारों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो सकता है कि इतिहास के 2 महान व्यक्ति आर्कमिडीज और अपोलोनियस की मेधा में दार्शनिक प्रणाली की बात नहीं आई। ऐसे ही सर मोनियर विलियम्स के विचार थे कि शताब्दियों पहले हिंदुओं ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किए वे अद्भुत हैं।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और इंदु, छंद है अत्यष्टि, अति शकवरी और अष्टि।
3: यम त्वम रथमिंद्र मेधसातये पाका संतमिशिर प्रणयसि प्राणवद्य नयसि सद्यश्चित मभिष्टये करो विशश्च वाजिनम सास्माक मनवद्य तूतु जान वेधसामिमाम वाचम न वेधसाम। हे पाप रहित प्रेरक इंद्रदेव, आप यज्ञ कर्म के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और अपरिपक्वों को भी शीघ्रता से अभीष्ट प्राप्ति के लिए उपयोगी बना देते हैं। अन्न के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले पाप मुक्त हे इंद्रदेव, वेदज्ञों की इस स्तुति रूपी वाणी के समान ही इस हवि को भी आप स्वीकार करें। सश्रुधि यह स्मा प्रतनासु कासु चिदक्ष्याय इंद्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः यह शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्त वाजिनं प्रथमन्त्यं न वाजिनं। हे इंद्रदेव, आप संग्रामों में वीर पुरुषों के साथ शत्रु को नष्ट करने में कुशल हैं। भरण पोषण के क्रम में जो स्वयं प्राप्त करने वाले तथा अन्नादि का वितरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें आप शक्ति सामर्थ्य देते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुने। जिस प्रकार बलशाली लोग अश्व का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार समर्थ लोग तेजस्वी इंद्रदेव का आश्रय लेते हैं। दस्मो हिष्मा वृषणम पिन्वसि त्वचम कम चिद्या वीररूम शूरमर्त्यम परिवृणक्षि मर्त्यम इंद्रोत तुभ्यम तद्दिवे तद्रुदाय स्वयशसे मित्राय वोचम वरुणाय सप्रथः समृडीकाय सप्रथः। हे बलशाली इंद्रदेव, आप मनोहारी रूप में मेघों के आवरण को जल से पूर्ण करते हैं। आप कष्टप्रद असुरों को दूर करते तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। ये इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के निमित्त कारण रुद्र के समान भयंकर, मित्र के समान हितैषी, श्रेष्ठ सुखप्रद तथा सबके द्वारा वरणीय हैं। अस्माकं व इंद्र मुष मसीष्टये सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम् अस्माकं ब्रह्मोतये वा पृत्सुषु कासुचित् नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोषि यम्। हे मनुष्यो, समस्त जनों के मित्र के समान हितैषी इंद्रदेव की आयुष्य वृद्धि और शत्रुओं के विध्वंस के लिए हम यज्ञ संपादनार्थ प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, आप जिस शत्रु समूह का विध्वंस करते हैं, वे संगठित होकर भी आपकी सामर्थ्य के आगे नगण्य हैं। ऐसे आप सभी संग्रामों में हमारी ज्ञान सामर्थ्य को संरक्षित करें। नीशु नमाति मतिम कयस्य चित्ते ज्येष्ठाभिररणि भिर्नोति भिरुग्राभिरुग्रोदिपिहि नेषिणो यथा पुराणेना शूरमन्यसे विश्वानि पुरोरप परशि वहनिरासा वहनिर्नो अच्छ। हे पराक्रमी इंद्रदेव, आप अपनी शक्तिशाली सामर्थ्य व संरक्षण साधनों की तेजस्विता से शत्रुओं के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दें तथा विदीर्ण कर डालें। हे बलशाली इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक होने पर भी पाप मुक्त हैं। पूर्ववत हमें आगे करके स्वयं अग्रगामी होकर सभी मनुष्यों के कषाय कल्मशों का निवारण करें। आप सदैव हमारे सम्मुख रहें। प्रतद्वोचेयम् भव्यायेन्दवे हव्यो न य इशवान् मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति स्वयं सो अस्मदा निदो वधै रजेत दुर्मतिम् अव स्रवेदघसं सो वतरमव क्षुद्रमिव स्रवेत। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रगतिशील हैं, वे इंद्रदेव के समान प्रशंसनीय और प्रार्थना योग्य हैं, तथा जो दुष्टों के नाशक हैं, वे भी स्तुत्य हैं। श्रेष्ठ सोम के लिए हम स्तोत्र का उच्चारण करें। वे निंदकों को अपनी सामर्थ्य से हमसे दूर करें। घातक अस्त्रों से दुर्बुद्धिग्रस्तों तथा कटु वाणी का प्रयोग करने वालों का क्षय करें। थोड़े से जल के समान ही शत्रुओं का समूल नाश करें। वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रईम रईवह सुवीर्यम रणवम संतम सुवीर्यम दुर्मन्मानम सुमन्तु भिरेमिषा प्रचीमहि आसत्याभिरिन्द्रम द्युम्न हुतिभिर्यजत्रम हुम्न हुतिभिः। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, हम यजनीय वाणी से आपकी स्तुति करें तथा सुंदर शक्ति संपन्न संपदा का लाभ प्राप्त करें। श्रेष्ठ मननशील सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से अलभ्य इंद्रदेव को प्राप्त करें। यजन करने योग्य इंद्रदेव को यशस्विता युक्त सत्य स्वरूप का वर्णन करने वाली प्रार्थनाओं से प्रशंसित करें। प्रप्रावो अस्मे स्वयशोभिरूति परिवर्ग इंद्रो दुर्मतीनाम दरी मंदुर मतीनाम स्वयं सा ऋषयध्यै या न उपेशे अत्रैहि हते मसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्निर्न वक्षति। इंद्रदेव अपनी यशस्वी संरक्षण सामर्थ्य द्वारा दुष्टों और दुर्बुद्धि ग्रस्तों से हम सभी का संरक्षण करें। हमारे विनाश हेतु अति समीपवर्ती भक्षक राक्षसों द्वारा जो तीव्र गतिशील सेना भेजी गई है, वे आपसी कलह का शिकार होकर नष्ट हो जाए, हमारे समीप तक उसकी पहुंच न हो। त्वम न इंद्र राया परिणसा याहि पथाम अनेहसा पुरो याहि रक्षसा सचस्व नह पराक आ सचस्वास्तिमीक आ पाहिनो दूरा दारादभिष्टिभि सदा पाहि अभिष्टिभि। हे इंद्रदेव, आप सभी प्रकार के धनों को पाप रहित मार्ग से हमें उपलब्ध कराएं। धन बल से हम किसी को पीड़ित न करें। आप हमारे दूरस्थ अथवा निकटस्थ दोनों जगह हैं। आप दूर या निकट जहां भी हों, हमें संरक्षित करें। उपयोगी वस्तुओं के दान द्वारा हमारी हर प्रकार से सहायता करें। त्वम न इंद्र राया तरुषा सोग्रम चित्वा महिमा सक्ष दवसे महे मित्रम नावसे ओजिष्ठ त्रात रविता रथम कम चिदमर्त्य अन्यमस्मद्रिरिषे कम चिदद्रिवो रिरिक्षन्तम चिद्रिवः। हे ओजस्वी पालनकर्ता संरक्षक तथा अमर इंद्रदेव, आप सुख स्वरूप धन से हमें दुख क्लेशों से मुक्त करें। अपने यशस्वी जीवन की रक्षा हेतु हम सूर्य के समान तेजस्वी आपके ही सानिध्य में रहें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप अपने विशेष रथ से यहां आए। आप हम भक्तों के अतिरिक्त अन्यों पर क्रोध करें तथा हिंसक राक्षसों के प्रति क्रोधित हों। पाहि न इंद्र सुष्टुत श्रिधो वयाता सदमिदुर मतीनाम देवः संदुर मतीनाम हंता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावतः अधाहित्वा जनिता जीजनद्वसो रक्षोहणम् त्वा जीजनद्वसो। हे श्रेष्ठ स्तुति योग्य इंद्रदेव, आप देव रूप में पाप कर्मों से सदा हमारा संरक्षण करें। आप सदैव दुर्बुद्धि ग्रस्तों और उनकी दुष्ट अभिलाषाओं के नाशक हों। आप विध्वंसक पाप कर्मों में लिप्त राक्षसों के हंता और विद्वान पुरुषों के संरक्षक हों। हे आश्रयदाता, इसी हेतु आपका प्रादुर्भाव हुआ है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

कोई भी जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, जीवन वर्षों में किए गए सार्थक कार्यों से बड़ा बनता है। एक जीवन जिसकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर रही, शिखरों की ओर रही, तारों की ओर रही। एक जीवन जिसकी दृष्टि सदा विशालता की ओर रही। सामाजिक समृद्धि की सतत आकांक्षा, राष्ट्र सेवा और देश के लिए आत्मदान जैसे मूल्यों से अलंकृत ये जीवन था द्वारका प्रसाद मिश्र का। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार थे। 1960 के दशक में वो दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देश की आजादी के पहले से ही वो राजनीति में सक्रिय हुए और लगभग 65 वर्षों की उनकी राजनीतिक यात्रा रही। द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म 5 अगस्त सन 1901 को उत्तर प्रदेश के पडरी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर, रायपुर और इलाहाबाद में हुई। उन्होंने बीए, एलएलबी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। शुरू से ही देश की दशा और दिशा से उनका गहरा सरोकार रहा। विद्यार्थी जीवन से ही वो महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की पुकार पर उन्होंने विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन छोड़ा और कहा, मैं इतिहास का निर्माण करने जा रहा हूं। ये कहते हुए वो स्वाधीनता संघर्ष में कूद पड़े। द्वारका प्रसाद मिश्र तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखर प्रतिभा संपन्न थे। विद्यार्थी जीवन में ही सन 1926 में वो तत्कालीन विधानसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु से वो अत्यंत आहत हुए तथा असेंबली में सरकार की निंदा का प्रस्ताव रखा। उनके वक्तव्य की शैली से सभी लोग चकित थे। द्वारका प्रसाद मिश्र श्री शारदा, दैनिक लोकमत तथा सारथी पत्रों से भी जुड़े हुए थे। उनकी लेखनी अत्यंत प्रभावशाली थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इस घटना पर लोकमत में उन्होंने जो संपादकीय लिखी, उसे पढ़कर विद्वत्जनों ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ फौजदारी वकील भी इस विषय पर इससे अच्छा अभियोग पत्र तैयार नहीं कर सकता था। इस तरह अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनकी हुंकार ने उन्हें युवावस्था में ही एक राष्ट्रव्यापी पहचान दिला दी थी।

जब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ तब द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक कानून तोड़कर मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का प्रवर्तन किया। जेल में रहते हुए ही वो जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रिटिश सरकार उनकी तेजस्विता और विद्रोही व्यक्तित्व से अत्यंत भयभीत रहा करती थी। सन 1936 में द्वारका प्रसाद मिश्र स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री नियुक्त हुए थे। उन्होंने स्वायत्त शासन के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के आमूल सुधार को लेकर एक विशद मौलिक योजना बनाई थी, जिसकी चारों ओर बहुत प्रशंसा हुई और इसी के आधार पर उस समय नगर पालिका अधिनियम बना तथा ग्राम पंचायत तथा जनपद संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मिश्र जी सक्रिय थे तथा गिरफ्तार हुए। स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्होंने लगभग 7 वर्ष जेल में बिताए। द्वारका प्रसाद मिश्र स्वाधीनता संग्राम, सरकार और संगठन तीनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सक्रिय थे। मिश्र जी चोटी के वक्ता भी थे। उनके व्याख्यान में अखंड राष्ट्र प्रेम का स्वर समाहित था। वो अपने सिद्धांतों के प्रति सदैव अडिग रहे। मतभेदों के चलते उन्होंने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि संगठन की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया, लेकिन मुखर होकर वो गलत को गलत और सही को सही कहते रहे। उनके लिए संगठन नहीं, राष्ट्र सदैव प्रथम रहा और अपने इसी सिद्धांत पर वो आजीवन चलते रहे। सन 1956 में वो सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुने गए। मध्य प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को उन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसके प्रथम दीक्षांत समारोह में ही द्वारका प्रसाद मिश्र को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। यहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सागर विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। द्वारका प्रसाद मिश्र सन 1954 से 1964 तक सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राध्यापक या विद्यार्थी से अधिक उसके कुलपति अध्ययनरत रहा करते थे। सैद्धांतिक मतभेदों के चलते द्वारका प्रसाद मिश्र को लगभग 12 साल तक राजनीतिक निर्वासन झेलना पड़ा था। इस दौरान वो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से सहमत होते हुए उनके इतने करीब आ गए कि उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी चली थी। द्वारका प्रसाद मिश्र सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रबल पक्षधर थे और यही उनके व्यक्तित्व का सबसे उजला पक्ष था। वो संवेदनाओं से भरे हुए एक ईश्वरवादी व्यक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक, और महाभारत के कृष्ण सदा उनके आदर्श रहे।

द्वारका प्रसाद मिश्र 1960 के दशक में दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका शासनकाल अधिकारियों को आवश्यक स्वतंत्रता तथा समुचित अधिकार देने तथा कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने के लिए जाना जाता है। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित किया। राजनीतिक दांवपेच चलते रहे, लेकिन वो अपने आदर्शों के साथ अडिग खड़े रहे। वो न तो ब्रिटिश राज के बर्बरतापूर्ण अत्याचार के समक्ष कभी झुके और न ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष। राजनीति के साथ ही साहित्य और पत्रकारिता में भी उनका गहरा दखल था। द्वारका प्रसाद मिश्र की एक अंतरंग मित्र मंडली थी, जिसके अधिकांश सदस्य साहित्यकार और पत्रकार थे। साहित्य और इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी। रामायण और महाभारत पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी साहित्य गोष्ठियों में साहित्य और इतिहास चर्चा का बहुत ऊंचा स्तर होता था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा के साहित्य से उनका गहरा लगाव था। सन 1942 में जेल में रहते हुए ही उन्होंने महाकाव्य कृष्णायन की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। इस महाकाव्य ने प्रकाशित होते ही हिंदी साहित्य जगत का ध्यान आकर्षित किया। कृष्णायन एक उच्च कोटि का महाकाव्य है, जो आत्मजिज्ञासा सारे धर्मों के मूल में रही है। उसका दार्शनिक निरूपण इस रचना में मिश्र जी ने किया है। शताब्दियों से ढके पड़े हमारे जीवन के आदर्शों और लोक चेतना के मूलाधारों को उन्होंने सभी के लिए सुलभ बनाया। द्वारका प्रसाद मिश्र ने कई किताबें लिखी, जिनमें अपने समय की राजनीतिक धाराओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। उन्होंने अपने संस्मरण तीन खंडों में लिखे। पहला, लिविंग एन एरा, इंडियाज मार्च टू फ्रीडम। दूसरा, द नेहरू अप्रोच फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी। और तीसरा, द पोस्ट नेहरू एरा, पॉलिटिकल मेमोयर्स। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी, स्टडीज इन प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपनी किताब सर्च फॉर लंका में उन्होंने रावण की लंका की भौगोलिक स्थिति पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास। इस तरह उन्होंने अनेक ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की पुस्तकें लिखी थीं। वो संस्कृत कवियों और उर्दू शायरों की रचनाओं के हिंदी अनुवाद में भी गहरी रुचि रखते थे। 31 मई सन 1988 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। ऐसे महान राष्ट्र सेवक को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों मैं हूँ ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे हार के महत्व की।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।

0: हार का अनुभव जरूर किया है, हार या असफलता का। मैं अपनी बात बताऊं तो कितनी ही बार मैं क्लास में, टेस्ट में, एग्जाम में फेल हुई, वह हार थी। कई कंपटीशन में भाग लिया, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुई। दूसरे साथी जीत गए या सफल हुए तो भी मैं हार गई। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने हार का सामना नहीं किया हो। हम जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई लेखक हो, तो हमें केवल और केवल उनका सक्सेस या सफलता दिखती है। हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस सफलता के पीछे बहुत छोटी छोटी हार या असफलता छुपी हुई है। जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम लेता है तो गिरता है। हर कोई हो, आप हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे हार मान लेंगे? तो क्या चलना छोड़ देंगे? कभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने के लिए हार बहुत जरूरी होती है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जब उन्होंने बल्ब बनाया तो उससे पहले पता नहीं कितनी बार असफल हुए, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने हिम्मत नहीं हारी जब आप असफल हुए? उन्होंने हंसकर कहा, मैंने केवल सक्सेस ही देखा है, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं करती। तो माने तो हार का जीवन में महत्व है। अब दुनिया में हर कोई इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम सब कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, कहीं हार ना जाएं, कहीं असफल ना हो जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ? आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? सारे लोग केवल कछुए के जीतने की बात करते हैं। हर कहानी जो हमने पहले सुनी होगी, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, कि वो कोशिश करती रही और फिर यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे थे। मैं इस कहानी में ये देखती हूँ कि लोमड़ी ने कोशिश तो की, और देखा जाए तो हार जैसी शायद ही कोई चीज़ दुनिया में होती हो। हार का हम मतलब क्या लेते हैं? हार का मतलब लेते हैं कि हम उस चीज को जो चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम सोचते हैं हमारी हार हो गई। हमें जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में वो मार्क्स नहीं आए। हम किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, तो हम समझते हैं हमारी हार हो गई है। लेकिन हार होती नहीं है। जब भी आप कोई काम करते हो उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और शायद हार से ये सीखते हो कि हमें और क्या करने की जरूरत है। अच्छा, आप एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? ये कहानी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। एक बार क्या हुआ कि एक फादर अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने, उसका नाम केशव था, क्लास में टीचर के पास गए। अब केशव पढ़ने लिखने में शायद उसका ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था, क्लास में मस्ती, इधर उधर घूमना, और हर बार केशव की माँ उसे समझा के कहती, बेटा पढ़ लिया कर, जिंदगी में करेगा क्या आगे, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। वो हंसता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती तो हम में से जैसे कई लोग होते हैं, मन नहीं लगता था, कभी टीवी देखने लगता, कभी कुछ खाने लगता। अब टाइम आ गया था एग्जाम के रिजल्ट का, और जैसा आप सबको पता है कि जब इम्तिहान का रिजल्ट आता है तो माँ बाप को बुलाया जाता है। उस दिन सुबह सुबह पिताजी तैयार हो गए, केशव का हाथ थामे कि चलो रिजल्ट लेके आते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन केशव को कोई टेंशन नहीं था। वो टेंशन लेने वाले लोगों में से था ही नहीं। क्लास में जब पहुंचे तो काफी भीड़ थी। सारे बच्चे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड टीचर से ले रहे थे। सारे पेरेंट्स उनको गले लगा रहे थे, कितना अच्छा किया है, कितने अच्छे नंबर आए हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब जब केशव की बारी आई तो टीचर ने केशव के पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा। टीचर का ही दिल धड़क रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे उनके पिताजी को दे। नंबर बताऊं, मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, इंग्लिश में 100 में से 24 नंबर, हिंदी में 30 नंबर मिले थे, साइंस में 100 में से 14 नंबर मिले थे, ड्राइंग में ग्रेड अच्छा आया था। उसने धीरे से रिपोर्ट कार्ड केशव के पिता के आगे कर दिया। केशव के पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा, रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा। ये नंबर लेकर वो घर जाएंगे तो केशव की मम्मी का क्या हाल होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की थी केशव को पढ़ाने में। केशव ने पिताजी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि नहीं भाई, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। उसने पिता की आंखों में दुख देखा। जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकले तो एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, केशव भैया, केशव भैया, ये लो अपनी पेंसिल। और उसने पेंसिल केशव के हाथ में रख दी। अंकल, जब मेरे पास पेंसिल नहीं होती है ना, तो केशव भैया अपनी पेंसिल मुझे दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए केशव रोज घर से पेंसिल लेकर जाता है, वो पेंसिल देकर दूसरों की मदद करता है। पिताजी थोड़ा आगे चले, एक आदमी दिखा। अरे केशव बेटा, तुम जो रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हो, देखो कितना बेहतर हो गया ये कुत्ता, पहले कितना दुबला पतला था। केशव के पिता को बात समझ में आई कि इसलिए केशव अपनी माँ से ज्यादा रोटियां बनवा कर ले जाता है, क्योंकि वो रोटियां कुत्ते को खिलाता है। थोड़ा और आगे चले तो एक पड़ोस वाले अंकल जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा तू रोज दवाई लाता है मेरी और रोज पूरे के पूरे पैसे गिन कर वापस करता है, जीता रह बेटा, जीता रह। पिता को समझ में आया कि इसलिए केशव को स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है। केशव के पिता घर पहुंचे, माँ ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड देखा तो सब्जेक्ट्स में तो नंबर कम थे, पर जिंदगी में जो चीजें जरूरी हैं, लोगों पे दया, लोगों की सहायता करना और जानवरों की रक्षा करना, उनको खाना देना, उसमें केशव के नंबर बहुत बहुत बहुत ज्यादा थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप किसी एक चीज में हार गए हैं, जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पर आप गाना अच्छा गा लेते हो, हो सकता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम आते हो पर आप दूसरों की सहायता करते हो। तो जब भी कभी आप हारें, जब भी कभी आपको ये लगे कि जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है और आपको हार महसूस हो रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे कर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप वो क्या कर पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। हार हमेशा अकेली नहीं होती। जब भी कभी आप हारें तो एक चीज ध्यान रखिए कि हार कभी फाइनल नहीं होती है, हार केवल सफल मार्ग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता होती है। और कहते भी है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तब तक आप हार ही नहीं सकते। आपने हैरी पॉटर किताब का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत चर्चित किताबों में से एक है। इस हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके राउलिंग, उनको कितनी बार वो अपनी किताब लेके गई लोगों के पास छापने के लिए, और सबने मना कर दिया। तो क्या वो हार मानकर बैठ गई? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वह कोशिश करती रही और फिर एक दिन हैरी पॉटर दुनिया की सबसे चर्चित किताब बन गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अमिताभ बच्चन जी का जीवन अगर आप कभी पढ़ें तो फिल्मी दुनिया में उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उनको पिक्चरें नहीं मिलती थी, लोग कहते थे ये इतने लंबे हैं, उनको कास्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उनकी प्रतिभा देख ली। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी? हार तब होती है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ दें। वह आपने कविता सुनी या पढ़ी होगी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और फिर चढ़ती है, लेकिन वो दाना ले जाना नहीं छोड़ देती। तो करना क्या है? हमको केवल कोशिश करते रहना है। हर बार देखना है कि पिछली बार हमने क्या ऐसी भूल की थी, कौन सी ऐसी छोटी सी चीज की थी कि जो हम सफल नहीं हो पाए, और फिर उस चीज पे ध्यान देनी है। मान लीजिए आप कभी स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और जो आप तैयार कर आए थे आप बोलना भूल गए, आप घबरा गए, आप उतर कर आए और आपको लगा कि मैं तो हार गया हूं, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं असफल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज के बारे में गंभीरता से सोचें तो शायद अगली बार आप वो चीजें करके जाएंगे जो आपको बोलने में फायदा दे। तो शायद अगली बार आप वो सब चीजें तैयार करके जाएंगे जो आप पहली बार नहीं कर पाए। जैसे छोटी सी चीज है कि स्टेज में जाने से पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना जिससे आप नर्वस ना हो, या फिर 2-3 बार जिन जगह आप अटके हों उन चीजों को और ध्यान से पढ़ना। कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैथ के एग्जाम में, मान लीजिए मैं इसलिए बार बार मैथ कह रही हूं क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमजोर हूं, मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आता है और आपके कई स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मेरी गलती हुई है, दोबारा उसको जा सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका अपना सकते हैं याद करने का, समझने का। तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो कुछ लोग होते हैं जो दुनिया जिनको देखती है कि ये कभी कोई गलती ही नहीं करते, ये तो हर चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको देख के लगता होगा कि शायद इनमें दिमाग ज्यादा है या इनमें काबिलियत ज्यादा है। हो सकता है कि उनमें दिमाग ज्यादा हो सकता है कि उनमें काबिलियत ज्यादा हो सकता है कि वो चीजें 2 बार में कर पाए जो कोई दूसरा 4 बार में करे। पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आप कोशिश करते रहें और कर ना पाए। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, उस लड़की की कहानी जो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी। सारे लोग स्कूल में उसका नाम वृंदा था उस नाम से नहीं जानते थे, वह जानते थे ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती। परफेक्ट काम होता था उसका, सुबह उठती थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी, दोनों मोजे पहनती थी, पानी की बॉटल लेती थी, अपना टिफिन अच्छे से बैग में रखती थी। उसने क्लास में होमवर्क किया होता था, वो क्लास में सब चीज ध्यान लगा के सुनती थी, टीचर को गुड मॉर्निंग करती थी, जब शांत होने को बैठा जाए, बोला जाए, तो शांत होके बैठती थी क्लास में। माने कोई गलती नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट। सारे घर में लोग भी उसे कहते थे, वृंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। वृंदा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी कि सारा काम मुझे ठीक ठाक तरीके से ही करना है। कभी हंसती नहीं थी, उसका सारा दिमाग लगा रहता था कि अब इस काम को परफेक्ट ढंग से, बिल्कुल ठीक से कैसे किया जाए। वहीं पर उसका छोटा भाई बंटू, बंटू से कोई काम ठीक से नहीं होता था। पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता था, रिमोट बिस्तर के नीचे रह जाता था, जब स्कूल पहुंचता तो देखता मोजे दूसरे अलग अलग पहने हुए हैं, होमवर्क अगर हिंदी का कर लिया तो इंग्लिश का भूल जाता था, क्लास में हंसता ही रहता था। और वृंदा बिल्कुल चुपचाप। एनुअल फंक्शन वाले दिन वृंदा बहुत नर्वस थी, उसको एक सोलो सॉन्ग यानी एकल गीत गाना था। सबको पता था वृंदा ने बहुत मेहनत की होगी, वो गलती तो कर ही नहीं सकती। बंटू उसको पेड़ बनाया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था पेड़ थोड़ा बहुत हिल भी गया तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे स्कूल के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वृंदा हाथ में माइक लेके स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, कहीं से एक चूहा आके तार के पीछे और भड़ाम, वृंदा स्टेज में गिर गई। वृंदा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काम उससे गलत होगा या कोई काम वो कर नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर तक खड़ी हुई, तभी बंटू जो पेड़ बना हुआ था चलता चलता आया और बोला, वृंदा दीदी उठो, और सारा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज गया। वृंदा भी हंसने लगी, वह पहली बार हंसी थी। अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में किसी भी छोटी चीज को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वह पहली बार हंसी थी और वो भी अपनी हार पर। तो एक चीज बताऊं, जिस दिन आप अपनी हार पर हंसना शुरू कर देंगे, जीवन की परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और एक और तरीका बताऊं आपको, जब भी कभी आप किसी चीज में असफल हों, तो अपने आप से वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड रेस में हार गया, तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश कर लेना, अरे तू दौड़ा तो अच्छा था ना। तो यही चीज आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी, हो सकता है कोई कमी रह गई हो सकता है एक दो बार करने के बाद मुझे ये चीज आ जाए। तो जिंदगी में हार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम हार पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो जरा आंखें बंद करिए और उन अनुभवों को याद करिए कि जब आप कभी हारे हों। आंखें बंद करिए, हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हो सकता है स्टेज पे कुछ बोलने में, या कि कभी क्लास में असफल हुए हों, या खाना बनाना सीखा हो, घर में कोई नई डिश बनानी सीखी हो और आप उसमें असफल हो गए हों, या म्यूजिक क्लास में या किसी कोचिंग में, सारी चीजों को याद करिए। बड़ा खराब लगता है ना जब हारते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सबसे कमतर हैं, हमें कोई चीज आती नहीं है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। हमको अपनी ये सेल्फ टॉक बदलनी है। जब भी आप कभी हारें तो 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं कर सकता था, या जिस पर मैं ध्यान देता तो शायद बेहतर कर लेता? आगे मुझे ऐसी कौन सी स्किल या खूबियां डेवलप करनी है अपने आप में कि मैं जब वो काम करूं तो उसे अच्छे से कर पाऊं? और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा? आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मान लीजिए कि आप एक मैच हार गए तो आप की क्या क्या सीखे रही होंगी? हो सकता है आपने सीखा हो कि टीम वर्क जरूरी है, हो सकता है आपने सीखा हो कि शांत रहकर खेलना जरूरी हो, या कि धैर्य रखना जरूरी है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आप ध्यान देंगे तो आप उन सब चीजों को ढूंढ पाएंगे जो आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक हो जाएं। मान लीजिए आपने मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती थी जो आपकी इस सफलता में बाधक हुई। हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो, तो जैसा मैंने पहले बताया, गहरी सांसें लेकर स्टेज पर जाएं। हो सकता है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार नहीं 20 बार प्रैक्टिस करते तो आप स्टेज पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। सीखे आपकी हो सकती हैं, लेकिन सीखे होती जरूर है। हर हार में, हर असफलता में कुछ न कुछ सीख हमें जरूर मिलती है जो हमें जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो कहते हैं ना, जीत खुश करती है पर हार समझदार बनाती है। तो समझदार तो सबको बनना है ना, तो हार में कभी भी दुखी नहीं होना है। हाँ, जरूर हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें उन ख्यालों को सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है, जब तक कि हम वो चीज़ थोड़े और बेहतर ढंग से ना कर पाए। वो कछुए की बात याद है ना आपको? कछुआ तो बेचारा इतना धीमे धीमे चलता था, पर उसने खरगोश से बाजी मार ही ली क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बस हमें यही करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हार के सामने हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूंगी आपसे आज। तो प्यारे दोस्तों, आशा करती हूं कि आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जीवन में हार का कितना महत्व है और हारना क्यों जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त डॉक्टर रानी रैकवार भारती, लेकर आपका विशेष कार्यक्रम। जो आज कार्यक्रम हमारा समर्पित है एक ऐसे अभियान को जो सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं बल्कि लाखों जिंदगी को बचाने का संकल्प है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। लोगों को तंबाकू से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति जागरूक कर सकें, इसके लिए ये कार्यक्रम विशेष है। भारत में हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़े की बीमारी, ये सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि परिवारों की खुशियां छीन लेने वाली सच्चाई है। तो क्यों ना इस विषय पर, इस गंभीर बीमारी पर चर्चा की जाए। तो आज हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश साहू को, जो जनरल फिजिशियन हैं और बेहद लंबे समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक जाने माने चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। आज जो है वो 31 मई का दिन और पूरी दुनिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रही है, क्या लगता है ये क्यों मनाने की आवश्यकता महसूस हुई?
2: दिन ब दिन जिस तरीके से तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है हमारे युवा वर्ग में और इससे कम उम्र के बच्चों में और हर एज के लोगों में, तो ये एक भयावह रूप लेता जा रहा है। और जिस टाइप से हम आजकल देख रहे हैं इसकी भयावहता को देखते हुए इसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जागरूकता फैलाएं, इससे होने वाली नुकसान के बारे में हम लोगों को चेताएं, उनको बताएं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उनको इससे क्या सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सब को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। अगर हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू किस तरह से नुकसान करता है शरीर को?
2: तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है, हर अंग को नुकसान करता है। तंबाकू, हम अगर मुंह से, जैसे हमने तंबाकू लिया तो जब हम उसको चबाते हैं तो दो प्रोसीजर होती है चबाने में। एक तो दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है, उसके बाद जो लार निकलता है वो तंबाकू उसमें मिलके हमारे सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू अंदर जाता है। तो जब अंदर जाता है तो वो शरीर के मुंह से लेकर के जहां जहां जाता है वो हर पार्ट को नुकसान करते हुए जाता है। तो सबसे पहले तो तंबाकू मुंह का कैंसर का मुख्य कारण बनता है। उसके बाद जो नीचे जितने ऑर्गन हैं, जैसे अंदर जाएगा उस हिसाब से वो अपना प्रभाव डालना शुरू करता है, उसके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे लंग्स फेफड़े हो और हार्ट में हो, दिमागी हो, तो ये सारे अंग को धीरे धीरे धीरे धीरे, अगर लंबे समय तक इसको नहीं रोका गया, लंबे समय तक लेते हैं तो इसका शरीर के हर अंग में दुष्प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, आपने तो इसका दुष्प्रभाव बता दिया। ऐसा क्या है उसको खाने से कि जो इंसान है उसका आदि हो जाता है?
2: देखिए, ये तंबाकू का सेवन अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो एक शौक से शुरू होता है कि बच्चों में या युवा वर्ग में एक इसको स्टाइलिश, एक स्टाइल का माना जाता है कि एक फैशन के रूप में लिया जाता है कि दोस्तों के साथ खा लिया, और ये आदत धीरे धीरे धीरे धीरे शौक में बदलती है और इसके बाद शौक ये लत में बदल जाती है। शुरुआत तो घर परिवार से भी हो जाता है कि अगर हमारे घर के बुजुर्ग खा रहे हैं तो उनको देख के भी कई बार बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक शौक के माध्यम से शुरू होता है और ये फिर धीरे धीरे धीरे धीरे एक लत में उसकी आदत ही बन जाती है। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर निकोटिन का जो केमिकल होता है ये शरीर को एक आदि बना देता है, ये दिमागी तौर पर एक आदि बना देता है कि इसको खाने के बाद एक लगता है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये उसके दुष्परिणाम ही आगे सामने आते हैं।
1: सिगरेट के माध्यम से भी लोग ले रहे हैं, गुटखा, पान मसाला, हुक्का, ये कई तरह के जो रूप हैं इस तरह से भी लोग तंबाकू को उपयोग कर रहे हैं। आपने जो बताया खैनी के रूप में खाते हैं तो ये तो नुकसानदायक है ही, तो ये सिगरेट, गुटखा, पान में, इनमें भी हानिकारक है?
2: बिल्कुल, ये तंबाकू किसी भी रूप में सेवन किया जाए, चाहे वो सिगरेट, पान तंबाकू कहीं पे भी किसी भी रूप में मिला के उसको खाया जाए, ये हमेशा नुकसान ही करेगा, शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। तंबाकू अगर सिगरेट के रूप में हम लेते हैं तो सिगरेट हम इनहेल करते हैं तो जैसे अंदर धुआं उसका जाता है तो हमारे लंग्स में होते हुए वो जो एक लंग्स के पोर्स को ब्लॉक करता हुआ जाता है। बहुत ज़्यादा सेवन अगर कोई कर रहा है तो ये निश्चित तौर पर उसके फेफड़े कमज़ोर होंगे, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और आगे जाके अनियमित टाइप के जो सेल्स डेवलप होते हैं और जो कि कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं। तो तंबाकू अगर सिगरेट में लिया जाए, अगर खैनी को मिला के खाया जाए या उसको पान के अंदर लिया जाए, किसी भी रूप में लिया जाए, ये निश्चित तौर पर एक दुष्परिणाम ही करेगा, ये को छोड़ना ही उचित है।
1: क्या कारण है कि ये चलन में आने लगा है?
2: आजकल सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है। बचपन में हमने पढ़ा था कि विज्ञान एक चमत्कार भी है और अभिशाप भी है
1: जी।
2: तो कई बार ये कारण भी होता है कि हम सोशल मीडिया से कुछ अच्छी चीजें ना सीखते हुए बुरी चीजें ज्यादा सीख लेते हैं। तो इसका चलन में एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि आजकल उसमें भी चेतावनी दी रहती है लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लोग उसको सेवन करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये शौक से ही शुरू होता है, एक फैशन स्टाइल है और उसके बाद वो फिर लत में बदलते जाती है। और आजकल एक और देखा गया है कि पहले थोड़ा युवा वर्ग में ये होता था, अब तो कम उम्र के बच्चे और जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं और ये बहुत ज्यादा आजकल चलन में।
1: बिल्कुल नई उम्र की जो बच्चियां हैं वो भी और बच्चे भी हैं वो भी बिल्कुल इसको बिल्कुल धुएं में अपनी जिंदगी जैसे उड़ाने पे उतारू टाइप के हो गए हैं। तो इनको कैसे इस बात के लिए थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई ये इनके लिए हानिकारक है?
2: इसके लिए शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी, परिवार से करनी पड़ेगी कि परिवार में बिठा के काउंसलिंग की जाए कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। इसके बाद जो स्कूल कॉलेज हैं यहाँ कैंप लगाना, और सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन यहाँ पर मुझे तो लगता है इसको एक पाठ्यक्रम में ही शामिल करने की जरूरत है। जिस टाइप से ये आजकल बहुत ही एक प्रचलन हो गया है तो स्कूल कॉलेज और जगह जगह कैंप लगाना, शिविर लगाना, और अपने इस स्तर पर राज्य सरकार काफी इसमें पोस्टर वगैरह भी लगाती है और फिल्म के माध्यम से भी इसको समझाया जाता है। तो इसलिए इसमें यह है कि हमको हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक युवा वर्ग ही हमारे इस चपेट में आ जाएगा तो कहते हैं कि एक युवा वर्ग ही किसी राष्ट्र की एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वही नशे की गिरफ्त में है तो फिर हमारे देश का क्या होगा? तो हमें अपने परिवार के लिए जीना है, हमारे समाज के लिए जीना है, हमारे राष्ट्र के लिए जीना है। अगर ये भावनाएं हमको शुरू से बच्चों में, युवाओं में और हर वर्ग में हमको डालना जरूरी है।
1: बिल्कुल, लेकिन मैंने कई जगह ये चीज देखे हैं और कई बच्चे जो हैं, या कहना चाहिए जो धूम्रपान के और तंबाकू के आदि हैं, वो इस बात का वास्ता देते हैं कि ई सिगरेट और वेपिंग सुरक्षित है भाई, इससे नुकसान नहीं होगा। ये कितना भ्रामक है।
2: ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान है जितना सामान्य सिगरेट होते हैं जिसमें तंबाकू होता है, क्योंकि इसमें भी निकोटीन है और कुछ जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि अंदर जा करके हमारे फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। तो ई सिगरेट भी बहुत नुकसानदायक है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी को वैसे भी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है या थायराइड है या कुछ और उसको कॉम्प्लिकेशन है और वो नशे का सेवन करता है तो उसको ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। अगर किसी को ये नहीं है तो भी नुकसान करेंगी, लेकिन अगर किसी को ये सारी बीमारियां भी साथ में है तो उतना नुकसान करेंगी। तो ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान करेगी। हुक्का का लाउंज में जो भी परोसा जाता है ये सब नुकसान करते हैं। तो ये
1: वेपिंग क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में बताइएगा।
2: वेपिंग भी वही एक नशे का ही एक प्रकार है, उसको केमिकल डाल के, और आजकल तो बहुत सारे और ऐसी चीजें आ गई हैं कि इंजेक्टेबल भी ले लेते हैं, वेन्स के थ्रू भी लेते हैं, इनहेल भी कर लेते हैं। हमने तो ये देखा है कि टायर को जला के भी कई बार यूज करते हैं, ड्रग्स हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसान है, तो हम जितना इससे दूर रहेंगे उतना ही।
1: तो मतलब अगर जो ये हमें एक्सक्यूज देते हो कि ई सिगरेट और वेपिंग सुरक्षित है, तो हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये भी सुरक्षित नहीं है, दूर रहना ही, तौबा करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तंबाकू की बात हो रही है तो ज्यादातर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू के सेवन से होती हैं और स्वास्थ्य पे असर डालती हैं?
2: देखिए, अगर तंबाकू लेते हैं तो सबसे पहले तो मुंह का कैंसर होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। इसके बाद हार्ट डिजीज़ है, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, और COPD जैसे बोलते हैं अस्थमा या इस टाइप से जो आगे रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, ये मुख्य कारण बनते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि तंबाकू शरीर के ब्लड में जा करके शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। जो तंबाकू लेते हैं उनको ये जरूर लगता है कि थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम को जाकर के ब्लॉक करता है और धीरे धीरे धीरे धीरे उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये नुकसान तो करता है,
1: बिल्कुल नुकसान करता है। लेकिन कई बार एक अच्छा ये भी बात देखने में मिली है, कई लोग इस बात का एक्सक्यूज करते हैं कि भाई हम घर में सिगरेट पी रहे हैं या हम धुएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे लोग नहीं कर रहे। घर में गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं करते, लेकिन कई बार देखा गया कि उनमें भी इसका असर देखने को आता है।
2: देखिए, इसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, क्योंकि जो धूम्रपान कर रहा होता है वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, लेकिन अगर जो धूम्रपान नहीं कर रहा है उसके सामने बैठ के कर रहे हैं और जो नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट तरीके से जो धुआं हमारे अंदर आता है वो भी उतना ही नुकसानदायक होता है जितना कि जो धूम्रपान कर रहा है उसमें होता है। गर्भवती महिलाओं के सामने स्मोकिंग करने से, या गर्भवती महिलाएं खुद भी अगर कर रही हैं, तो फीटल जो बच्चा है उसमें उसको प्रभावित होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लंग्स कमजोर होने के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होने के चांसेस होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको ये पैसिव स्मोकिंग को रोकना चाहिए, घर में कभी ना करें और कहीं भी ना करें, इसको तो छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन अगर नहीं छूट रही है तो कम से कम इतना तो करें कि घर परिवार में, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके सामने, या कोई किसी को कोई बीमारी है उनके सामने, तो बिल्कुल भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से बचें।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से बचना चाहिए। वैसे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि उसका प्रभाव किसी और पर ना पड़े। तंबाकू की बात अगर हो रही है तो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है छोड़ना? अपनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता।
2: इसमें जैसे मैंने बताया कि निकोटिन नाम का जो केमिकल होता है, ये नर्वस सिस्टम पर जाकर के अटैक करता है, और धीरे धीरे ये निकोटिन एक आदत के रूप में बन जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि जब तक हम सिगरेट नहीं लेते या गुटखा पान तंबाकू नहीं खाते, तंबाकू का सेवन नहीं करते, तब तक हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा पेट खराब रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। तंबाकू या नशे की कोई भी चीज़, कोई एंटासिड या एसिडिटी को कम करना या पेट साफ करने की दवा नहीं है, ये एक धीमा जहर है। ये सिर्फ एक मन को शांत करने के लिए लोग बना लेते हैं कि हम ये खा लेते हैं, क्योंकि उसको आदत लग गई है, तो वो आदत के कारण उसको ऐसा लगता है,
1: ये सिर्फ
2: एक भ्रम में ही रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है। आपको कभी भी देखिएगा कि नशे करने वाला व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है।
1: ये बात अगर हम कहें कि किसी ने संकल्प ले लिया कि अब छोड़ना है, क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या बदलाव है जो शरीर में आते हैं तंबाकू छोड़ने से?
2: देखिए, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, सिगरेट तंबाकू ले रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर वो लंबे समय से ले रहा, तो कम से कम 15 से 20 साल की आयु उसकी कम हो जाएगी। और अगर इसको छोड़ा जाए तो 15-20 दिनों में ही इसका असर आना शुरू हो जाता है, सकारात्मक असर आना शुरू हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, पल्स रेट उसके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, कार्डियक रेस्ट उस रेट उस नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे, मन में एक अच्छे भाव आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी काउंसलिंग करें, परिवार उसकी काउंसलिंग करे, डॉक्टर के। बहुत आजकल छोड़ने के लिए एक थेरेपी यूज किया जाता है, योग मेडिटेशन, इसका बहुत अच्छा एक छोड़ने का तरीका है। और अगर जुनून है, छोड़ना है, जज्बा है, तो निश्चित तौर पर छोड़ा जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने डॉक्टर के परामर्श लेके उनके संरक्षण में नशे को छोड़ें। आजकल तो काफी संस्थाएं काम कर रही हैं इसके लिए, नशा मुक्ति केंद्र हैं जहां पर बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, योग मेडिटेशन कराया जाता है, उसको छोड़ने के क्या क्या तरीके हैं और किस टाइप से हमको छोड़ना है, धीरे धीरे धीरे करके कैसे उसको नॉर्मल लेवल पर लाना है, ये सारी चीजें समझाई जाती। जाती हैं, तो हम इससे छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं।
1: बिल्कुल। परिवार किस तरह की भूमिका निभा सकता है, हमारे समाज के लोग किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताएं ताकि उन्हें मॉरल सपोर्ट मिले और वो इस चीज़ को छोड़ पाएं।
2: देखिए, कभी भी नशे के लिए मैंने जहां तक देखा है लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको उलाहना देते हैं, आप उनको ताने ना मारें। लोग छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन कई बार तानों की वजह से और मजाक की वजह से छोड़ भी नहीं पाते, तो परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है उसको प्यार से समझाएं, उसको सहानुभूति दिखाएं, उसके साथ उसके प्लस माइनस सारी चीज़ें समझाएं कि क्या इसके नुकसान है, क्या इसके क्या मिलना है इससे। और समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जैसे मैंने बताया कि उसको ताने ना मारें, एक उसके साथ एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको समझाया जाए, उसको किसी पर साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास अप्रिशिएट किया जाए, उसको बताया जाए कि आप कितने परिवार के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपका क्या महत्व है, आपका समाज का के लिए कितना महत्व है, आप समाज को राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। जिस दिन अगर कोई भी युवा या कोई भी जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, तंबाकू या किसी का भी, ये समझ जाए कि उसकी सर्विंग क्या, उसको क्या देना है एक देश को, तो वो 100% ये नहीं करेगा, छोड़ देंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात है कि हम उनको प्रोत्साहित करें और उनको इस बात का महत्व समझाएं कि आप महत्वपूर्ण हैं व्यक्तिगत रूप से भी और परिवार के रूप से भी और देश के लिए भी। बात देश तक पहुंचाई है आपने कि भाई ये है, सरकार इतने सारे अभियान चला रही है, इतने जागरूक करने के लिए बहुत सारे स्कीमें भी चला रही है, तो सरकार द्वारा जो चेतावनी चित्रों और विज्ञापन जो होते हैं क्या ये प्रभावी हैं, ये मदद करेंगे?
2: बहुत प्रभावी होते हैं। कई बार ऐसे विज्ञापन देख के जो
1: कैंप
2: सरकार
1: भी लगाए जाते हैं,
2: कैंप भी लगाए जाते हैं और इस टाइप के पोस्टर जो है देख के भी लोग डरते हैं और उसके बारे में कम से कम सोचना शुरू करते हैं। ये पोस्टर देख के एक दिमाग में तो आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी मुझे भी हो जाए और मैं, तो वो एक सोचना तो शुरू करता है, तो एक अच्छा इनिशिएशन है, एक अच्छा शुरुआत अच्छी है, तो ये सरकार का कदम बहुत सराहनीय है। WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है कि सिगरेट पीने से क्या या तंबाकू का सेवन करने से कितने हानि हैं, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो बहुत सारे अभियान NGOs भी जो निजी संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं। अगर मुझे लगता है कि हम सब मिलके इसके लिए कदम उठाएं, हमारे परिवार के तौर पर, समाज के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर, नॉन मेडिकोस के तौर पर, अगर सब मिलकर के इसको करें तो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पर इसके ऊपर विजय पा लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा देश, हमारा युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूं कि 6वीं 7वीं के बच्चे भी आजकल नशे का सेवन करने लगे हैं, तो अगर ये सब मिलकर के इसके लिए एक युद्ध छेड़ दें कि नहीं, इसके लिए हमको विजय पाना है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो निश्चित तौर पर हम इस पर विजय पा लेंगे और इसके आजादी मिल जाएगी।
1: कोई ऐसा वाक्य हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि आपने देखा हो कि इन्होंने नशा छोड़ा हो काफी मशक्कत के बाद, तो उसमें काफी सकारात्मक बदलाव आपको देखने मिले हो।
2: मेरे पास एक युवा महिला आई थी और एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थी कुछ समय पहले, और वो अल्कोहल और तंबाकू और ये सारा सिगरेट वगैरह सब का सेवन करती थी, लेकिन उनका जब शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा तो वो आए, तो उनको मैंने काउंसलिंग की और उनको थोड़ा ये समझाया कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और जो हो रहे थे उनको, धीरे धीरे धीरे धीरे उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और छोड़ना शुरू किया। उसके बाद वो ई सिगरेट जो आपने बात की उसमें आए और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है, तो उनको उसके भी दुष्परिणाम बताए। धीरे धीरे धीरे धीरे उनको कई छोड़ने में दिक्कत गई, लेकिन उसके परिवार को भी बुलाया और उनके परिवार वालों को भी समझाया, तो एक सामूहिक प्रयासों से, न सिर्फ खाली मेरे दवाओं से ही कुछ नहीं होता है, इसके लिए एक खुद का जज्बा होना भी जरूरी है, सामूहिक प्रयासों से आज वो उन्होंने पूरी तरीके से उससे मुक्ति मिल गई है और वो अपना बहुत अच्छा एक हेल्दी लाइफ अपना व्यतीत कर रही है।
1: तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस बात के सबूत आपके पास हैं कि मतलब छोड़ दिया जाए इसको, तो नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, बल्कि आप उसका एडिक्ट रहेंगे तो आपको नुकसान बढ़ेगा
2: निश्चित तौर पर। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तंबाकू लेते हैं, सिगरेट वगैरह लेते हैं, वो ये बात हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जब भी मैंने छोड़ने की कोशिश की है तो मेरे को और दिक्कत हो गई है, मैंने कोशिश की लेकिन उसके बाद मेरे को और हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो ये उनको समझाने की जरूरत है कि जब आप छोड़ें तो किस तरीके से छोड़ें
1: जी,
2: और छोड़ने के साथ हमको क्या सप्लीमेंट देना है, क्या साथ में दवाओं का स्टार्ट करना है, और किस तरीके से उनको व्यायाम करना है, क्या डाइट रखनी है, कितना उनको योगा मेडिटेशन, ये सारी चीजें एक साथ करने से निश्चित तौर पर वो नशा आपका छूट सकता है।
1: बिल्कुल, बात हो रही है तंबाकू की तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम करना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा चलन है बीड़ी का, सिगरेट तो कम है वहाँ पर लेकिन बीड़ी और खैनी परोसी जाती है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जब कोई पारिवारिक समारोह होता है तो उसमें बकायदा प्लेट में रख के परोसा जाता है कि आप इसका सेवन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कितनी आवश्यकता है?
2: जितना शहरी क्षेत्रों में है उतना ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी है।
1: इन्हें कैसे समझाएं?
2: ग्रामीण, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी समझाने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, उनको इसके इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और खासकर इसकी शुरुआत नीचे से ना करते हुए ऊपर से करेंगे, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति जो दादा दादी नाना नानी ये सेवन करते हैं, विरासत में दे रहे हैं, उनको पहले समझाया जाए कि इससे क्या दुष्परिणाम है, क्योंकि देखा गया है कि उन्होंने अपने पोते को गोद में रखा है और बीड़ी पिए जा रहे हैं तो वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ में जो छोटा बच्चा है उसके भी लंग्स में वो उतना ही नुकसान कर रहा है। तो उनको समझाया जाए कि इससे ये दुष्परिणाम होते हैं, तो वो समझें, फिर वो अपने छोटों को समझाएं और धीरे धीरे धीरे धीरे ये जड़ से खत्म हो जाएगा।
1: तो बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर ग्रामीण स्तर पे भी समझाना है तो शुरुआत बड़ों से करनी होगी, तब वो नीचे तक जाएंगे। स्कूल, पंचायत और स्वास्थ्य शिविर, ये किस तरह से काम आ सकते हैं?
2: स्कूल में मुझे तो लगता है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, आज की भया इस सामाजिक जो परिवेश को देखते हुए मुझे निश्चित तौर पर लगता है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। स्कूलों में जैसे शनिवार है या कोई भी इस टाइप से एक दिन निश्चित करके इसके बारे में बताया जाए, बाहर से कुछ लोगों को, विशेषज्ञों को बुलाया जाए, काउंसलर्स को बुलाया जाए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है और जैसे ही बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में फिर वही काउंसलिंग एक बार होनी चाहिए। तो हर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हर स्टेप में काउंसलिंग होनी चाहिए, तो सोशल मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए, न्यूज़ मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी जानकारी तो बता दी, मेरे मन में भी सवाल आ रहा और हमारे सुनने वालों के भी मन में सवाल होगा, सबसे बड़ा इस समय एक बीमारी है तनाव, डिप्रेशन, क्या ये बहुत बड़ा कारण है, क्या इसको दूर करके भी इसको जोड़ा जा सकता है?
2: जी, तनाव, डिप्रेशन ये एक सेल्फ क्रिएटिंग प्रॉब्लम ही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तब से ही तनाव शुरू हो जाता है और मरते दम तक रहता है किसी न किसी रूप में। तो तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये ज़रूर लगता है जो नशा करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी तनाव हो गया, डिप्रेशन आ गया या कुछ भी पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक सिगरेट ले लेंगे या पाउच ले लेंगे तो उससे उनको बड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, एक स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है जो कि आपके ब्लड में जाके, आपके लंग्स में जाके आपके हर चीज को प्रभावित कर रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और सिगरेट या नशे को छोड़ने के लिए योग, मेडिटेशन, म्यूजिक, ये थेरेपी बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट। आपका एक शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, इसका अपने शरीर की को रिस्पेक्ट करें, शरीर की बनावट की रिस्पेक्ट करें, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना इस चीज़ को समझें और हमेशा अपने डॉक्टर के, अपने गुरुओं के, अपने परिवार के संपर्क में रहें, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, आपने कामयाबी की बात करी है और बिल्कुल सही कहा है कि हम सकारात्मक माहौल में रहेंगे और तो हमें बिल्कुल इसमें सफलता मिल जाएगी। आपने बहुत लंबा समय आपने डॉक्टरी में प्रैक्टिस किया हुआ है, तंबाकू के कई आपने केसेस देखे हैं और उनको निपटाया भी है सही तरीके से, कि भाई सुधार भी किया है और उनको सुरक्षित भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आज विशेष दिन पर?
2: निश्चित तौर पर मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मैंने हमेशा शुरुआत की है बच्चों से। जब भी कोई बच्चा आता है तो उनकी बातों को समझें। अगर बच्चा अकेला है तो उसको समझें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करें। युवा वर्ग भी है, अगर वो नशे की गिरफ्त में है तो उनको समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ले रहे हैं, उसके डायग्नोस करें उसको कि इसका कारण क्या है। क्या ये एक सामाजिक दिखावे के तौर पर ले रहे हैं या इनको कोई स्ट्रेस है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये लेने से इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, या ये क्या चाह रहे हैं। जब तक आप युवा वर्ग की या जो भी नशा ले रहे हैं इनकी मनोस्थिति को नहीं समझेंगे, इसको दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने तो वो नहीं लेंगे लेकिन बाद में जाके वही करेंगे जो उनको करना है। हमको इनकी मनोस्थिति को समझना है, इनको मन को समझना है, और मन को समझ के इनकी काउंसलिंग करनी है कि इसके क्या दुष्परिणाम बाद में हो सकते हैं। आप इनका दोस्त बनिए, इनका मजाक ना उड़ाएं, इनको ताने ना मारें, इनके दोस्त बने। जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको समझेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और खुद को गंभीरता से लेंगे। आप उनको समझाएं कि खुद के दोस्त बने, खुद की रिस्पेक्ट करें, नशे से क्या नुकसान हो रहा है, इससे आप कहां जा रहे हैं, आपकी आगे आगे आने वाले दिनों में आपको और कौन सी परेशानियों का सामना पड़ सकता है। हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आए आप, हो सकता है आपको दमे की बीमारी हो जाए, हो सकता है रीनल प्रॉब्लम हो जाए। ये सारी चीजें आपको उनके सामने रखना है, तो ये उन चीजों को वाकई समझेंगे और फिर ये हो सकता है कि निश्चित तौर पर उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बेहद ही विस्तृत रूप में हम सबको बताया कि भाई धुएं में और तंबाकू से हमको दूर रहना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जीवन को खत्म करने वाला जहर है, आपने ये चीज़ बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमें ये संकल्प लेना होगा दोस्तों कि हम खुद भी तंबाकू से दूर रहेंगे और अपने परिवार, बच्चों और समाज को भी इसके नुकसान के प्रति पूरी तरह से जागरूक करेंगे, क्योंकि तंबाकू और धुएं ये हमारे लिए बेहद नुकसानदायक हैं। क्योंकि ये केवल आदत नहीं है, ये एक बीमारी है जो हमारे शरीर को तोड़ती है, परिवार को तोड़ती है और सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम अधूरा नहीं हो सकता, और इंसान तो हर जंग जीत सकता है, जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, जीवन अनमोल है, हमारी सांसें किसी धुएं की मोहताज नहीं है, हमारे सपनों को किसी जहर की जरूरत नहीं है। तो इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं विदा। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और वाचन में मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने का हमारा प्रयास चल रहा है, और इसी सिलसिले में आप सुन रहे हैं सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा। और श्रोताओं, जैसा कि आपको याद होगा कि हम पिछले सप्ताह के एपिसोड में जिक्र कर रहे थे कि किस तरह भारतीय थल सेना ने इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पश्चिमी मोर्चे पर जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई उसकी गौरव गाथा लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हम पिछले बार जिक्र कर रहे थे
2: जी
3: बैटल ऑफ बसंतर का
2: जी, बिल्कुल,
3: जो कि इस पूरे के पूरे 71 वॉर में की सबसे प्रचंड बैटल थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और इसमें आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फियर्स रहा था कि दो दिन के इस बैटल में 15 से 17 दिसंबर तक जो ये लड़ी गई थी, इसमें 2 परमवीर चक्र और 5 महावीर चक्र से जो है को सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स भी मिले थे। तो हाउ फियर्स दिस बैटल इज, यू कैन वेल इमेजिन अबाउट इट। एंड इस बैटल में सबसे बड़ी बात जो हुई थी, इंडियन आर्मी जो है आउटशाइंड एंड इट इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तान टैंक्स एंड इन्फेंट्री रिसोर्सेज। ऑलमोस्ट एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो होती है जिसमें 100 से ज्यादा टैंक्स हैं, उसका जो एक मेजर पोर्शन जो है बर्बाद कर दिया था, और ये बहुत बड़ी सफलता मिली थी
2: जी।
3: इसकी मतलब कुछ जो है मुख्य बातें हम आज आप जिक्र करते हैं
2: जी, बिल्कुल सर।
3: जैसे मैं शुरुआत करूंगा कि जब इनिशियल फेज में अटैक के बसंतर रिवर को क्रॉस करना था
2: जी,
3: उसके लिए 16th बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट थी, उसको मतलब टास्क दिया गया था कि वो दुश्मन की दो वाइटल लोकेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, उन पर कब्जा करें
2: जी।
3: तो अब जो इनिशियल जो बटालियन जाती है, जो सबसे पहले जाती है, आप समझ सकते हैं उस समय दुश्मन भी तैयार रहता है पूरी तरह से, एंड आप भी तैयार रहते हो। सो इट इज अ बैटल ऑफ विट्स, इट्स अ बैटल

0: कोऑर्डिनेशन प्रॉपर था, देन आर्टिलरी फायरिंग का सपोर्ट था, आर्टी सपोर्ट था, सब कुछ था
1: जी।
0: और मतलब उनके पास जो है इवन कंपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा वहां पे लोग थे।
1: अच्छा।
0: इस बैटल में जो है एक वक्त ऐसा आ गया था कि हैंड टू हैंड फाइट हो रही थी सोल्जर्स की, एक एक बंकर क्लियर कर रहे थे लोकेशंस पे, करने के बाद जो है 16 मद्रास वाज एबल टू कैप्चर दिस ऑब्जेक्ट, जो इलेक्शन का उन्होंने कैप्चर करा
1: जी।
0: अब पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले बोला, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि उसको जो है डिफेंड करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हम हार गए तो इसमें बसंता रिवर क्रॉस करने का इंडिया को जो है मौका मिलेगा
1: जी, बिल्कुल।
0: और साथ साथ जो उनके आगे के लोकेशंस हैं
1: वो खतरे
0: में आ जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने जो है इस पे काउंटर अटैक करना शुरू किया रिगेन करने के लिए। अब वो एक के बाद एक जो है अटैक करते गए। आप ये समझिए कि 2 दिन 3 रातें लगातार उन्होंने काउंटर अटैक्स किया। तो कितने बार उन्होंने काउंटर अटैक किया होगा, एक के बाद एक, एंड हर बार जो है जो डिफेंसेस होल्ड कर रहे थे, तंबीज, जिसको मद्रास रेजिमेंट में हम जवानों को तंबीज बोलते हैं, तो जो होल्ड कर रहे थे तो दे वेरी ब्रेवली, एंड उन्होंने इस लोकेशन को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। वो जो है जितनी बार अटैक होता रहा उतनी बार उसको जो है रिपल्स करते चले गए। तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था कर्नल बीपी गही साहब जो थे, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द सेंस जो है अटैक में भी, उसके बाद भी, एंड इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग वेरी सीरियस इंजुरीज, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल, फिर भी जो है वो लड़ते रहे, एंड लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के लिए, शहीद हुए। देखिए ये जो रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट जो है, इसका मोटो है इट्स ग्लोरी टू डाई डूइंग वन्स ड्यूटी,
1: यानी कि स्वधर्म में निधन श्रेय।
0: अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसको जो है ट्रू सेंस में अपने रेजिमेंट के मोटो के लिए उन्होंने जो है उसको कायम रखते हुए जो है शहीद हुए, एंड इसके लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था पोस्टमसली,
1: यानी अपने पहले धर्म के लिए बलिदान हो जाना।
0: बलिदान जी। इसी तरह से 16 मद्रास के एक और सोल्जर थे हवलदार थॉमस फिलिपस
1: जी,
0: उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से जो है लड़ते हुए अपनी प्लटून को, जबकि वो प्लटून कमांडर नहीं थे, प्लटून कमांडर जो है शहीद हो गए थे, तो उन्होंने टेक ओवर किया था
1: जी।
0: और वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि आखिरी बंकर जो है कैप्चर नहीं किया गया था। ही ऑल्सो रिफ्यूज की भाई, चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बावजूद जो है वो इवैक्यूएट नहीं हुए थे, तो उनको भी जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से जो बैटल ऑफ बसंतर है उसमें बहुत सारे करेजियस एक्शंस देखे थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि इसमें 2 परमवीर चक्र, 5 महावीर चक्र और अनगिनत जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स मिले थे।
1: आप जैसा बोल भी रहे ना कि प्रचंड युद्ध था सर।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जो 2 परमवीर चक्र विजेता है उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे सर इन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में, और ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं जो आज इस कार्यक्रम को सुन रही है वो इससे प्रेरणा ले पाए।
0: तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का
1: जी,
0: जो उस समय मेजर थे और 3 ग्रेनेडियर्स में 40 कंपनी कमांड कर रहे थे। इस बटालियन को भी जो है 16 मद्रास की तरह जो टास्क मिला था
1: जी,
0: आगे बढ़ के ब्रिजहेड एस्टैब्लिश करने का, मतलब इन द सेंस रास्ता
1: बसंतर
0: रिवर जी, जैसे यहाँ जो है 16 मद्रास लड़ रही थी उसी तरह से 3 ग्रेनेडियर्स भी लड़ रही थी
1: जी।
0: जो है 3 ग्रेनेडियर्स का टास्क था, मतलब एक लोकेशन थी जरपाल, उसके ऊपर कब्जा करना। अगेन जैसे कि हम यहाँ पे 16 मद्रास में हमने देखा था कि दुश्मन ने काफी अच्छे से तैयारी करके रखी हुई थी, एंड इसी तरह से ये लोकेशन भी बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड थी। तो जैसे ही कंपनी मतलब आगे बढ़ी है तो उनके ऊपर काफी हैवी फायरिंग आई, शेलिंग आई, ठीक है, काफी उनको जो है कैजुअल्टीज हुई। लेकिन अगेन ग्रेनेडियर्स जो थे जो है सोल्जर्स थे वो जो है कॉन्स्टेंटली लड़ते रहे, एंड ये उनकी हिम्मत, बहादुरी और जज्बा जो है उसके चलते हुए जो है उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अपना कैप्चर किया जो है। यहाँ पर भी सेम तरह के हालात थे कि एक एक बंकर को क्लियर करने के लिए हैंड टू हैंड फाइट हुई, एक एक बंकर क्लियर करने के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ी थी,
1: तो आमने सामने आ गए,
0: आमने सामने आ रहे हैं बंकर। मतलब सुनने में शायद आपको अगेन आसान लगे, लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक एक बंकर को क्लियर करने में काफी टाइम लगता है, वहां से फायरिंग आ रही है आपके ऊपर, दुश्मन को भी मालूम है कि अभी मेरे ऊपर चार लोग आएंगे तो जो है मैं खत्म हो जाऊंगा, उसको भी वो अपनी
1: पूरी तैयारी
0: सब चीजों के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने यूनिट के लिए लड़ रहा है, अपने आप के लिए लड़ रहा है, सबके लिए वो लड़ रहा है, तो ही इज ऑल्सो इक्वली मतलब रेजिस्टेंट। तो उसको काबू करना, उसको ऊपर कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगेन जैसे ही ये लोकेशन पे कैप्चर हुआ तो दुश्मन ने जो है काउंटर अटैक लॉन्च करना शुरू किया, और इस बार उन्होंने जो काउंटर अटैक को लॉन्च कर रहे थे उसमें आर्मर्ड भी थी, आर्टिलरी का सपोर्ट भी था। अब ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब जो थे, ही वॉज कमांडिंग दैट कंपनी। ये जो कंपनी कमांडर साहब होते हैं उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, उनके जज्बे पे, उनकी लीडरशिप के ऊपर जो है पूरी कंपनी निर्भर होती है, और होशियार सिंह साहब जो थे वो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन जो है अपने जवानों का हौसला अफजाई करते रहे, बढ़ते रहे, उनको जो है उन्होंने हर काउंटर अटैक पे उनका हौसला अफजाई करते रहे और खुद भी लड़ते रहे ऐसे करते करते। मतलब इवन उनको जो आर्टिलरी शेलिंग में उनको खुद को जो है कैजुअलिटी हुई थी जो है, लेकिन फिर भी जो है वो पीछे नहीं हटे और दुश्मन को जो है उन्होंने आधी कैजुअलिटी पहुंचाई थी। फिर से दोबारा जो है इनके ऊपर काउंटर अटैक आया, ठीक है। तो इस दौरान जो है लड़ाई जब चल रही थी तो जो MMG गन थी उसका क्रू को गोली लग गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो होशियार सिंह साहब खुद जो है उन्होंने MMG को ऑपरेट किया और वो लगातार दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे। यू सी हाउ फियर्स इट कैन बी कि ये जो अटैक था फाइनल अटैक था एक तरह से 17 तारीख को जो हुआ था, और उसमें दुश्मन की पूरी बटालियन थी जो है उसमें उनके 80 जवान मतलब मरे थे, इंक्लूडिंग उनके बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर साहब, उनको छोड़ के जो बाकी लोग डिमोरलाइज होकर चले गए थे,
1: भाग गए थे
0: इन द सेंस, क्योंकि इतना मतलब जो है इतना जो है इन्होंने स्ट्रांगली लड़ाई लड़ी थी। एंड उसका सबसे बड़ा कारण था कि होशियार सिंह साहब जो थे वो खुद वहां खड़े थे, एक एक जवान के साथ खड़े हुए थे, प्रेरित कर रहे थे। एंड नो डाउट दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ एग्जेम्पलरी करेज एंड ब्रेवरी एंड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, जिसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एंड वेरी राइटली सर वाज अवार्डेड परमवीर चक्र, एंड उसी के कारण जो है युद्ध का जो है मतलब स्वरूप बदल
1: गया। दुगने उत्साह से लड़ाई हो रही है,
0: दुगने उत्साह से लड़ाई हो रही है। आप दुश्मन का जो है ने जो है टैंक्स के ऊपर और जो उनके रिसोर्सेस हैं उसको नुकसान पहुंचाया, समाप्त कर दिया है, एंड जो आगे बढ़ने का रास्ता है
1: वो
0: क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और बहादुर ऑफिसर थे जिनको हम सब जानते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब, एंड वो 17 पूना हॉर्स के थे
1: जी।
0: आपको अगर याद हो 17 पूना हॉर्स के पहले भी एक परमवीर चक्र जी सर है ना, तो वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे और 17 पूना हॉर्स के दूसरे परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
1: सर। और सर जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सबसे कम उम्र वाले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र
0: जी। बिल्कुल सही बोला आपने, मात्र 21 साल की उम्र थी उनकी जब
1: उन्हीं के ऊपर 21 वर्ष से ही मूवी भी बनी है सर,
0: 21 में। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इनका जो कमीशन हुआ था पूना हाउस में 13 जून को हुआ था 71 को, तो मतलब से 6 महीने पहले लड़ाई से 6 महीने पहले जो है इन्होंने यूनिट ज्वाइन करी थी। इट्स अगेन ए यूनिक फीचर फॉर ए यूनिट, आप देखिए पूना हाउस के लिए जिसमें कि दो परमवीर चक्र हैं। ऐसी एक और यूनिट भी है बाय द वे, अगर को याद हो लांस नायक करम सिंह जी और सुविधा जोगिंदर सिंह जी, दोनों जो है परमवीर चक्र विजेता फर्स्ट सिख के थे
1: जी। अपन ने कार्यक्रम में इस दौरान उनका भी
0: उनका जिक्र किया है हमने, है ना, कार्यक्रम में उनका जिक्र किया है। तो 71 पूना हॉर्स जो थी ऑफेंसिव ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ था शुक्रगढ़ बल्ज में, तो इनको भी टास्क मिला था ब्रिजहेड एस्टेब्लिशमेंट करना है, यानी रास्ता जो बनाना है उसमें जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसके साथ ये लोग थे। तो 15 दिसंबर को इन्फेंट्री ने जो है सक्सेसफुली ये लोकेशंस कैप्चर कर ली थी क्रॉस जो है बसंतर, तो
1: रास्ता क्लियर हो गया था
0: है ना। अब वो जैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि उस पर काउंटर अटैक आया था दुश्मन का, जिसमें कि आर्मर्ड रेजिमेंट के टैंक्स भी थे, ठीक है, तो जो स्क्वाड्रन थी इन्फेंट्री के साथ जो है उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा टैंक्स आ गए थे क्योंकि दुश्मन की रेजिमेंट थी, तो उन्होंने जो है रीइन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया। तो जब रीइन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया तो जो अरुण खेत्रपाल साहब थे वो वहां पास में ही लोकेटेड थे, तो उन्होंने क्या किया अपने ट्रुप में, मतलब जो टैंक्स होते हैं उसके साथ इमिडिएटली जो है उन्होंने रश किया कि वो स्क्वाड्रन को सपोर्ट कर सके। अब वो जब जा रहे थे तो रास्ते में जो है उनके ऊपर भी काफी हैवी फायरिंग आई दुश्मन की लोकेशन से, और आरसीएल गन्स होती हैं जो रिकॉइललेस गन होती है जो टैंक्स के लिए घातक होती है, तो माइनफील्ड में लगी हुई थी उससे भी उनके ऊपर फायर आया। तो ये उनके साथ जो है लड़ते हुए इन्होंने उन सबको जो है खत्म किया, नेस्तनाबूद किया जो है, और इनफैक्ट इस दौरान उन्होंने काफी सारे दुश्मन के जो है जवानों को पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनाया, पकड़ा भी है। और ये सब जब ओपोजिशन खत्म करके जो स्क्वाड्रन थी उसके मतलब जो है वहां तक पहुंचे सपोर्ट करने के लिए जिसको जा रहे थे, तब तक जो है दुश्मन का काउंटर अटैक फिजल आउट हो गया था, वो काउंटर अटैक जो है सफल नहीं हुआ था और वो लोग वापस जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे जो है जाके
1: उनका पीछा किया,
0: हाँ, पीछा किया और उनके एक टैंक को बर्बाद किया। तो मतलब जो कमांडर साहब थे उनको, मतलब जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उनको काफी परसुएड करना पड़ा कि भाई मत करो, आप इनके पीछे मत जाओ, अभी बहुत कुछ है, करना है। सी इट्स अ जोश
1: जी, बिल्कुल
0: यंग जोश जो होता है वो वाली बात थी। तो थोड़ी देर बाद क्या है, दुश्मन ने फिर से दोबारा काउंटर अटैक लॉन्च किया। अच्छा, इस बार उन्होंने अटैक लॉन्च किया था जहाँ पे अरुण खेत्रपाल साहब थे, डिप्लॉयड थे, तो उस लोकेशन से उन्होंने मतलब जो काउंटर अटैक लॉन्च किया। अब इसमें जो है इट वाज अ वेरी फियर्स बैटल, टैंक टू टैंक बैटल शुरू हो गई जिसमें कि दुश्मन के 10 टैंक डिस्ट्रॉय हुए, और कहते हैं कि उसमें से 4 तो अरुण खेत्रपाल साहब की जो ट्रुप थी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, खुद किए जो है। तो ये जब हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, ये 3 टैंक्स में थे, 2 टैंक्स जो थे खेत्रपाल साहब के जो ट्रुप थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अभी जो है इनका जो टैंक था वो ही बचा था, ठीक है, अब वो भी जो है ये लड़ते रहे। इस बीच में इनके टैंक को भी जो है दुश्मन का गोला लगा,
1: अच्छा,
0: जो है फायरिंग में, और उसमें से ये आग में घिर गया पूरी तरह।
1: अच्छा जी,
0: अब देखिए टैंक जल रहा है तो सुनिश्चित है कि आदमी बचेगा नहीं, तो उनको हुक्म भी था कि भाई आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने देखा कि टैंक की जो गन है वो काम कर रही है, तो ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट लीव द टैंक एंड ही केप्ट ऑन फायरिंग ऑन द एनिमी। और ऐसे करते करते उन्होंने जो दुश्मन के जो बाकी टैंक्स थे वो भी डिस्ट्रॉय किया, यहाँ तक कि जो लास्ट टैंक था जिसको डिस्ट्रॉय किया वो कहते हैं उनके लोकेशन से 100 मीटर दूर पे था। जब उन्होंने कम्युनिकेट कर रहे थे अपने कमांडर को, जब उनको बोला गया कि आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, कि ये एग्जैक्टली वर्ड जो बोलते हैं, कहते हैं कि नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल फायरिंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स।
1: क्या बात है,
0: ये एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, बहुत बहुत बड़ा जज्बा है। तो उसके बाद जो इनका टैंक को सेकेंड हिट लगा एंड दिस ब्रेव सोल्जर जो थे शहीद हो गए, लेकिन
1: यानी वो टैंक उन्होंने छोड़ा
0: नहीं,
1: अंतिम सांस तक
0: नहीं छोड़ा। एंड इसके कारण के जो एफर्ट्स थे तो उससे दुश्मन का जो काउंटर अटैक था वो तो फिजल आउट हो गया, जो उनको दुश्मन का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो नष्ट हो गया। एंड अरुण खेत्रपाल साहब जो थे, इन ट्रू ट्रेडिशन ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, ही लेट डाउन हिज लाइफ एंड ही वाज अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली।
1: अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा है सर।
0: बिल्कुल, आपने सही बोला, इतिहास में आपको ऐसे जो है एक्शंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
1: सर यहाँ एक सामान्य नागरिक का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सर टैंक के अंदर कितने व्यक्ति होते हैं?
0: टैंक में 3 लोग होते हैं जनरली, जैसे एक ड्राइवर होता है, एक लोडर होता है, एक कमांडर होता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन तो तीनों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता
1: है। उनका भी कोऑर्डिनेशन है ना, तभी
0: कोऑर्डिनेशन है क्योंकि जो गनर होता है,
1: हाँ।
0: जो लोड करते हैं, लोडर नहीं उसको गनर बोलते हैं, ड्राइवर, गनर एंड जो है कमांडर।
1: तो सर वो जो गोले होते हैं वो टैंक के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम उसको लंबी लड़ाई लड़ सके
0: या होता है उसमें काफी राउंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के राउंड्स होते हैं। दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं।
1: यानी ये इतना त्वरित निर्णय होता होगा किस तरह का गोला हमें अब डालना है।
0: बिल्कुल वो तो है ही है। उसके अलावा उसकी जो मोबिलिटी होती है टैंक की,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जब चार टैंक एक साथ जब चल रहे होते हैं, पांच टैंक चल रहे होते हैं, धूल उड़ रही होती है, उसके बीच में जो वो आवाज होती है ना, उससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा टैंक कहाँ कहाँ से रहे। एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपको लगेगा टैंक आपके दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। आवाज इस तरह से आती है जो है, हम जब ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा है। ये
1: जब तक आप इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं लेंगे आप इन्हें ऑपरेट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं अरुण खेत्रपाल साहब के बारे में, सर के बारे में सोचता हूँ, मतलब ही इज रियली पर्सन हु मोटिवेट्स अस।
1: जी बिल्कुल सर,
0: विदाउट एनी डाउट।
1: बिल्कुल सर,
0: एंड वी सैल्यूट हिम फॉर हिज ब्रेवरी एंड हिज गैलेंट एक्शन।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो ये था बैटल ऑफ बसंतर, जो कि शकरगढ़ पल्ज के जैसे कि बोला कि सबसे जो है प्रचंड बैटल रही थी। उसके बाद जो है 17 दिसंबर को सीज फायर डिक्लेयर हो गया था
1: जी,
0: तो ऑपरेशंस जो है वहीं पे खत्म हो गए थे। कहते हैं कि अगर थोड़ा वक्त और रहता
1: जी,
0: तो शायद हम काफी इसमें एडवांस कर सकते थे, और ये जो बल्ज है
1: जी,
0: ये हो सकता है हम इस पे
1: हमारे
0: कब्जे में होता जो है। एनीवे वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। तो इसी तरह से जो है नीचे अगर हम आते हैं पंजाब में, खेमकरण सेक्टर में जो है फिरोजपुर, अमृतसर के नीचे फिर फिरोजपुर, उसके नीचे खेमकरण सेक्टर आता है। वहाँ पे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। वहाँ पे भी एक बल्ज है, उसको सेजरा बल्ज बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: 55 किलोमीटर का है ये, खेमकरण के साउथ ईस्ट में लोकेटेड होते हैं।
1: अच्छा।
0: इसको भी जो है दुश्मन ने, पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था, बटालियन से ज्यादा स्ट्रेंथ थी
1: जी,
0: और उनके पास जो है और भी जो है टैंक्स वगैरह थे उसमें।
1: अच्छा।
0: और 6 दिसंबर को इसको जो है कैप्चर किया था 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअल्टीज ऑन एनिमी। इट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब जो है बहुत ज्यादा जो है फियर्स ऑपरेशन रहा था, बैटल रही थी। अच्छा, इसको कैप्चर करने से क्या था, जो उसके पीछे हरिके डैम है, हरिके जहाँ पे सतलज वो जो ब्रिज है, वो जो है उसके ऊपर जो है किसी तरह का खतरा जो था वो खत्म हो गया था। दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। नीचे अगर हम आते हैं मतलब वेस्ट में आगे बढ़ते हैं तो फिर राजस्थान सेक्टर आता है। राजस्थान सेक्टर में हम सबने 2-3 बार इसका जिक्र किया है, बैटल ऑफ लोंगेवाला का।
1: जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी, आज तक भी लोग याद करते हैं इस बैटल।
0: बिल्कुल याद करते हैं इसको, द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाला। अगेन इट वाज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ जॉइंट फ्रेंडशिप बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसलमेर के आगे जो है वेस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो ये पोस्ट है लोंगेवाला, उस समय 23 पंजाब की जो यूनिट है उसकी अल्फा कंपनी ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था
1: जी।
0: जो है डिफेंसेस इख्तियार किए हुए थे, और 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने इस पोस्ट के ऊपर अटैक लॉन्च किया था। ठीक है, उनका इरादा एक्चुअली जैसलमेर की तरफ वो बढ़ रहे थे, तो उसके लिए उनको जरूरी था कि वो इस पोस्ट को क्लियर करें।
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए उन्होंने जो है 2 स्क्वाड्रन्स टैंक्स के, मतलब तकरीबन देखिए 28-30 टैंक्स।
1: अच्छा।
0: और 2 इन्फेंट्री कंपनी के साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था इस कंपनी के ऊपर जो है। डेजर्ट का इलाका है, प्लेन है
1: जी।
0: एक तो उसमें डिफेंस इख्तियार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको नेचुरल जो है जैसे पहाड़ों में क्या होता है, एक नेचुरल ऑब्स्टिकल होता है,
1: छिपने की जगह नहीं है,
0: छिपने की जगह कम होती है,
1: ऑब्स्टिकल्स
0: भी नहीं होते। ठीक है, ओके। तो या जैसे कैनाल्स होते हैं ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, जंगल होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, तो ये नहीं होता। तो इसमें इन्होंने जो डिफेंस इख्तियार करी थी, तो टैंक्स इनके ऑलमोस्ट 50 मीटर तक आ गए थे, इतनी पास से आके लड़ रहे थे, और उसमें जो जवान है अंदर बैठे हुए हैं वो अपना डिफेंस में उसको इतना स्ट्रॉन्गली होल्ड करे हुए हैं कि उनको उन्होंने कब्जा करने नहीं दिया। अटैक शुरू होने के बाद से जो है पूरी रात मतलब जो है लड़े हैं, एंड इस बीच में जो है इंडियन एयरफोर्स को जो है
1: सैनिकों ने सर टैंकों को रोके रखा,
0: एंड बिल्कुल रोके रखा। ठीक है, उनके पास आर्सेल गन्स थी, बट उसके बावजूद जो है, और इन्फेंट्री भी थी जो अटैक कर रही है, इट्स नॉट ओनली टैंक्स हैं जो अटैक कर रहे हैं। तो उसके बाद सुबह सुबह जो है एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू किए थे जिसमें हम सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट दे डिस्ट्रॉयड 17 टैंक्स और 23 जो टैंक्स थे उन्होंने अनसर्विसेबल कर दिए थे, 11 सॉर्टीज करी थी। तो अगेन ए यूनिक ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा था, ठीक है, मतलब दे रियली प्लेड ए मेजर रोल इन इट। एंड ग्राउंड के ऊपर जो ट्रुप्स थे और उनके कंपनी कमांडर साहब थे ब्रिगेडियर के एस चांदपुरी साहब, उस समय वो मेजर थे, ही प्लेड ए वाइटल रोल, ठीक है। अगेन लाइक हमने जैसे जिक्र किया था ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का, उसी तरह से चांदपुरी साहब ने भी जो है अपनी कंपनी की हौसला अफजाई करी, ठीक है। अब देखिए जवान को मालूम है कि इस समय मैं लड़ रहा हूँ, मेरे सामने से टैंक्स आ रहे हैं, सामने से फायर आ रहा है, एंड आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं कोई कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे लिए, बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात,
0: ठीक है। एंड ये जो है उन्होंने स्ट्राइक आने तक 23 पंजाब के जो बहादुर जवान थे उन्होंने पोस्ट होल्ड करके रखी जो है। इंडीड ही वाज अवार्डेड विद महावीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रेव लीडरशिप। तो जब तक ऐसे बहादुर
1: बहादुर सिपाही नहीं रहेंगे तब तक जीत तो मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है
0: जी। और जब तक ये लोग हैं
1: जी
0: तब तक इस देश का कोई बाल बांका नहीं
1: कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: जब तक इतने बहादुर जवान हैं हमारे पास और इतने काबिल लीडर हैं
1: जी
0: तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं आज हमने जाना हमारी थल सेना ने किस तरह सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई। अब चलते चलते हम इस श्रृंखला के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस युद्ध से हमने आखिर क्या पाया और क्या खोया भी। ये बात बिल्कुल लाजिम है कि जिस उद्देश्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया उसे हमने गौरवपूर्ण तरीके से प्राप्त भी किया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर कार्यक्रम में इस कड़ी में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जय हिंद पूर्वा जी एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कोंदानी ने और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू, तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है हा? मेरा कौन दोस्त कब आया था?
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है। सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा। मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया,
1: अच्छा,
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: ओ, तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगी कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
2: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
2: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
2: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण, टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
2: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
2: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
2: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
2: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुरु, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर है?
2: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है, कर्नाटक के बेंगलोर में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
2: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे नागपुर ARDI हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में IRDE इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी, क्या इनके कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में DMRL, DLJ में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज RTR की, और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है, और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है, और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं?
2: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन, एडमिन, स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए DRDO, IIT नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या PhD के लिए DRDO के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, बहुत कठिन डगर है पनगट की।
2: हाँ। तो बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को DRDO ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी DRDO में जा सकते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल बेटा, DRDO सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
2: DRDO में एमटेक PhD के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। IIT नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, क्या मैं कॉलेज के दौरान भी DRDO में इंटर्न कर सकती हूँ?
2: क्यों नहीं बेटा, DRDO के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी, क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
2: बिल्कुल, महिलाएं आज DRDO की ताकत हैं।
1: दादू, क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
2: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। Agni-4 और Agni-5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
2: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां न सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
2: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी, और कोविड में DRDO ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
2: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। UV सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: PPE किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
2: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, DRDO के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हाँ बेटा, DRDO का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर DRDO में वैज्ञानिक बनूंगी।
2: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए देश को, युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
2: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर DRDO ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
2: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
3: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे DRDO यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक नेमा।
3: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
3: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो, ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है? अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
4: क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अबे चल ओए, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा, दिखा।
4: छोड़ो ना काका।
3: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
4: आओ काका,
3: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
4: हम कहाँ पढ़े?
3: अरे
4: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
5: अरे कक्का राम राम।
3: राम राम राम राम राम राम।
5: ओए सल्लू, कैसा है तू?
4: अरे मस्त, एकदम चकाचक।
3: अरे आजा राजू, आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैये, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
4: अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था।
3: हाँ।
4: कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ।
3: हाँ।
4: अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
3: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
4: देवी अहिल्याबाई?
3: हाँ।
4: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
3: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
4: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में? अरे कुछ भी नहीं मालूम।
3: लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
4: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
3: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
4: ऐसा?
3: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
4: अरे आप और कौन करेगा?
3: अरे मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
4: अरे, अरे
3: मैं नहीं, मैं नहीं।
4: कक्का कक्का सुनो तो, सुना दो जरा, मजा आ जाएगा।
3: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: क्या है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
1: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
2: हाँ बिटिया, जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है ये दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ता बाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
7: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए। सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो। सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

पता है फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई के

0: कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको, अरे कहाँ भागा जा रहा है,
6: अरे कहाँ चला जा रहा है,
5: पकड़ो पकड़ो, बचने ना पाए।
6: अरे उधर से घेर लो, घेर लो,
5: दरबार में सीधे घुस गया। छोड़ना मत, छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था,
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटत है, छोरों को मारत है महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छु नहीं है, हम आओ जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देत, हम जाए तो कहाँ जाए महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं।
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है।
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए, छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्याबाई का न्याय।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करते काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महारानी।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहासजनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप भी बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ।
3: उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो।
0: बोलकर राजवंश में सबको न्याय मिलेगा।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने स्वराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का पुनः प्रसारण।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
3: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी।
1: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
3: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
3: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का पुनः प्रसारण।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, आज हम जिस कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो किसी साधारण कवि की रचना नहीं है, ये उस सृजनकर्ता की आवाज है जिसने कविता को केवल लिखा नहीं, उसे जिया, उसे जंग की तरह लड़ा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में केवल एक नाम नहीं है, वे चेतना है, वे युग की धड़कन है। उनकी कविता में शब्द नहीं है, शस्त्र हैं जो अन्याय के विरुद्ध उठते हैं और मनुष्य के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। दिनकर जी की काव्यधारा में ओज की गर्जना है तो वहीं करुणा की गहरी धारा भी है। वे वीरता के कवि हैं, पर उनकी वीरता पत्थर सी कठोर नहीं, वो संवेदना से सिंचित है और रश्मिरथ ही इसी संवेदनशील ओज का सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे मानवीय स्वर है। ये महाकाव्य केवल कर्ण की कथा नहीं कहता, ये उस हर व्यक्ति की व्यथा है जो योग्य होते हुए भी पहचान से वंचित रह जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी की। बहुनात्र किम मुक्तेन, संक्षेपात शृणु पांडव, त्वत्समम त्वाद विशिष्टम वा कर्णम मन्ये महारथम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में मेरी बात सुनो। मेरे विचार में कर्ण या तो तुम्हारे समान है या फिर तुमसे भी श्रेष्ठ, और इसीलिए मैं उसे महारथी मानता हूं।
2: यह श्लोक कर्ण के लिए श्री कृष्ण की सबसे स्पष्ट और निर्भीक स्वीकृति है। कृष्ण यहाँ तुलना करते भी हैं और तोड़ भी देते हैं, कर्ण को किसी नीची श्रेणी में नहीं रखते। त्वत् समम कहकर वे उसे अर्जुन के समकक्ष रखते हैं और त्वाद विशिष्टम कहकर उसकी अद्वितीयता को स्वीकार करते हैं। यही भाव दिनकर के रश्मि रथी की आत्मा है। कर्ण को समाज ने जो नहीं दिया, कृष्ण ने उसे शब्दों में दे दिया।
1: हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्र रक्षक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था हृदय था युधिष्ठिर, कर्ण का श्रद्धा युत हृदय था। अर्थात कर्ण का हृदय बिल्कुल निष्कपट और पवित्र कर्मों से युक्त था, वो संकट में पड़े लोगों की रक्षा करने वाला था, वो अद्वितीय दानी था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, कर्ण का हृदय श्रद्धा, त्याग और महानता से भरा हुआ था।
2: तो आइए श्रोताओं, काव्य गुंजन के इस विशेष अंक में हमारे साथ चलिए, जहां हर शब्द एक दीप है और हर भाव एक अनंत यात्रा। आइए श्रोता

0: या एक प्रश्न, एक जन या निरंतर किया गया संघर्ष? यदि मनुष्य को केवल उसके कुल से जाना जाए तो फिर कर्म का अर्थ क्या रह जाता है? और यदि पहचान जन्म से तय हो तो पुरुषार्थ किस लिए? मैं कर्ण हूं जिसका जन्म लोक लज्जा का बोझ बना और जीवन स्वयं को सिद्ध करने की साधना। मेरे पास वंश की विरासत नहीं पर शर्म की स्मृति है। मेरे माथे पर नाम नहीं लिखा पर मेरी भुजाओं में भाग्य को बदलने की शक्ति धड़कती है। मुझसे मेरी जाति पूछी गई पर मैंने अपने मौन से उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य की सच्ची पहचान शब्दों में नहीं उसके कर्म में अंकित होती है। मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं उस समाज से संवाद करने आया हूं जो जन्म को धर्म मान बैठा है और पुरुषार्थ को अपराध। आओ मेरे साथ चलो, किसी युद्ध की ओर नहीं बल्कि उस अनंत संघर्ष की ओर जहां हर युग में मनुष्य को पहले मनुष्य बनने के लिए लड़ना पड़ता है। यही है मेरी यात्रा, यही है मेरी वेदना और यही है रश्मिरथ।
1: आइए श्रोताओं सुनते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का भाग एक।
2: जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास।
1: रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य के किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो श्रोताओं यह केवल कर्ण की कथा नहीं है, यह उस प्रश्न की कथा है जो हर युग में मनुष्य से पूछा जाता है। क्या मनुष्य को बड़ा उसका जन्म बनाता है या उसके भीतर जलता हुआ तेज? दिनकर कहते हैं जहां भी आग जले वह पूज्य है। गुणों की जड़ नहीं पूछी जाती, शक्ति और करुणा पहचानी जाती है। कर्ण इसीलिए महान नहीं कि वह सूर्य पुत्र था बल्कि इसीलिए कि पीड़ा में पलकर भी उसने दया और दान को नहीं छोड़ा। उसने ऊंच नीच जाति गोत्र नहीं माने, उसने अपने कर्म को ही अपना परिचय बनाया और शायद यही कारण है कि इतिहास में कर्ण की रेखा राजाओं से नहीं न्याय से खींची गई है। अब अगला सर्ग हमें उसी कर्ण के और निकट लेकर जाएगा जहां वीरता से पहले मनुष्य होने की परीक्षा खड़ी है। नगर के शोरगुल, राजमहलों की चहल पहल और लोगों की निगाहों से दूर कर्ण एकांत में तप रहा है। यह तप केवल

0: अस्त्र विद्या का नहीं, आत्म संयम, श्रम और धैर्य का है। वह किसी की कृपा से नहीं, अपने पुरुषार्थ से निखर रहा है। जैसे जंगल में खिला वह फूल, जिसे देखने कोई नहीं आता, पर जिसकी सुगंध सच्ची होती है। आइए हम प्रथम सर्ग के भाग दो की तरफ चलते हैं, उसका काव्य पाठ सुनते हैं, जहां जहां कर्ण पहली बार अपनी धनुष टंकार से समाज को आईना दिखाता है।
1: अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार।
0: सभा एकाएक मौन हो जाती है, धनुष की एक एक टंकार के साथ वंश का घमंड डगमगाने लगता है, जन्म का अभिमान दरकता है और तालियों से उपजा सस्ता यश अपनी ही गुफापन को उजागर कर देता है। इसी क्षण से प्रथम सर्ग की अगली यात्रा आरंभ होती है, जहां कर्ण केवल रणभूमि का योद्धा नहीं रह जाता, बल्कि समाज द्वारा स्थापित मानकों से प्रश्न करने वाला एक सजग और जागृत विवेक बनकर सामने आता है। अब श्रोताओं, आइए उस उत्तराधिकारी क्षण की ओर रुकें, जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं। सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग तीन को।
1: फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ बताओ, बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला,
2: जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, क्लानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान।
0: श्रोताओं, मनुष्य इस धरती पर सदियों से सत्ता और पहचान के द्वंद से जूझता आया है। यहाँ अक्सर कर्म से पहले परिचय मांगा जाता है और प्रतिभा से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। धर्म का नाम लिया जाता है, पर उसी की आड़ में शोषण भी होता है और जातियों के इतने सकरे खांचे बना दिए जाते हैं कि उसमें असंख्य भावनाएं घुट कर रह जाती हैं। इन्हीं भावनाओं से आहत मानो कर्ण स्वयं कह रहे हो।
3: मेरी पीड़ा केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की आवाज है जिसे योग्य होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिली, जो मंच के सामने तो खड़ा रहा पर मंच पर चढ़ने से पहले उससे उसका जन्म पूछ लिया गया। रश्मिरथी हमें यह चेतावनी देती है कि जब समाज पहचान को कर्म से बड़ा मान लेता है तो वो अपने ही भविष्य को अपमानित करता है, क्योंकि प्रतिभा को रोका जा सकता है पर इतिहास को नहीं। और यहीं से आरंभ होता है वो क्षण जहां मेरी चुनौती केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे से है।
0: कर्ण का तेज अब शब्दों में सीमित नहीं रहता, वह उसके मौन और उसकी भुजाओं में धधकने लगता है। और तभी जब अन्याय अपनी अंतिम सीमा लांघता है, सभा में एक स्वर उठता है। ऐसा स्वर जो मित्रता भी है, राजनीति भी और विद्रोह भी। ये वही क्षण है जब अपमान के सामने सम्मान की पहली ढाल खड़ी होती है और कर्ण के जीवन की दिशा एक निर्णायक मोड़ लेने लगती है। श्रोताओं, हम आपको उसी क्षण की ओर लिए चलते हैं जहां नियति और साहस आमने सामने खड़े हैं। आइए अब हम सुनते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ।
2: पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान।
1: कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सहना सका न्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। बातें हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा श्वपच चर्मकार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार।
0: श्रोताओं, यह वह क्षण है जहां सभा केवल राज दरबार नहीं रह जाती, वह समाज का कठोर दर्पण बन जाती है। यहां तलवारों से पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और पराक्रम से पहले पहचान। यहां प्रतिभा को उसके तेज से नहीं, उसकी जाति से आंका जाता है और योग्यता से पहले वंश का लेखा जोखा खोला जाता है। अन्याय यहां चिल्लाता नहीं, वह शास्त्र बनकर, नियम बनकर, मर्यादा का मुखौटा ओढ़कर खड़ा होता है और उसी की ओट में अपमान को न्याय का नाम दे दिया जाता है। ये केवल उस युग की कथा नहीं, आज भी जब समाज पद, पहचान, जाति और सत्ता के तराजू पर मनुष्य को तौलता है, तब हर कर्ण इसी पीड़ा से गुजरता है। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है मानो सभा नहीं, स्वयं इतिहास ठहर गया हो और उस मौन को चीरता हुआ अब कर्ण स्वयं कह उठता है।

0: आज पहली बार मैं स्वयं से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? वो जिसे उसके तेज से पहचाना जाना चाहिए, या वो जिसे नाम और जन्म के तराजू पर तौला जाता है? मेरे हाथों में धनुष है, ललाट पर सूर्य का तेज, फिर भी मेरी पहचान से पहले मेरी जाति पूछी जाती है। क्या वीरता भी किसी वंश की मोहताज होती है? इस सभा में मेरी भुजाएं नहीं कांपी, पर मन अवश्य थर्राया है, अन्याय से नहीं बल्कि उस सत्य से जिसे सब जानते हैं, पर स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं। यदि सम्मान मांगना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं, और यदि तेज ही मेरी जाति है तो आज इस अपमान की अग्नि में तपकर मैं स्वयं को पहली बार पूरी तरह पहचान रहा हूं।
1: श्रोताओं, इसी सन्नाटे में जहां नियम अन्याय का कवच बन चुके हैं और मौन कायरता का साथी, सभा के बीच से एक स्वर उठता है। यह स्वर केवल किसी राजकुमार का नहीं है, यह उस व्यक्ति का है जो पहली बार सत्ता को नहीं अन्याय को चुनौती देने जा रहा है। श्रोताओं, ये क्षण केवल कर्ण के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, ये उस व्यवस्था के विरुद्ध पहला सार्वजनिक प्रतिरोध है जो प्रतिभा को जन्म से बांधना चाहती है, और यही इसी एक स्वर के साथ मित्रता जन्म लेती है, राजनीति आकार लेती है और इतिहास एक नया मोड़ लेने को विवश हो जाता है।

0: श्रोताओं, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वह विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है। आगे हम प्रथम सर्ग के अंतिम भागों 5, 6 और 7 का काव्य पाठ सुनेंगे। ये काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाधम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी आपके रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
2: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
3: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। तुलकर्ष

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।